सुप्रभात। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संबत 1948 आषाढ़ माह की चौथी तिथि, तदनुसार ईस्वी सन 2026 जून महीने की 25 तारीख। इस समय सुबह के 5:58 होने वाले हैं। हम उपस्थित हैं आज की प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ। आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। हमारे दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार थोड़ी ही देर में।

0: की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से ई जीरो एफआईआर व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। कल दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन के आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य राज्य सचिव पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया जहां वो सुरक्षित रूप से उतरा। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वो अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर काबिज है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए जानकारी लेते हैं खेती किसानी कार्यक्रम के अंतर्गत दुधारू पशुओं की आहार व्यवस्था के बारे में। बता रही हैं अनीता तिर्की।
2: कारोबार की दृष्टि से दुधारू पशुओं को संतुलित और

0: पौष्टिक आहार देना जरूरी है, जिससे उसमें स्वास्थ्य और दूध उत्पादन पर अच्छा असर पड़ता है। दुधारू पशु अखाद्य पदार्थों को खाती है जो मनुष्य अपने आहार में उपयोग नहीं करते हैं, जैसे भूसा, खली, चुनी, फल सब्जी के छिलके, और बदले में हमें अमृत तुल्य दूध प्राप्त होता है। गौ पालन में कुल लागत का लगभग 70% खर्च उनके आहार पर होता है। डेयरी व्यवसाय में सफलता दुधारू गाय के उत्पादन क्षमता और उनके आहार पर आए खर्च पर निर्भर करता है। आहार को यदि सस्ता और संतुलित उपलब्ध करा दिया जाए, तो व्यवसाय में अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। वैसे तो पशुओं का आहार मुख्य रूप से घास, भूसा, दाना है, पर इनमें से किसी एक को खिलाकर लाभप्रद व्यवसाय नहीं किया जा सकता है। गौ आहार मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, पहला चारा और दूसरा दाना। चारा भी दो प्रकार का होता है, पहला सूखा चारा और दूसरा हरा चारा। सूखा चारा जैसे धान की पुआल, कुट्टी, गेहूं का भूसा, ज्वार, मकई अथवा बाजरे की फसल या उससे बची हुई सामग्री, जबकि हरा चारा भी दो प्रकार का होता है, पहला फलीदार और दूसरा अफलीदार। फलीदार चारा में लूसर्न, बरसीम, लोबिया, सुबबूल इत्यादि आता है, जो कि प्रोटीन, विटामिन्स और खनिज का अच्छा स्रोत माना जाता है। उसी तरह अफलीदार चारा जैसे कि मकई, ज्वार, बाजरा, हरा घास, जो कि ऊर्जा के अच्छे स्रोत हैं। दाना मिश्रण कई तरह के अनाज, अनाज के उत्पाद, तिलहन, दालचीनी, खली से मिलाकर बनाया जाता है, जो कि प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ऊर्जा सभी तरह के पोषक तत्व देते हैं। लाभप्रद गौ पालन के लिए अच्छे आहार की उचित मात्रा में जरूरत पड़ती है। अच्छे आहार में 3/4 भाग भूसा, सूखा चारा, हरा चारा और 1/4 भाग दाना होना चाहिए। दाना मिश्रण में 1/3 तिलहन, 1/3 अनाज और 1/3 अनाज के उप उत्पाद होना चाहिए। तिलहन में जैसे चिनिया बादाम, तिल, सोयाबीन, सरसों, कुसुम का खली दे सकते हैं। अनाज में मकई, गेहूं, जौ, बाजरा आदि के दर्रा मिलाते हैं। अनाज के उप उत्पाद जैसे गेहूं के चोकर, चावल की खुद्दी, दाल की चुनी को मिलाते हैं। हरा चारा भरपूर मात्रा में मिलने पर दाना मिश्रण की कम आवश्यकता पड़ती है, परंतु ज्यादा दूध देने वाले पशुओं की प्रत्येक 2 या 3 लीटर अधिक दूध पर 1 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए। दाना इसलिए खिलाना चाहिए क्योंकि कोई भी खाद्य पदार्थ अपने आप में संतुलित नहीं रहता है तथा दाना सुपाच्य होता है। दूध देने वाली गायों को आहार अच्छा देना चाहिए। यह आहार दूध देने की क्षमता पर निर्भर करता है। 2.5 से 3 किलो दूध देने वाली गायों को अलग से 1 किलो दाना मिश्रण हर दिन देना चाहिए। मतलब दूध देने वाली गायों को अतिरिक्त आहार देना चाहिए। शुष्क मतलब दूध नहीं देने वाली गायों को मेंटेनेंस आहार दिया जाता है, या शरीर के वजन के अनुसार दिया जाता है, या आहार रख रखाव के लिए दिया जाता है। प्रति गाय 1 से 1.5 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे दुधारू पशुओं की आहार व्यवस्था के बारे में, बता रही थी अनीता तिर्की, और ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। सुनते हैं आज का चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का है।

0: सनातन परंपरा में गुरु अपनी सदाशयता, सद्भावना और आत्मीयता के विलक्षण स्वरूप से हर एक मानव मन में चरित्र निर्माण, आपसी प्रेम और भाईचारे का बीज बोता रहा है। सशरीर होते हुए भी गुरु तत्व है, संसार की सबसे पवित्र ईश्वरीय देन है। वो मनुष्य के जन्म जन्मांतर के अंध तमस को दूर कर उसे दिव्य प्रकाश देता है। गुरु के बिना मनुष्य का जीवन बिना पतवार की नौका के समान होता है। गुरु के बिना ज्ञान मिलना कठिन है। गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। गुरु के बिना सत्य को पहचानना असंभव है। गुरु बिना मन के विकारों का मिटना मुश्किल है। लौकिक जगत में महापथ का पथिक गुरु धार्मिकता का प्रथम पुरुष होता है, जो अपने दिव्य ज्ञान से शिष्य के अंतःकरण के तारों को झंकृत कर मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। गुरु शिष्य की हर उलझीवी समस्या का समाधान करता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ उपदेश दिया, बल्कि हर उस वक्त उन्हें उचित निर्देश दिया जब जब वे दिग्भ्रमित नजर आए। गुरु के मुख से निकला हर शब्द ब्रह्म होता है, जो सत्य की गहराई से निकलता है। अपनी महत्ता के कारण गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा पद दिया गया है। शास्त्रों में गुरु को ईश्वर के विभिन्न रूपों ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया क्योंकि वो शिष्य को नया जन्म देते हैं। गुरु विष्णु भी हैं क्योंकि वो शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरु साक्षात महेश्वर भी हैं क्योंकि वो शिष्य के सभी दोषों का संहार करते हैं। उपनिषदों में कहा गया है कि गुरु के प्राण शिष्यों में और शिष्यों के प्राण गुरु में बसते हैं। गुरु मानव चेतना के विकास के हर एक पहलू को जागृत करता है। शिष्य को जीवन जीने की कला सिखाता है। एक संबुद्ध गुरु को यदि एक चेतनावान शिष्य मिल जाए तो वो अपने परम संबोधि के विस्फोट से नए युग का निर्माण कर सकता है। शिष्य के सदा के बंद द्वार खोल सकता है। उसके जीवन में एक नया संगीत भर सकता है। आज के समय में एक बार पुनः गुरु शिष्य परंपरा की अनंत श्रृंखला को कायम रखने की महती आवश्यकता है। यदि सही गुरु मिल जाए तो जीवन की दिशा सुधारी जा सकती है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, संकलन एवं वाचन दिनेश कुमार लाल का था। अब आइए आराधना कार्यक्रम में सुनते हैं सबसे पहले लता मंगेशकर की आवाज में ये देशभक्ति गीत।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत और आराधना कार्यक्रम में अब आइए कुछ भक्ति रचनाएं सुनते हैं। भगवान की भक्ति करने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं, तभी हमारा ये जीवन सफल हो सकता है। अपने जीवन के सारे कर्मों को करते हुए हमें उनकी आराधना करनी चाहिए, तभी जीवन के दुखों को दूर करने और अपने जीवन को सही मार्ग पर चलने का हमें रास्ता मिलता है।

भगवान की आराधना हमें करने से मन को शांति मिलती है और हम जानते हैं इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। इसे अगर हम मान ले और जान ले तो फिर जीवन में दुख नहीं हो पाएगा और मनुष्य को केवल अपना कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हर समय हम ऊपर वाले को धन्यवाद दें और अच्छे कर्म की ओर प्रवृत्त हों।

हमें अपने जीवन में अपने प्रभु से ही आशा रखनी चाहिए, क्योंकि हम अगर किसी से आशा और अपेक्षा रखते हैं तो फिर हमें जीवन में दुख ही मिलता है। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी इच्छा और आशा के अपने कर्तव्य का पालन इस दुनिया में है जब तक करते रहें, अपने कर्म के प्रति आसक्ति न रखें। यही शाश्वत ज्ञान हमें आंतरिक शांति और खुश रखने के लिए और साथ ही जीवन की चुनौतियों का सामना करने में सहायता करती है।

भगवान की आराधना करने के लिए हमें ध्यान लगाना होता है, एकाग्रता लानी होती है, लेकिन ये मन एक स्थान पर टिकता नहीं। उसका स्वभाव चंचल है, हर क्षण उसमें कोई अलग अलग नए तरह के विचार और भाव पैदा होते हैं। और इसी तरह अगर हम अपने मन को स्थिर कर लें और मन पर विजय प्राप्त कर लें, तो इससे अच्छा मित्र और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और अगर मन को हम मन से हार जाते हैं, तो उससे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं होता। इसलिए अपने मन की शक्ति को समझिए, क्योंकि हमारे मन के अंदर

हम अपने को भगवान पर पूरी तरह समर्पित कर दें, सिर्फ उन्हीं का ध्यान रखें जब हम खाली समय पर भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम सब कुछ समर्पित करने पर उन पर भरोसा करते हैं, उन पर आशा करते हैं और ये भी आशा रखते हैं कि वो जो करेंगे वो हमारे लिए सही है और हम जो चाहते हैं हो सकता है वो हमारे लिए सही ना हो, इसलिए उन पर पूरा भरोसा कर उन पर ही आधारित होकर समर्पित हो जाना चाहिए।

0: स्नेह, सत्य, अहिंसा, प्रेम और करुणा का ही पाठ पढ़ेगा, जिसके गुरु हैं परम सत्य श्री हरि। प्रत्यक्ष प्रमाण पाकर भी श्री हरि में विश्वास ना करें, श्री हरि से प्रेम ना करें, ये जीव का दुर्भाग्य ही है। भगवान तभी बसते हैं जब हृदय निर्मल होता है। हृदय हरि के भजन कीर्तन से निर्मल होता है।
1: हम हरि भजन करेंगे,
2: हरि कीर्तन करेंगे।

कहते हैं यदि मन में ईश्वरीय जीवन जीने की तड़प हो, समर्पण हो, तो सर्वव्यापी सर्वज्ञ ईश्वर उन्हें जीवन में सब कुछ प्रदान करते हैं। और इसी के साथ आज का आराधना कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।

वन गमन के लिए विदा लेने आए हुए पुत्र के वचन सुनकर माता कौशल्या स्तब्ध रह गई हैं। आसन्न पुत्र वियोग उनके सम्मुख एक भीषण दुविधा बनकर खड़ा हो गया है। न तो वे श्री राम को अपने पास रख सकती हैं, न ही वन जाने की आज्ञा दे पाती हैं। एक ओर धर्म तथा दूसरी ओर ममता ने ऐसा धर्म संकट उपस्थित कर दिया है जिससे त्राण पाना कठिन है, किंतु विजय कर्तव्य रूपी धर्म की होती है। धैर्य ममता के प्रवाह में अडिग खड़ा होकर कहता है, पिता की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। राज्य देने के स्थान पर पिता ने वनवास दे दिया, इसका मुझे तनिक भी दुख नहीं है। किंतु भरत, स्वयं महाराज तथा प्रजाजन क्या तुम्हारा वियोग सहन कर सकेंगे? हे तात, यदि केवल पिता की आज्ञा हो तो माता को उनसे अधिक मान और महत्व देकर वन को न जाओ, किंतु यदि माता और पिता दोनों ने वन गमन के लिए कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आइए हम आपको आज रात तक प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों के विषय में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। अभी से थोड़ी देर यानी 6:55 से आप सुनेंगे संस्कृत और हिंदी में समाचार। सुबह 7:05 का समय होगा स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम का। आज आप जानकारी लेंगे सर्वाइकल कैंसर के विषय में।

आएंगे डॉक्टर रानू कुमारी, इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल। सुबह सुरीली का आनंद आप उठाइएगा सुबह 7:15 से। 7:45 का समय हुआ खुला आकाश कार्यक्रम का। आज का विषय है राजभाषा हिंदी सामर्थ्य और सीमा रामनिवास शुक्ल से पंकज मित्र की बातचीत आप सुनेंगे। सुबह 8 का समय होगा समाचार प्रभात का। लोक रंग में आज आप खोरठा लोकगीत सुनेंगे प्रेमचंद कालिंदी और साथियों की आवाज में 8:45 से। सुबह 9 का समय होता है रसरंजन कार्यक्रम के लिए और 9:30 का समय है शास्त्रीय संगीत का। आज आप सुनेंगे पंडित मनोज कुमार केडिया से सरोद पर राग विलास खानी तोड़ी और आला पर जोड़ के बाद 2 गते प्रस्तुत हैं। मध्य लय की गत जप ताल में और द्रुत लय की गत 3 ताल में निबद्ध हैं। सुबह 10 विज्ञान जगत कार्यक्रम में आप सुनिएगा भेंटवार्ता, मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और चुनौतियां। भेंटवार्ताकार है डॉक्टर अभिषेक आनंद, इनसे बातचीत करेंगे प्रभु शरण और प्रस्तुति है प्रभु शरण की ही। जोहर रांची कार्यक्रम सुनिएगा 10:30 से और 11 हम आपको सुनवाएंगे इनसे मिलिए कार्यक्रम में आईजी एसटीएफ श्री अनूप बिरथरे से सिंधु मिश्रा की बातचीत। आपकी पसंद कार्यक्रम आप सुनते हैं 11:30 से। महिलाओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम होगा गृहलक्ष्मी दिन में 12 से। इसके अंतर्गत भेंटवार्ता होगी वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी खरीदें, प्रस्तुति गौरव कुमार पांडे की। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 12:30 से। अनुरंजनी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे 1:20 से। आज की कलाकार हैं श्रीमती सिप्रा बोस, इनसे आप सुनेंगे बारामासा दादरा। सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाजों में चंद गजलें। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे दिन में 3 और 2:30 का समय होगा फौजी भाइयों के लिए कार्यक्रम जय भारती का। रांची मेलोडीज कार्यक्रम आप सुनिएगा 3:30 से। 4:02 से पुनः विज्ञान जगत का पुनः प्रसारण होगा और सांझ सरगम कार्यक्रम 4:35 पर आप सुनिएगा। युववाणी कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे शाम 5:02 से। आज चर्चा होगी संविधान हत्या दिवस और आप सुनेंगे फिल्म संगीत भी, प्रस्तुतकर्ता होंगे गौरव कुमार पांडे। श्रमिक लोक कार्यक्रम सुनिएगा 5:30 से। चर्चा होगी शारीरिक गतिशीलता और संतुलन के लिए योग, प्रस्तुति प्रशांत गौरव की। शाम 6:02 से किसानवाणी कार्यक्रम में आज आप जानकारी लेंगे कृषि यंत्रों का रखरखाव के विषय में, प्रस्तुति संजीव कुमार लाल की है। 6:32 से आप सुनेंगे आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत और हिंदी में समाचार। इसके लिए कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए एआई के उपयोग पर बल दिया तथा एनसीसी कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर

0: अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच हुए ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा उससे संबंधित दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस दल में 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। धारचूला के उप जिलाधिकारी और व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि व्यापार को सुगम बनाने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय खोला गया है। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस दौरान संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच कल टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में कहा कि निरीक्षण जल्द शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमरीका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। फीफा विश्व कप फुटबॉल में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इसके साथ ही ब्राजील ग्रुप सी से नॉकआउट में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये राज्य केंद्र है। श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत आज जानकारी दी जाएगी सर्वाइकल कैंसर के बारे में। बताएंगी इसके बारे में डॉक्टर रानू कुमारी। इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल।
2: मित्रों नमस्कार, जोहार। मित्रों, आजकल के समय में एक बीमारी है सर्वाइकल कैंसर। इससे बहुत सारी महिलाएं ग्रसित हो जा रही हैं। ये सर्वाइकल कैंसर क्यों हो जा रहा है, क्या हमारी बिगड़ती लाइफ स्टाइल है, क्या हमारा खान पान है, कौन कौन से तत्व इस सर्वाइकल कैंसर के लिए

0: जिम्मेदार हैं और सर्वाइकल कैंसर का सही प्रकार से हमें मालूम पड़ जाए क्या इसके लक्षण हैं, ताकि समय रहते हम इसका उपचार शुरू कर दें और इसका बचाव कैसे करें। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं डॉक्टर रानू कुमारी। रानू कुमारी जी, स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: रानू जी, ये सर्वाइकल कैंसर आजकल काफ़ी बढ़ता जा रहा है, ये किस तरह की बीमारी है और ये क्यों हो जा रहा है इतना?
1: सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के गर्भाशय का निचला भाग जो कि योनि से जुड़ा होता है, उसे गर्भाशय ग्रीवा या सर्वाइकल कहा जाता है। इसी भाग में होने वाला कैंसर सर्वाइकल कैंसर कहलाता है। भारत में महिलाओं में होने वाले कैंसरों में यह एक बहुत आम कैंसर है। दुख की बात यह है कि ये अधिकांश महिलाएं तब डॉक्टर के पास पहुंचती हैं जब बीमारी काफ़ी बढ़ चुकी होती है, लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इस कैंसर को समय रहते रोका जा सकता है। यह संक्रमण बहुत सामान्य है और कई बार शरीर खुद ही इसे ख़त्म कर देता है, लेकिन कुछ महिलाओं में यह संक्रमण लंबे समय तक बना रहता है, जिससे धीरे धीरे कैंसर बनने का खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारी महिलाओं में खतरा अधिक इसलिए भी होता है क्योंकि उनकी शादी अगर कम उम्र में कर दी जाए, या शारीरिक संबंध बार बार गर्भधारण करने की वजह से, या साफ सफाई की कमी से, अगर वो महिलाएं धूम्रपान करती हों, या उनकी इम्यूनिटी या कमज़ोर प्रतिरोधक क्षमता है, या लंबे समय तक HPV इन्फेक्शन जो कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो कि इसका मुख्य कारण है उससे ग्रस्त हो।
0: तो सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या हैं, ताकि हम समय रहते सावधान हो जाएं और इसका इलाज हम शुरू करवा दें, क्योंकि यदि इस तरह की बीमारी को हम इग्नोर करते हैं, लक्षण दिखता है और लक्षण को यदि हम नज़रअंदाज कर देते हैं तो बीमारी विकराल रूप धारण कर लेगी और फिर आप जानते ही हैं कैंसर एक बहुत ही गंभीर बीमारी है।
1: शुरुआती अवस्था में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, यही कारण है कि स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। कुछ महिलाओं में ये लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि पीरियड्स के बीच खून आना, या संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग होना, या मेनोपॉज जो कि आपकी मानसिक बंद हो गई हो उसके बाद भी कभी कभी ब्लीडिंग दिखना, या दुर्गयुत डिस्चार्ज होना, या कमर या पेट के निचले हिस्से में दर्द होना। ये सारे लक्षण को हम पकड़ के डॉक्टर को अगर हम टेस्ट के लिए बोले तो हम इसे इनिशियल या शुरुआती में ये बीमारी को पकड़ सकते हैं
0: जी। ये प्रायः किस उम्र की महिलाओं को ज़्यादा घेर लेता है?
1: ये शादीशुदा महिलाएं हैं जिनमें ज़्यादा शारीरिक संबंध, या जो सेक्सुअली एक्टिव जो महिलाएं होती हैं उनमें ये केसेस ज़्यादा दिखने को मिलते हैं, जिनकी इम्यूनिटी भी कम हो।
0: तो इसकी जांचें किस प्रकार की जाती हैं और इसका इलाज का तरीका क्या है?
1: ख़ास तौर पे हम इस केस में पैप स्मियर करते हैं। पैप स्मियर क्या होता है कि यह एक बहुत सरल और महत्वपूर्ण जाँच है। इसमें जो हमारी सर्विक्स का जो पार्ट है, जो निचला हिस्सा है हमारे, उससे हल्के से कुछ सेल्स लिए जाते हैं और माइक्रोस्कोप के से हम उसे जांच करते हैं कि कहीं कोई असामान्य बदलाव तो नहीं है उस सेल्स में। यह जांच बहुत कम समय में ही हो जाता है और सामान्य दर्द रहित होता है। अस्पताल में भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और सबसे महत्वपूर्ण, इससे कैंसर बनने से पहले ही बीमारी पकड़ी जा सकती है। इसे हम यूजुअली सामान्यतः हम 21 वर्ष की उम्र के बाद या शादी के कुछ वर्षों बाद महिलाओं की स्क्रीनिंग शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह के अनुसार हर 3 से 5 साल के बीच अंतराल ये जांच करनी चाहिए।
0: कुछ अंतराल पर हर महिलाओं को अपनी ये जांचें करवा लेनी चाहिए, ताकि सतर्कता ही सबसे बड़ा इसका इलाज
1: जी।
0: है जी, कम खर्चों में जांचें हो जाती
1: हैं।
0: जी,
1: कम खर्च में ये जांच हो जाती है और इसमें आपको एडमिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आसानी से ये टेस्ट हो जाते हैं, तो इसमें ऐसे कोई डरने की भी आवश्यकता नहीं है
0: जी। यदि आरंभ में लक्षण दिख जाते हैं और जांचें में ये लग जाता है कि आप इस बीमारी से ग्रसित हैं, तो इलाज में सुगमता आती है, इलाज में त्वरित गति से कार्रवाई की जाती है
1: जी। जब हम एज ए पैथोलॉजिस्ट हम जब ये सेल्स देखते हैं कि हाँ, अगर किसी महिला के सेल्स में अगर कैंसर होने की संभावना है, अगर हमें वो पता चल रहा है, तो हम उसे रिपोर्टिंग के तौर पे हम विशेषज्ञ के थ्रू हम उनको भेजते हैं, जिससे कि वो पता करते हैं कि हाँ, इसमें कैंसर होना कितना इनमें बढ़ चुका है, या फिर ये कैंसर इनमें है या नहीं है,
0: उसी तरीके से फिर इलाज शुरू
1: किया जाता है
0: जी। मैडम, ये

0: बीमारी से बचाव के लिए टीका भी लोग लगाते हैं और भारत सरकार की ओर से भी टीकाकरण अभियान चलाया गया है सर्वाइकल कैंसर की बीमारी को रोकने के लिए, तो ये कौन सा टीका लगाया जाता है और क्या सभी उम्र की महिलाएं टीका लगा सकती हैं?
1: हमारे सरकार ने यूजुअली जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है जिससे मेन कारण है सर्वाइकल कैंसर होता है, इसमें दो ऐसे महत्वपूर्ण टीका हैं जो कि है सर्वैरिक्स और गार्डासिल। सर्वैरिक्स जो है वो महिलाओं में ही लगाए जाते हैं जिनमें कि वो 9 साल से 25 साल की उम्र में हम ये टीका लगा सकते हैं और ये टीका 3 डोजेस में अंतराल में लगाए जा सकते हैं। बात करें गार्डासिल की तो गार्डासिल में भी दो टीकों में ये इसके डिवीजन है, गार्डासिल 4 और गार्डासिल 9, जिसमें गार्डासिल 9 ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये हम ये गार्डासिल टीका लड़कों और लड़कियों में भी लगा सकते हैं लेकिन सर्वैरिक्स में सिर्फ लड़कियों में ही ये टीका लगाते हैं। गार्डासिल 4 नाम इसलिए हम देते हैं क्योंकि ये कम जो वेरियंट है, जो वेराइटी है HPV इन्फेक्शन के, उनको पकड़ता है, लेकिन जो गार्डासिल 9 है वो 9 अलग अलग वेरिएंट को गार्डासिल ट्रीट करता है, तो गार्डासिल 9 लगाना मुझे लगता है कि ज़्यादा लाभदायक होगा।
0: और ये टीकाकरण बिल्कुल निशुल्क है सरकार की ओर से या कहीं हम अलग से भी लगाते हैं तो उसके लिए भी कुछ खर्च हमें लगते हैं?
1: ये किसी किसी अस्पताल में निशुल्क होते हैं और किसी किसी अस्पताल में वो थोड़े अपने चार्ज ले सकते हैं। सरकारी अस्पताल में मेरे ख्याल से ये निःशुल्क ही है
0: जी। और किस उम्र की महिला इसको लगाएंगी?
1: मैंने जैसे बात किया ये सर्वैरिक्स और गार्डासिल 9 साल की लड़कियों से 45 साल की महिलाओं तक में लगाया जा सकता है
0: जी।
1: ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर उनकी शादी हुई है तभी उनको देना है, आप 9 साल की उम्र में भी टीका लगा सकते हैं।
0: एक बार ही लगा सकते हैं?
1: एक बार लगाना है लेकिन उनके डोजेस अंतराल 3-3 ऐसे डोजेस में लगाने होते हैं। जैसे गार्डासिल जो आपके 9 है वो 2 डोज में लगा सकते हैं, एक तो जब आपको पता चलता है और उसके बाद 6 महीने बाद फिर से, और अगर 9 से 14 साल में गार्डासिल का वैक्सीन हमने लगाया है तो हमें दूसरे डोज है 15 से 45 साल में। अगर 9 से 14 साल में आपकी वो डोज छूट गई है तो आपको अगर पता चल रहा है कि हमें ये वैक्सीन लेना है तो 15 से 45 साल में हम ले सकते हैं ये वैक्सीन, लेकिन हमें वो जो डोज लगाना है वो 3 डोज में लगाना है, एक तो जब हमें पता चल रहा है कि हाँ आज हमें वैक्सीन लगाना है, फिर 2 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, 3 डोज पे।
0: और ये वैक्सीन जैसा आपने बता रहे हैं 9 साल से लेकर 45 साल तक की महिलाएं इसको लगा लेती हैं तो इस बीमारी से अपने आप को सुरक्षित रख सकती हैं, बचा सकती हैं और सेहतमंद रह सकती हैं। बहुत सारी महिलाएं इस तरह के जो लक्षण दिखते हैं उसको इग्नोर कर जाती हैं, इग्नोर करते जाती हैं और फिर बीमारी बढ़ती जाती है और महिलाएं अक्सर घर के कामों में व्यस्त होती हैं और इन बातों को इग्नोर कर जाती हैं, तो क्या कहेंगे हमारी माताओं, बहनों या जो लड़कियां हैं, जो नव युवतियाँ हैं 9 साल से ऊपर की जो लड़कियां हैं उनको आप क्या कहेंगे?
1: हमारे समाज में महिलाएं अक्सर अपने स्वास्थ्य को पीछे रखती हैं क्योंकि घर और परिवार की जिम्मेदारियों में वो अपनी जांच और इलाज को टालती रहती हैं, लेकिन याद हमें ये रखना चाहिए कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार की आधारशिला होती हैं। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव संभव है पर हमें समय पर स्क्रीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। पैप स्मियर एक सरल जांच है और सुरक्षित जांच है जिसमें कि पेशेंट को एडमिट होने की भी ज़रूरत नहीं है और कई महिलाएं शर्म या डर से ये टेस्ट नहीं करवाती हैं, बट मुझे ये बोलना है कि आप इसमें इससे डरिए मत, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने और दूसरी महिलाओं को भी जागरूक करें।
0: तो यदि आप जागरूक होते हैं, सजग होते हैं और इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं तो आप देर नहीं कीजिए, तुरंत पैप स्मियर टेस्ट है आप करवा लें और ये हर जगह उपलब्ध है और बिल्कुल निश्चिंत पूर्वक अपने आगे की भविष्य की रूपरेखा आप तैयार कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रानू कुमारी, आज आप इस कार्यक्रम में आए और सर्वाइकल कैंसर और उसके बचाव पर आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, रोज की बात ही हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने दोस्तों और परिवार का भी ख्याल रखिएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, आज का दिन आपका शुभ एवं मंगलमय हो, नमस्कार।
2: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आप जानकारी ले रहे थे सर्वाइकल कैंसर के बारे में, बता रही थी डॉक्टर रानू कुमारी। इनसे

बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल और ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है और अब श्रोताओं आइए हम आपको सुबह सुरीले कार्यक्रम में कुछ सुरीले गीत सुनवाते हैं। सुरीले गीत तभी अच्छे लगते हैं जब हमारा मन खुश हो और हम तभी खुश होते हैं जब हम अपने सामने वाले को खुश देखते हैं। कहने का मतलब यही है कि दूसरों की हंसी, दूसरों के मुस्कुराहट अगर हम खुद के काम से ले आते हैं तो ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है। तो चलिए सबसे पहले अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में और सुनवाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

जिंदगी में प्यार ही खुशियां दे पाती है एक दूसरे को, और प्यार, स्नेह, सम्मान या सहयोग, इसे कोई भी आप नाम दे, बस इससे हमें क्या मिलती है पता है? बस खुशियां। और अपने लिए सुख जुटाने की चाहत हर दिल रखता है। हर कोई, हर इंसान आनंदित रहने की कामना इस दुनिया में करता है, और खुशियां ढूंढते हुए दूसरों का ख्याल अगर हम कर लेते हैं तो फिर ये जिंदगी में हमें हर पल खुशियों की सौगात ही मिलेगी, और फिर पता नहीं ये सौगात हमें इस दुनिया में कौन कौन दे जाए।

कहते हैं ना, जिंदगी में जब खुशियाँ लेनी है या देनी है तो आप इतने सरल रहिए कि सब आपसे हिल मिल सके, और इतने तरल रहिए ताकि आप सब में घुल मिल सकें।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: श्रोताओं, सुबह से रैली कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। जीवन की हर मुश्किल ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ा इंतज़ार कर लें तो वह फिर से हरी हो जाती है। इसलिए धैर्य रखें, थोड़ा इंतज़ार करें और आने वाला कल निश्चित ही प्यार भरा और खुशियों भरा होगा।

श्रोताओं, जब हम आपको कार्यक्रम सुनाते हैं तो लगता है बस खुशियां ही बांटे आपस में एक दूसरे से, इस तार के बदौलत हम एक दूसरे से जुड़े रहें। और बस खुशियां तब मिलती है जब हम एक दूसरे का साथ सुखी दिल से और निश्चल दिल से मिलाते हैं। और ये भी कहते हैं कि खुशी के फूल उन्हीं की झोली में गिरते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं।

0: कहते हैं आपकी अच्छाइयाँ बेशक अदृश्य हो सकती हैं, लेकिन इनकी छाप हमेशा दूसरों के दिलों में बसी होती है। इसलिए आप सरल और सहज रहें और दूसरों के साथ प्यार वाला रिश्ता बनाए रखें। और इसी के साथ दीजिए इजाज़त अपनी दोस्त उषा जायसवाल को सुबह से रिली सुरीली कार्यक्रम समाप्त करने की। नमस्कार, आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं खुला आकाश कार्यक्रम के अंतर्गत ये विषय है, राजभाषा हिंदी सामर्थ्य और सीमा। रामनिवास शुक्ल से पंकज मित्र की बातचीत आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे।
1: श्रोताओं नमस्कार, आज के इस कार्यक्रम में हम इस विषय पर बातचीत करेंगे कि आज के संदर्भ में हिंदी की सामर्थ्य और व्यापकता क्या है। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रामनिवास शुक्ल जी को, जो पूर्व संयुक्त निदेशक रहे हैं राजभाषा विभाग के। और राजभाषा से चूंकि इनका बहुत लंबा अनुभव है, सबका पढ़ता रहा है इससे, तो शुक्ला जी आपका बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले तो ये कि आपका राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में बहुत लंबा अनुभव रहा है और बहुत सारी बाधाएं भी रही हैं इस दिशा में, तो आप हमें ये बताएं कि राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में आपके अनुभव कैसे रहे हैं।
2: धन्यवाद पंकज जी। सर्वप्रथम तो मैं आकाशवाणी रांची का आप साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने इस राजभाषा विषय पर आमंत्रित किया इस परिचर्चा के लिए। जहाँ तक कि इस विषय का प्रश्न है कि राजभाषा के कार्यान्वयन का कैसा अनुभव रहा, तो मैं बताना चाहूँगा कि मुझे अपनी सेवा काल में राजभाषा कार्यान्वयन का ही कार्य देखना पड़ा, क्योंकि राजभाषा से संबंधित जब हम बात करते हैं तो इसके दो पक्ष हैं, एक अनुवाद का पक्ष है और दूसरा कार्यान्वयन का पक्ष है। बड़े मंत्रालयों में जहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ अधिकारी कर्मचारी होते हैं जिनको केवल अनुवाद का कार्य करना पड़ता है, और समय आने पर उनको कुछ समय के लिए राजभाषा कार्यान्वयन का भी कार्य देखना होता है। जहाँ तक मेरे ये सेवाकाल का प्रश्न रहा, शुरू से मैं अनुवादक के पद पर कार्यरत हुआ और वहाँ से लेकर एक लंबी यात्रा सेवाकाल की रही। और इसमें जहाँ तक कार्यान्वयन का प्रश्न है, मैं दो अहम पदों पर रहा हूँ जिनकी मैं चर्चा करना चाहूँगा, और वो पद थे एक क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय में उपनिदेशक का कार्यान्वयन। वहाँ पर मैं गाजियाबाद में पदस्थ था और मुझे 7 राज्य मिले हुए थे, उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर। इन प्रदेशों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना होता था। तो उस दौरान मैंने ये पाया कि वास्तव में कि हर कार्यालय में जा जाकर कि वहाँ पर राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की दशा और दिशा क्या है। तो प्राय ये देखने को मिलता है कि अच्छा काम हो रहा है, संसाधन भी आजकल काफी राजभाषा हिंदी के पास में है, और लेकिन बहुत कुछ करना भी है। क्योंकि जब निरीक्षण की बात आती है, चाहे वो संसदीय राजभाषा समिति का निरीक्षण हो, चाहे मंत्रालय से हो, चाहे वो क्षेत्रीय कानून कार्यालय से हो, वहां पर एक सजी समरी स्थिति देखने को मिलती है, और वो खास तौर से आंकड़ों के आधार पर होती है। और आंकड़ों के आधार पर जब स्थिति होती है और सही वस्तु स्थिति जब देखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अंतर कभी कभी दिखाई देता है। मैं वहां पर वही अनुरोध करता हूं कि वो उनमें तालमेल होना चाहिए, जो आप आंकड़े दे रहे हैं उसके अनुरूप ही आपकी स्थिति हो और उसका कार्यान्वयन हो, तब हमारा जो लक्ष्य है उसको हम सही रूप में, सही परिप्रेक्ष्य में हासिल कर सकते हैं। दूसरा हमें था संसदीय राजभाषा समिति, जिसमें पूरे भारत वर्ष का भ्रमण करना होता है और वहां निरीक्षण करना होता है। इसमें जैसा कि आप जानते हैं 30 सांसद होते हैं, 20 लोकसभा के हैं, 10 राज्यसभा के हैं, और ये समितियों में 3 उपसमितियां होती हैं, प्रथम उपसमिति, द्वितीय और तृतीय। और ये संसदीय राजभाषा समिति अपनी रिपोर्ट जो है सीधे महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत करती है। अभी तक करीब 12 खंड जो है उनकी रिपोर्ट महामहिम राष्ट्रपति को प्रस्तुत हो चुकी है। तो ये संसदीय राजभाषा समिति ने बहुत कार्य किया है
1: जी। तो शुक्ला जी, हम लोग ये देखते हैं कि सरकारी कार्यालयों में जो राजभाषा का कार्य है वो ज़्यादातर अनुवाद के सहारे चलता है, जो मूल रूप में हिंदी में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी बहुत कम है। तो आपको क्या लगता है कि इस दिशा में क्या किया जाना चाहिए कि मूल हिंदी में लोग ज़्यादा काम करें और अनुवाद तो एक तरीका है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त भी मूल हिंदी में काम करने वाले लोग हमें ज्यादा चाहिए, तो ये कैसे संभव हो सकता
2: है? अनुवाद जो है अपने आप में एक बहुत अच्छी कला है जी, जो कहीं न कहीं आप देखते हैं कि दो भाषाओं, दो संस्कृतियों को जोड़ने का एक सेतु का काम करता है अनुवाद। लेकिन वही अनुवाद जब रोजमर्रा के कामकाज में हम सहारा लेते हैं किसी भाषा को लेकर, तो उसमें भाषा का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। कोशिश ये होना चाहिए कि राजभाषा हिंदी जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 343(1) में साफ लिखा है कि देवनागरी में लिखित हिंदी इस देश की राजभाषा है। भारत सरकार की अपेक्षा है कि हमारा सारा कामकाज जो है वो राजभाषा हिंदी में निष्पादित हो। धीरे धीरे हम प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक अनुवाद का प्रश्न है, अनुवाद के सारे जब हम लेते हैं तो विशेष परिस्थितियों में तो ठीक है अनुवाद का हम सारा ले लें, लेकिन रोजमर्रा के कामकाज में जब अनुवाद पर हम आश्रित हो जाते हैं तो राजभाषा हिंदी का विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। इसलिए अपेक्षा ये की जाती है कि हम धीरे धीरे, भारत सरकार की अपेक्षा है कि हर अधिकारी कर्मचारी अपना कामकाज जो है अपनी राजभाषा हिंदी में प्रारंभ कर दे और अधिक से अधिक उसमें निष्पादित करे।
1: एक प्रश्न और इसके साथ ही दिमाग में आ रहा है कि हिंदी का प्रचार प्रसार तो बहुत है, लेकिन राजभाषा के रूप में ज़्यादातर जगहों पे ये हो रहा है कि हमारे देश में ही आज़ादी के इतने साल बीत गए, फिर भी वो राजभाषा हिंदी उस तरह से वो स्थान प्राप्त नहीं कर पाई जिसकी वो अधिकारिणी।
2: देखिए, इस संबंध में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश

0: सैंतालीस में स्वतंत्र हुआ और हमारा संविधान 1950 में बना। हमारे संविधान के भाग 5, भाग 6 और भाग 17 में देखेंगे तो उसमें राजभाषा हिंदी के प्रावधान मिलेंगे। भारत सरकार ने पुरजोर कोशिश की है और कर रही है कि इस दिशा में जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और धीरे धीरे जो राजभाषा हिंदी है उसमें सारा कामकाज होने लगे। भारत सरकार ने बहुत संसाधन भी जुटाए हैं। आप देखेंगे कि केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो बना है जिसमें जितने भी विभाग हमारे सरकारी विभाग होते हैं उनमें जो लंबित काम है, जो परफॉर्मा है, बहुत सारी नीतियां हैं जो अंग्रेजी में चली आ रही हैं, उनके अनुवाद कार्य करने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो बनाया है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत बना हुआ है जो आपको राजभाषा हिंदी का प्रशिक्षण देता है। आपका एक केंद्रीय विश्व आपका सचिवालय बना है मॉरिशस में, वो भी इस दिशा में कार्यरत है कि विश्व हिंदी सम्मेलन जितने हो रहे हैं और राजभाषा हिंदी को एक पूरे विश्व पटल पर जो है उसको लाने के लिए भरसक प्रयास उसका है। आपका राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा अपने में एक बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहा है। ऐसी बहुत सारी संस्थाएं बनी हुई हैं, भारत सरकार ने ये किया है। आपको इस दिशा में बताना चाहेंगे कि भारत सरकार ने 6 समितियां बनाई हैं राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को लेकर। उसमें पहली समिति है आपका केंद्रीय हिंदी समिति जिसके अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं और वो उसकी उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होती है। दूसरी है केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति जिसके अध्यक्ष जो होते हैं राजभाषा विभाग के सचिव होते हैं, उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है। तीसरी जो है आपका हिंदी सलाहकार समिति है, हर मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति बनी हुई है जिसकी अध्यक्षता वहाँ के जो मंत्री महोदय होते हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है। एक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति है, हर नगर में समितियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो हर मंत्रालय में होती है और एक है आपकी जो बड़े स्तर पर होती है, तो इस प्रकार से 6 समितियाँ बनी हैं। ये समितियाँ भी पुरजोर कार्य कर रही हैं। तो स्वतंत्रता के बाद कार्य तो बहुत हुआ है लेकिन जो हमारी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने कम से कम 200 वर्ष लगाए हैं अपनी राजभाषा अंग्रेजी को थोपने के लिए, हमें अभी जो 76 वर्ष हुए हैं उसमें काम तो बहुत हुआ है लेकिन जो हम अपेक्षाएं कर रहे हैं कि हिंदी तो हमारे इस देश की भाषा है, कामकाज होना चाहिए, उसमें निश्चित रूप से हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप अभी बहुत प्रयास करना बाकी है। और उसके लिए दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि हमारे संविधान में, जैसा कि आप जानते हैं, जब संविधान बना तो अपेक्षा ये की गई थी 15 वर्ष के बाद में अंग्रेजी की जगह हिंदी आ जाएगी और हिंदी में सारा कामकाज होने लगेगा। लेकिन 15 वर्ष जैसे 1965 में होने वाले थे, भारत सरकार ने देखा कि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारी भाषाएं हैं, बहुत सारे धर्म के मानने वाले हैं और भाषा बड़ा संवेदनशील पहलू होता है। कहा गया है कि भाषा किसी भी देश और समाज को जोड़ने और तोड़ने की दोनों संभावित शक्तियां इसमें विराजमान होती हैं। इस दोहरी शक्ति को पहचानते हुए भारत सरकार ने राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन का कार्य प्रेरणा और प्रोत्साहन के आधार पर किया है। इसलिए 1963 में एक राजभाषा अधिनियम पारित हुआ जिसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि हिंदी के साथ साथ अभी अंग्रेजी रहेगी ताकि देश में किसी को असुविधा न हो और धीरे धीरे राजभाषा हिंदी आगे बढ़ती रहे।
1: जी शुक्ला जी, आम धारणा ये है कि अभी सूचना प्रौद्योगिकी का जोर ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हिंदी कितनी कारगर हो पाएगी, इसके बारे में बहुत सारी आशंकाएं हैं।
0: शुरू तो, जी
1: क्या लगता है आपको?
0: शुरू में कुछ अटकलें थी कि हिंदी में काम कैसे होगा, जिससे कंप्यूटर प्रौद्योगिकी आई, कंप्यूटर में बड़ी आशंकाएं थी कि अरे हिंदी में कार्य कैसे होगा, लेकिन अभी आपने देखेंगे बहुत सॉफ्टवेयर तैयार हुए हैं और हिंदी में काम करने में किसी प्रकार की असुविधा नहीं है। मुझे याद है कि संसदीय जब सत्र चलता था संसद का, तो मैनुअल टाइपराइटर पर हम लोग काम करते थे, उसमें संशोधन होता था तो पूरा फिर दोबारा टाइप करना पड़ता था। आज आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर की वजह से बहुत साधन मिल गए हैं, हमें पूरा टाइप नहीं करना पड़ता है और उसमें जैसे मेल हमें कहीं भेजनी होती है तो बहुत सुविधा है कि बिना अविलंब जो है वो हम अपना मेल भेज देते हैं। तो अब पत्र जो भेजते थे जिसमें बहुत समय लगता था, उसकी जगह पर हमने मेल और इसका सारा ले लिया है। तो राजभाषा हिंदी इसमें बहुत सफल हुई है और आने वाला समय भी बड़ा स्वर्णिम है कि राजभाषा के माध्यम से हम अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी इस प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है हम आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे पूरी आशा है कि हिंदी इसमें अपना एक अहम भूमिका का निर्वाह कर रही है।
1: एक भूमिका हिंदी की और है कि जो देश की सामाजिक संस्कृति के योगदान में, क्या लगता है आपको हिंदी कितनी कारगर महत्वपूर्ण?
0: सामाजिक संस्कृति कहा जाता है कि हर भाषा किसी भी समाज और देश की संस्कृति की वाहक हुआ करती है। जब व्यक्ति भाषा बोलता है तो वो केवल भाषा नहीं बोलता है, भाषा के माध्यम से उस व्यक्ति की सभ्यता, संस्कृति और संस्कार मुखरित होते हैं। इसलिए भाषा जो है वो संस्कृति की वाहक है। जब राजभाषा हिंदी के विकास की बात हुई तो हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान के अनुच्छेद 351 आप देखेंगे तो उसमें ये व्यवस्था की गई है कि भाषा को विकास कैसे किया जाए, विकसित कैसे किया जाए। तो उसमें लिखा है कि हिंदी का विकास सुनिश्चित करना ताकि वह इस देश की सामाजिक संस्कृति की सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम हो सके, और उसके लिए मुख्यतः संस्कृत से गौरता जो हमारी संविधान की अष्टम अनुसूची है 8th शेड्यूल, उसमें 22 भाषाएं हैं, उनसे शब्द ग्रहण करते हुए राजभाषा हिंदी का विकास सुनिश्चित करना संघ का कर्तव्य होगा। तो हमने ये ध्यान रखा है वहां पर हमारे संविधान निर्माताओं ने कि जितनी भी हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं उनसे ऊर्जा लेकर राजभाषा हिंदी आगे बढ़ेगी। तो एक ये पूरे देश का एक प्रतिबिंब जो है राजभाषा हिंदी में आपको मिलेगा, चाहे वो किसी प्रदेश का रहने वाला हो, जब राजभाषा हिंदी पढ़ेगा तो उसे लगेगा इसमें तो हमारी भाषा के शब्द हैं, और वो उससे सहज रूप से जुड़ सकेगा। उदाहरण के लिए आपको बताएं, जैसे पावती शब्द आया एक्नॉलेजमेंट के लिए, पावती शब्द हिंदी का नहीं है, ये शुद्ध जो है मराठी का है, मराठी से हमने लिया है। अब मराठी भाषावासी जब इसको पढ़ेगा कि पावती शब्द इसमें आया है तो कहेगा अरे ये तो हमारी भाषा का शब्द है। तो ये सामसिकता जो है राजभाषा हिंदी इसकी वाहक है, और आज पूरे तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी जो है इस देश की सामसिक संस्कृति की संवाहिका है, और इस रूप में उसका विकास जो है वो बहुत अच्छे उसमें हुआ है, और आज सारी भाषाओं को लेकर चल रही है। किसी ने कहा है कि बड़ा अच्छा लगता हुआ बताते हुए कि हिंदी संस्कृत का आशीर्वाद लेकर अरबी फारसी के शब्दों को आत्मसात करते हुए, उसके बाद में आपका खड़ी बोली का उच्चारण ग्रहण करते हुए, ब्रजभाषा का बांकपन तो अवधि का मिठास लिए हुए इस धरती पर बसने वाली करोड़ों लोगों के सपनों की एक ऐसी भाषा है जो सपने भी दिखाती है और उन सपनों को साकार भी करती है। ये वो भाषा है जो सारी भाषाओं को लेकर चल रही है, सारी आपस में सहोदरा है, किसी प्रकार का इनमें अंतर नहीं है। इसलिए सारी भाषाओं, प्रादेशिक भाषाएं हमारे देश की जो है उनसे ऊर्जा लेकर राजभाषा हिंदी एक आगे अपना पदार्पण कर रही है।
1: तो बात तो हिंदी के बारे में चलती है तो बहुत लंबे समय तक चल सकती है, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है अब। तो इसी खूबसूरत बात के साथ कि हिंदी किस तरह से विश्व पटल पर भी अपना स्थान बना रही है, और इस उम्मीद के साथ भी जिस तरह की बात आपने हिंदी के बारे में कही, तो इसी को ध्यान में रखते हुए लोग हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें तो उसी में सफलता इस कार्यक्रम की भी है, और हम हिंदी सेवी के रूप में, हिंदी भाषी के रूप में सफल भी हो पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए और इस बातचीत में भाग लेने के लिए।
0: धन्यवाद अंकल जी।
2: अभी आप खुला आकाश कार्यक्रम के अंतर्गत वार्ता सुन रहे थे, राजभाषा हिंदी सामर्थ्य और सीमा, रामनिवास शुक्ल से बातचीत हो रही थी पंकज मित्रा की, और ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है, सुबह के 8 बजने वाले हैं, आप हमारे दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार प्रभात।
3: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की, टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा, 26 व्यापार पास जारी किए गए। अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को मतदान के लिए नागरिकता प्रमाण अनिवार्य करने से रोका। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी अमरीका के साथ ईरान के प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में निरीक्षण करेगी। और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज शाम मैनचेस्टर में भारत का सामना बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की

0: समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति की 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। ये दिन उस सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने का अवसर भी है जिन्होंने आपातकाल के दौरान दमन, उत्पीड़न और कठिन परिस्थितियों का सामना किया। इस अवसर पर देशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
2: आज ही के दिन वर्ष 1975 में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक अशांति से उत्पन्न खतरों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। आपातकाल लागू होने के बाद कार्यपालिका को व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए और राज्यों पर केंद्र का नियंत्रण अधिक मजबूत हो गया। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों, जिनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण सभा करने और देश में स्वतंत्र रूप से आवागमन करने का अधिकार शामिल था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नागरिकों को इन अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालय की शरण लेने के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। समाचार पत्रों पर पूर्व सेंसरशिप लागू कर दी गई और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए स्थापित वैधानिक संस्था प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को भी समाप्त कर दिया गया। आपातकाल लागू किए जाने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में वर्ष भर चलने वाले कार्यक्रमों के समापन समारोह का आयोजन कर रहा है। इस अवसर पर संविधान हत्या दिवस तथा लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी प्रदर्शनी के साथ साथ संविधान हत्या दिवस विषय पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पंजाब में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की शुरुआत आज से होगी। ये अभियान 24 जुलाई तक चलेगा। राज्य की मुख्य चुनाव अधिकारी अनन्ता मित्रा ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 1 अक्टूबर को जारी की जाएगी। इधर दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए घर घर जाकर गणना 30 जून से शुरू होगी। इस संबंध में मुख्य चुनाव अधिकारी ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग पर राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कार्यक्रम में नीति निर्माता, विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना की जांच के लिए विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस मामले में भवन पर्यवेक्षक और 2 श्रमिक आपूर्तिकर्ताओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होने जा रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कल 26 भारतीय व्यापारियों का पहला दल तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश करेगा।
3: धारचूला के उप जिलाधिकारी एवं व्यापार अधिकारी आशीष जोशी ने बताया कि पहले चरण में 26 व्यापार पास जारी किए गए हैं, जिनमें 17 व्यापारी और 9 सहायक शामिल हैं। व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए गुंजी में सीमा शुल्क कार्यालय भी स्थापित किया गया है। व्यापारियों ने अपना सामान लिपुलेख दर्जे के

0: गत स्थित गोदाम तक पहुंचा दिया है। 103 से अधिक व्यापारियों ने व्यापार पास के लिए आवेदन किया। दूसरे चरण में 25 अन्य व्यापारियों को भी अनुमति दी जाएगी। सामान को लिपुलुई दर्जे तक पहुंचने के लिए नाभी डांग से निकट घोड़े खच्चरों की व्यवस्था भी की गई है।
1: गुंजी में जितनी भी हमारी व्यवस्थाएं थी वो अभी सुचारू है। बुधवार तक वहाँ पे कस्टम्स का पूरा स्टाफ नियुक्त हो जाएगा और जो घोड़े खच्चरों को लेकर पड़ाव था उसमें संयुक्त बैठक हुई ITBP आर्मी व्यापारी और प्रशासन की, उसमें भी एक आपसी सहमति से नाभी डांग के समीप भी एक चयनित किया गया है।
0: गौरतलब है कि भारत चीन सीमा व्यापार वर्ष 2019-20 में COVID-19 महामारी के कारण बंद हो गया था। अब इसके दोबारा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के व्यापारियों और स्थानीय लोगों में उत्साह है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर ब्रिटेन जा रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि ये यात्रा 15 जुलाई को भारत ब्रिटेन के बीच होने वाले ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा सामाजिक सुरक्षा से जुड़े दोहरे अंशदान समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: इस दौरान श्री गोयल ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर कायल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसमें व्यापार समझौते के कार्यान्वयन की तैयारियों पर चर्चा होगी। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष दोहरे अंशदान समझौते को लागू करने की कार्य योजना की भी समीक्षा करेंगे, जिससे दोनों देशों के बीच पेशेवरों और व्यवसायों की आवाजाही में वृद्धि होने की उम्मीद है। श्री गोयल लंदन में आयोजित इंडिया ग्लोबल फोरम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे, जिसका विषय है पूंजी नवाचार और ब्रिटेन भारत मूवमेंट। वे उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ सरकार से व्यापार संबंधी कई बैठकों में भाग लेंगे। समाचार कक्ष से अमीषा।
2: भारत आज से ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक कल तक चलेगी। बैठक में तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा की जाएगी, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा और स्थिरता, ऊर्जा का उपयोग और समानता तथा प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल हैं। अमरीका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की अमरीकी जिला न्यायालय की न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा है कि अमरीकी संविधान चुनावों के नियमन का अधिकार राज्यों और संसद को देता है तथा ट्रंप के प्रस्तावित प्रावधान शक्तियों के पृथककरण के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। वेनेजुएला और जापान में आज सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला के याराकोए के युमारे शहर में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। अमरीकी भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार इससे ठीक 39 सेकंड पहले वेनेजुएला के सैन फेलिप में भी 7.2 तीव्रता का भूकंप आया। इस दौरान कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जापान के उत्तरी भाग में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी तीव्रता 6.9 थी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने कहा है कि वह अमरीका और ईरान के बीच हुए प्रारंभिक शांति समझौते के तहत ईरान में परमाणु निरीक्षण करेगी। एक रिपोर्ट।
4: IAEA के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने जापान में पत्रकारों को बताया कि निरीक्षण जल्द ही शुरू होंगे और इसकी तारीखों तथा प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले सप्ताह हुए समझौते में ईरान के उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम को कम करने की प्रक्रिया IAEA की निगरानी में किए जाने का प्रावधान है। हालांकि ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा कि क्षतिग्रस्त परमाणु प्रतिष्ठानों और परमाणु सामग्री तक पहुंच का मुद्दा अमेरिका के साथ अंतिम समझौते के दायरे में ही तय किया जाएगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान से मुलाकात की। इसके बाद वे समझौते पर चर्चा के लिए कुवैत और बहरीन की यात्रा पर रवाना हो गए। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
2: और अब खेल के मैदान की खबरों के साथ हैं सिद्धार्थ सिंह।
5: ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में ग्रुप ए के मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ग्रुप ए में 3 में से 2 मैच जीतकर दूसरे स्थान पर है, वहीं बांग्लादेश चौथे स्थान पर है। दूसरी ओर भारत ए और श्रीलंका ए के बीच 2 मैचों की मल्टी डे क्रिकेट श्रृंखला आज से शुरू हो रही है। मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10 बजे से श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में में खेला जाएगा। श्रृंखला के दोनों चार दिवसीय मैच इसी मैदान पर खेले जाएंगे। भारत ए टीम की अगुवाई ध्रुव जुरेल करेंगे। अब बात फुटबॉल की, जहां फीफा विश्व कप में मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर

0: नॉकआउट में प्रवेश कर लिया है। मोरक्को के अशरफ हकीमी को एक गोल और एक असिस्ट के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। वहीं विनिसियस जूनियर के दो गोलों की बदौलत ब्राजील ने स्कॉटलैंड को 3-0 से हराया। इस जीत के साथ ब्राजील ग्रुप सी में शीर्ष पर रहते हुए नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। एक अन्य मुकाबले में बोस्निया हर्जेगोविना ने कतर को 3-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया, जबकि स्विट्जरलैंड ने कनाडा को 2-1 से मात देकर ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके साथ ही कनाडा भी पहली बार विश्व कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने में सफल रहा है।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों, झारखंड, कोंकण और गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, झारखंड, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिम राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तेज आंधी और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद प्रियंका। भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते से जुड़ी वार्ता को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रमुखता दी है। अमर उजाला ने लिखा है टैरिफ की समय सीमा करीब पर अंतरिम समझौते पर असमंजस, अब रोकनी ही होगी जंग। शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है अमरीकी संसद में ईरान युद्ध रोकने के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध वोटिंग, 53 साल में पहली बार संसद में हारे राष्ट्रपति। देश बंधु की खबर है कच्चे तेल की कीमत 4 महीने के निचले स्तर पर, अमरीका ईरान के बीच शांति वार्ता से आपूर्ति श्रृंखला में सुधार। दैनिक जागरण ने लिखा है क्रूड के दाम में नरमी से सेंसेक्स 790 अंक चढ़ा, -269 डिग्री पर धड़का भारत का क्वांटम सपना। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है अमरावती वैली की उपलब्धि, अब देश में ही क्वांटम तकनीक की पड़ताल। पत्र ने बताया है कि उस भविष्य की तैयारी है जहां ताकत का पैमाना चिप्स, डेटा सेंटर या सुपर कंप्यूटर नहीं बल्कि क्वांटम कंप्यूटर हो गई। भगौड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को बैंक ऑफ इंडिया को 1,15,00,000 चुकाने के लंदन हाईकोर्ट के फैसले को दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। अब झमाझम बारिश का दौर शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है मध्य प्रदेश पहुंचा मानसून, 3 दिन बाद रफ्तार पकड़ेगा, फिर 5 दिन पूरे देश में बरसेगा। अमर उजाला ने अपने संपादकीय में लिखा है भारत के कुछ हिस्सों में हाल के दिनों में हुई बारिश ने भीषण गर्मी से फौरी तौर पर राहत बेशक दिलाई हो, लेकिन दुनिया भर में बढ़ता तापमान इशारा करता है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ एक देश या महाद्वीप की समस्या नहीं रह गया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रगति की बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा की। टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था पर जोर दिया। देश में आपातकाल के दौरान पीड़ित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से भारत चीन सीमा व्यापार 6 वर्ष बाद फिर शुरू होगा। वेनेजुएला में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप, कई इमारतें क्षतिग्रस्त और आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में आज भारत का सामना बांग्लादेश से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning. I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reviews infrastructure projects worth around 30,000 crore rupees at Pragati meeting, pushes for AI-driven TB elimination and stronger cyber fraud response. Samvidhan Hatya Divas being observed to pay homage to those who suffer during emergency. India-China border trade via Lipulekh Pass in Uttarakhand to resume after 6 years, 26 trade passes issued. U.S. federal judge bars Trump administration from implementing proof of citizenship requirement to vote. Powerful 7.5 magnitude earthquake hits Venezuela, causing collapse of multiple buildings. And in cricket, India to take on Bangladesh in Group A match of ICC Women's T20 World Cup in Manchester this evening. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi yesterday. During the meeting, the Prime Minister reviewed 4 major infrastructure projects.

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्तिका पेंशन योजना को दी मंजूरी। राज्य के पात्र कलाकारों को हर महीने मिलेगा 4,000 रुपये की सम्मान राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में GIS आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा। रांची, धनबाद और गिरिडीह में तय समय सीमा में डिजिटल मैपिंग पूरा करने का दिया निर्देश। मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समापन समारोह आज। रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन। मुहर्रम पर्व को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। हजारीबाग सहित कई संवेदनशील इलाकों में जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। और राज्य की 8 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कायना कृष्णा सहाय ने राष्ट्रीय पटल पर लहराया परचम। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन U10 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब जीता। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने प्रदेश के कलाकारों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर मासिक निवृत्तिका यानी कलाकार पेंशन योजना को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत पात्र कलाकारों से आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के बुजुर्ग, गंभीर रूप से बीमार और स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों को 4,000 रुपये प्रतिमाह सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत जुडको द्वारा संचालित GIS आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली परियोजना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागीय मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू और विकास आयुक्त

0: अजय कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस आधुनिक परियोजना के तहत शहरी परिसंपत्तियों, सड़कों, जल निकायों और भवनों की सटीक डिजिटल मैपिंग और जियो टैगिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यों को समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा करें। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने संथाल परगना के पाकुड़, गुड्डा और साहिबगंज जिलों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पीवीटीजी वर्ग के मतदाताओं को पंजीकरण में कोई कठिनाई ना हो। उन्होंने सभी अधिकारियों से नियमों का अक्षरशः पालन करने को कहा।
1: ट्रैफिक में आने वाली चल रही है एसएआर के फॉरम में उनसे जानकारी दिया, उनका एक सहयोग भी मांगा जा रहा ताकि एक भी पात्र नागरिक का नाम छूटे नहीं, उसी लिए सबका शामिल करा था, उसके लिए किया जा रहा है। सभी प्रक्रिया में साथ में रहने के समय में एक पारदर्शी का अनुकूल कार्यक्रम करा सकते हैं, जिससे यह दूर इलाका है बरवा में, वहां पर वो कार्यक्रम कैसे चला था उसका दृष्टिकोण है, वो कार्यक्रम अच्छा भाव में किया जा रहा है, क्या वो जीएलएसू का बाई कर।
0: रांची के मोराहाबादी मैदान स्थित आर्यभट्ट सभागार में सिदो कानो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लिमिटेड की वार्षिक आम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए, जहां उपस्थित लोगों को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। सभा को संबोधित करते हुए उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में बिरसा हरित ग्राम योजना की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया।
2: बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत सभी जगह जहाँ जहाँ मैंगो का प्लांटेशन को कराए, कृषि हॉर्टिकल्चर से भी जुड़ा हुआ चीजों को हम लोग पीछे ला सकते हैं, जैसे कि मशरूम का भी आजकल काफी जो खेत बनाना पर उससे अच्छे लोग उसकी खेती करते हैं, आमदनी कर रहे हैं।
0: कृषि विज्ञान केंद्र खूंटी द्वारा जिले के सभी 6 प्रखंडों में किसानों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। केंद्र सरकार के खेत बचाओ अभियान के तहत विभिन्न गांवों में जागरूकता अभियान तेज कर दिया गया है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ मार्केटिंग अधिकारी बिजेश महाराणा ने विशेष रूप से भाग लेकर किसानों को अभियान के उद्देश्यों की जानकारी दी। आकाशवाणी के ताज़ातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग नगर निगम परिसर में पीएम स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने पर भव्य स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस उत्सव में उत्कृष्ट पथ विक्रेताओं को सम्मानित किया गया और डिजिटल लेनदेन पर जोर दिया गया। नगर निगम के सिटी मैनेजर कृष्णा ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य रेहड़ी पटरी व्यवसायियों को ऋण देकर आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।
3: पीएम स्वनिधि का जो प्रोग्राम था, इस स्कीम के अंतर्गत जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है उन लोगों को 3 ट्रेंच का लोन दिलवाना था, साथ ही साथ कुछ ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं को पुरस्कृत किया गया जो बहुत अच्छा लोन चलाए। अभी जो ये महोत्सव था इसलिए सेलिब्रेट किया गया ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा योजना का अवेयरनेस फैला सके।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले

0: जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: राजधानी रांची में आज नशा मुक्त अभियान के तहत बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक विशेष मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसे पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने हरी झंडी दिखाई। वहीं मादक पदार्थों के दुरुपयोग के खिलाफ चल रहे राज्यव्यापी अभियान का मुख्य समापन समारोह आज सुबह 11 बजे से डोरेंडा के शौर्य सभागार में होगा, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मुहर्रम पर्व को लेकर राज्य भर में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर सभी जिलों में शांति समिति की बैठकें और फ्लैग मार्च आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हजारीबाग में पुलिस ने संयुक्त फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
3: सभी लोगों से अपील करता हूं कि बहुत ही खुशनुमा माहौल में मुहर्रम के त्योहार को मनाएं, और इसके लिए हम लोगों ने एहतियात के तौर पर सभी जगहों पर दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी है। जितनी भी अम्यूनिटीज हैं उसके कंसर्न डिपार्टमेंट को, चाहे नगर निगम को, पीएचडी को, हेल्थ डिपार्टमेंट को, सभी तरह के दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। किसी भी तरीके से त्योहार में कमी नहीं रखनी है।
2: 25 जून 1975 के आपातकाल को याद करते हुए आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। देश भर में इससे जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करना है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने से अगले 4 दिन उमस भरी गर्मी बढ़ेगी, हालांकि शाम को कुछ इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। इस बीच जामताड़ा के चरकदाहा गांव में कल शाम आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। राज्य के महज 8-9 वर्ष की उभरती हुई टेनिस खिलाड़ी कायना कृष्णा सहाय ने राष्ट्रीय पटल पर राज्य का नाम रोशन किया है। कायना ने भुवनेश्वर के गुरुकुल टेनिस अकादमी में आयोजित ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अंडर 10 राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देशभर की प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को पछाड़ते हुए कायना ने पूरे टूर्नामेंट में एक भी सीट गंवाए बिना यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 151 विशेषज्ञ डॉक्टर समेत 262 को नियुक्ति पत्र सौंपे जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, झारखंड में बिहार मॉडल पर होगी राजस्व वसूली, मिनरल राजस्व का लक्ष्य होगा 2 गुना। हिन्दुस्तान ने लिखा है, सीए इंटरमीडिएट परीक्षा में रांची केंद्र की टॉपर बनी राशि विजय। प्रभात खबर के शब्द हैं, कैबिनेट में गया था केंद्रीय भंडार से नमक खरीद का प्रस्ताव, विभाग ने बदलकर निजी कंपनी को दे दिया। दैनिक जागरण लिखता है, नामांकन व टेंडर आवंटन में अनियमितता की शिकायत पर रिम्स में हुई छापेमारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राज्य सरकार ने बुजुर्ग, बीमार और दिव्यांग कलाकारों के लिए मासिक निवृत्ति का पेंशन योजना को दी मंजूरी। राज्य के पात्र कलाकारों को हर महीने मिलेगा 4,000 रूपये की सम्मान राशि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में जीआईएस आधारित शहरी प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा। रांची, धनबाद और गिरिडीह में तय समय सीमा में डिजिटल मैपिंग पूरा करने का दिया निर्देश। मादक पदार्थों के दुरुपयोग के विरुद्ध राज्यव्यापी जागरूकता अभियान का समापन समारोह आज। रांची में मैराथन दौड़ का आयोजन। मुहर्रम पर्व को लेकर राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता। हजारीबाग सहित कई संवेदनशील इलाकों में जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च। और राज्य की 8 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी कायना कृष्णा सहाय ने राष्ट्रीय पटल पर लहराया परचम। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन अंडर 10 राष्ट्रीय प्रतियोगिता का खिताब जीता। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। श्रोताओं, आइए सुनवाते हैं आपको अगला कार्यक्रम। और हम आपको बता दें कि आज आपके साथ है आपकी दोस्त उषा जायसवाल। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और चलिए सुनते हैं कोरठा लोकगीत। कलाकार हैं प्रेमचंद कालिंदी और साथी।

श्रोताओं, अभी आप खोरठा लोकगीत सुन रहे थे प्रेमचंद कालिंदी और साथियों की आवाज़ों में, और इसी के साथ ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए हम आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंजन। सबसे पहले लीजिए सुनिए मेघा भारद्वाज की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत फिल्म रोजा का। संगीत दिया है AR रहमान ने और गीतकार हैं PK मिश्रा।

0: भारत अभियान
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कभी खुशी कभी गम, इस फिल्म का ये गीत अभी आप सुनने वाले हैं। आवाजें हैं अलका याग्निक, सोनू निगम, उदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार। संगीत दिया है जतिन ललित ने और गीत के बोल लिखे हैं समीर अंजान ने।

श्रोताओं, और रसरंजन कार्यक्रम का अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं प्यार झुकता नहीं फिल्म से। आवाजें हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार हैं SH बिहारी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के रांची केंद्र से रस रंजन कार्यक्रम। अगला गीत सुनिए फिल्म यस बॉस से। आवाज अभिजीत भट्टाचार्य की है, संगीत दिया है जतिन ललित ने और गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

श्रोताओं, अगला गीत आइए हम आपको सुनवाते हैं हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से। आवाजें हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर की, धुन बनाई है आर डी वर्मन ने और गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म का ये प्यारा सा नगमा। और इसी के साथ आज का रसरंजन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। श्रोताओं, अब आइए हम आपको सुनवाते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार हैं पंडित मनोज कुमार केडिया। तबले पर संगत करेंगे श्रीजीत चटर्जी। सरोद पर राग विलास खानी तोड़ी आप सुनेंगे। आलाप और जोड़ के बाद दो गते प्रस्तुत हैं, मध्य लय की गत झप ताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में निबद्ध हैं। आइए सुनते हैं मनोज कुमार केडिया की आवाज़ में ये शास्त्रीय संगीत में विलास खानी तोड़ी।

0: अभी आप सुने।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। हमारे आज के कलाकार थे मनोज कुमार केडिया। इनसे आप सुन रहे थे सरोद पर राग बिलास खानी तोड़ी। आलाप और जोड़ के बाद दो गतें प्रस्तुत थी, मध्य लय की गत झप ताल में और द्रुत लय की गत तीन ताल में निबद्ध थी। और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अब आइए सुनते हैं विज्ञान जगत कार्यक्रम। इसके अंतर्गत चर्चा होगी, गर्मी में विद्युत उपकरणों का सावधानी से उपयोग करें। भेंटवार्ता आप सुनिएगा, मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और चुनौतियां। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर अभिषेक आनंद, इनसे बातचीत करेंगे प्रभु शरण। और जीवन परिचय दी जाएगी अलेक्जेंडर पार्क्स की, और आविष्कार के बारे में आज जानकारी होगी स्टेनलेस स्टील के बारे में। वाचन सहयोग है वसंत कुमार का, प्रस्तुति प्रभु शरण की है। आइए सुनते हैं कुछ ही पलों बाद ये कार्यक्रम।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह हम आज फिर से ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या नई जानकारी लेकर आए हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं गर्मी में विद्युत उपकरणों का सावधानी से क्यों उपयोग करना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और चुनौतियों के बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पार्क्स के बारे में। इसके बाद बारी होगी खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपसे जानकारी साझा करेंगे स्टेनलेस स्टील का आविष्कार कैसे हुआ इसके बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गर्मी में विद्युत उपकरणों का सावधानी से क्यों उपयोग करना चाहिए इसके बारे में। हम अपने जीवन में विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे जीवन को सुलभ बना सके और हमें सुविधा प्रदान कर सके। लेकिन जब यही चीज हम जैसे तैसे इस्तेमाल करने लगे और इनका रखरखाव ठीक से न करें तो ये उपकरण हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। गर्मी का मौसम आते ही सबसे पहले हम बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करने के बारे में सोचते हैं और इसका इस्तेमाल काफी मात्रा में करने लगते हैं। पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, पानी की मोटर, चार्जर और अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम दिन रात चलाते रहते हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही न केवल उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि आग लगने, शॉर्ट सर्किट और बिजली के झटके जैसी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती है। गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ने के कारण बिजली के तार और उपकरण अधिक गर्म हो जाते हैं। यदि वायरिंग पुरानी हो या उपकरण खराब स्थिति में हो तो दुर्घटना की संभावना

0: संभावना बढ़ जाती है।
1: इसलिए सभी विद्युत उपकरणों के नियमित जांच और रखरखाव बहुत आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि लोग एक ही मल्टीप्लग या एक्सटेंशन बोर्ड में कई उपकरण लगाकर एक साथ जोड़ देते हैं। इससे बिजली का भार बढ़ जाता है और तार गर्म होकर शॉर्ट सर्किट का कारण बन जाते हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही उपकरणों का उपयोग करना चाहिए और ओवरलोडिंग करने से बचना चाहिए। एयर कंडीशनर, कूलर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों की समय समय पर सफाई और सर्विसिंग करानी बहुत आवश्यक है। धूल जम जाने से इनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है और बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। साथ ही उपकरणों के अधिक गर्म होने का खतरा भी बना रहता है। मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। चार्जिंग पूरी होने के बाद चार्जर को बिजली के सॉकेट से निकाल देना चाहिए, लेकिन कई बार हम ऐसी चीजों को नजरअंदाज करते हैं और चार्जर को लगा हुआ छोड़ देते हैं, यानी चालू अवस्था में ही छोड़ देते हैं। इससे होता यह है कि बिजली उसमें निरंतर चलते रहती है और अनजाने में ही दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। यदि किसी उपकरण से चिंगारी निकल रही हो या जलने की गंध आ रही हो या असामान्य आवाज भी आ रही हो तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए और किसी प्रशिक्षित तकनीशियन से उसकी जांच करवानी चाहिए। गर्मी के मौसम में पानी और बिजली का संपर्क भी खतरनाक साबित हो सकता है। गीले हाथों से कभी भी बिजली के स्विच या उपकरणों को न छुएं। पानी के मोटर, कूलर या अन्य उपकरणों का उपयोग करते समय ये बात ध्यान में रखें कि बिजली के तार सुरक्षित और सूखे हों। थोड़ी सी सावधानी हमें बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकती है। इसलिए गर्मी के मौसम में विद्युत उपकरणों का उपयोग समझदारी और सतर्कता से करनी चाहिए। तो ये हमने आपसे बातचीत कर ली कि गर्मी में विद्युत उपकरणों का सावधानी से हमें क्यों उपयोग करना चाहिए इसके बारे में। अब बारी भेंटवार्ता के, और भेंटवार्ता में आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो है मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और इससे जुड़ी हुई चुनौतियां। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर अभिषेक आनंद और उनसे बातें कर रहे हैं प्रभु शरण।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रभु शरण आपका स्वागत करता हूं इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और उससे जुड़ी चुनौतियां। बदलते मौसम, बेमौसम बारिश, हीट वेव, तूफान, ये सब अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में मौसम का सटीक पूर्वानुमान न केवल हमारी सुविधा का प्रश्न है, बल्कि यह कृषि या आपदा प्रबंधन, यातायात और आम जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें कौन सी तकनीकें काम करती हैं और किन चुनौतियों से जूझना पड़ता है मौसम वैज्ञानिकों को, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रांची मौसम विभाग के निदेशक और अनुभवी मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जी, जिनसे हम जानेंगे कि मौसम की दुनिया के पीछे कैसा चलता है विज्ञान और तकनीक का पूरा संसार। हम अभी अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार सर।
3: नमस्कार।
2: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि मौसम पूर्वानुमान से क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है और इसके पीछे का जो विज्ञान है, जो सिद्धांत है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
3: देखिए, कोई भी जो पूर्वानुमान होता है उसका एक खास मकसद होता है, वो मकसद है प्लानिंग। पूर्वानुमान मतलब अगर पहले से आपको आइडिया हो गया है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग करते हैं, गतिविधियां उसके हिसाब से आप अपने आप को थोड़ा सा ढालते हैं कि जो चुनौतियां आने वाली हैं उसको आप अच्छे से निपट पाएं। तो मौसम विज्ञान में भी यही है, मौसम पूर्वानुमान का मतलब हो गया कि मौसम आधारित आपको प्लानिंग करना है, क्योंकि मौसमी जो गतिविधियां हैं उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, बस उन गतिविधियों से जानकारी प्राप्त करके आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि वो जो मौसमी गतिविधियां हैं, चाहे साइक्लोन हो, भारी बारिश हो, हीट वेव हो, कोल्ड वेव हो, तो जिससे आप जानकारी प्राप्त करके अपना जो काम है उसके हिसाब से कर सकते हैं, अपना प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो मौसम पूर्वानुमान है ये हर एक क्षेत्र में अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल रखता है। एक आम जन से लेके किसान से लेके विमानपतन से लेके रेलवे से लेके टूरिज्म से लेके माउंटेनियरिंग से लेके पिलग्रिमेज से लेके जो भी आयाम हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मौसम का एक रोल है। हमारा क्या क्लाइमेट होगा, क्या पहनावा होगा, क्या खान पीन होगा, कैसा मौसम रहता है, तो वो सब सारा कुछ जो है उससे हमारा क्लाइमेट बनता है और उससे हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है वो भी प्रभावित होता है।
2: तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हम या तो काम पर निकल रहे हैं, किसान अपने खेत में जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि अगर आप ट्रैवल में हैं या टूरिज्म, कहीं आप टूर कर रहे हैं, तो

0: तो हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है कि भाई मौसम कैसा है उसके अनुसार अपनी प्लानिंग करें। आम लोगों के लिए ये बात तो ज़रूरी है, लेकिन आम लोग ये नहीं जानते कि यह किस सिद्धांत पर इस पूर्वानुमान किया जाता है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। कैसे आप लोग ये तय करते हैं कि आने वाला जो समय है या आने वाले घंटे में बारिश हो सकती है या मौसम में क्या बदलाव आ सकता है?
1: तो देखिए, एक इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रिंसिपल है, जब तक आप किसी चीज़ को नापते नहीं आप उसके बारे में जानते नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बुखार है तो आप थर्मामीटर से नापेंगे, आपकी हाइट क्या है तो आप उसको लेंथ में मेजर करेंगे, टेप से मेजर करेंगे कि कितना लेंथ है। उसी तरीके से अगर मौसम के बारे में जानना है, उसका क्या आगे में हो सकता है, तो उसके लिए अभी का मौसम जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो मौसम पूर्वानुमान एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अभी की क्या स्थिति है उसके आधार पर हम लोग आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने की संभावना है। तो मौसमी पैरामीटर जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में ही आप ह्यूमिडिटी भी जोड़ लीजिए, और साथ में रेनफॉल, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, क्लाउड कवर, तो ये सब जो बेसिक पैरामीटर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, उसके आधार पर ही आप आने वाले समय में बता पाएंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स पूरे विश्व भर में कलेक्ट होते हैं, अगर भारत की बात करें तो पूरे भारत भर में कलेक्ट होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा, आप जो ज़मीन पे नाप रहे हैं उसको सतही हम लोग वेधशाला कहते हैं, जिसमें इंसान जाके ये सारे पैरामीटर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन आदमी नापता है। तो सतही वेधशाला हो गया, मैनुअल ऑब्जर्वेटरी हो गया। इसी में अगर ये ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा खुद ही नापा जा रहा है और डेटा भेजा जा रहा है, तो ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम हो गया, वेदर स्टेशन हो गया। तो जो मौसम बनता है वो लैंड, ओशन, एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन से बनता है। मतलब आप सीधे भाषा में समझिए कि जमीन, आसमान और आसपास में जो आपका कोई समुंदर है उससे कितनी दूरी है, क्या है, उस हिसाब से आपका जो मौसम है वो आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखते हैं जो कोस्टल इलाका होता है वो मॉडरेट वेदर सिस्टम रहता है, मतलब वहाँ जो टेम्परेचर है पूरे साल भर में बहुत ज़्यादा उसमें भिन्नता नहीं देखने को मिलती है। वही आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में टेम्परेचर गर्मी में 50 से ज़्यादा हो जाता है और ठंडों में नेगेटिव भी चला जाता है, तो कितनी भिन्नता है। जबकि आप ये कोस्टल सिटीज़ में देखेंगे तो ये भिन्नता नहीं देखने को मिलती है। तो आपको सब जगह नापना है, ज़मीन में हमने नाप लिया सतही वेधशाला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से, आसमान में नापने के लिए हम लोग एक हाइड्रोजन बैलून छोड़ते हैं जिसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं और ये जीपीएस के थ्रू हम लोग ट्रैक करते हैं। साथ में ये जो सेंसर का डेटा है हमारे अर्थ स्टेशन पे जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे एंटीना है, वहाँ पे वो डेटा पर सेकंड पे आता रहता है, तो कितना ऊपर जा रहा है और हर एक प्रेशर लेवल पे क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या विंड स्पीड है, क्या विंड डायरेक्शन है, ये सारे पैरामीटर्स आते हैं। और इनके आधार पे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर भी हम लोग निकाल पाते हैं, जिससे ये संभावना बताई जाती है कि आज गर्जन वज्रपात की क्या स्थिति बन रही है, ओलावृष्टि की क्या स्थिति बन रही है। और ये डेटा आपको एविएशन में भी यूज में आता है। साथ में रिमोट सेंसिंग में हम लोग रडार और सेटेलाइट का यूज कर रहे हैं, तो बैठे बैठे रडार से एक स्टेशन से आप अगर एस बैंड रडार है तो 250 किलोमीटर, सी बैंड रडार है तो 150 किलोमीटर का एरिया को आप नाप सकते हैं। नापने का अर्थ हो गया कि जो बादल जो बन रहे हैं उन बादलों में कितना पानी है, कितना उसमें बर्फ के कण है, उस बादल की मूवमेंट किस दिशा में हो रही है, उसमें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग करने का कितना पोटेंशियल है, तो इस हिसाब से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से 24 घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग सेटेलाइट यूज करते हैं, जिसमें जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होता है वो 24/7 आपको अर्थ को देख रहा होता है, खासकर भारत को देख रहा होता है जो इनसैट 3D ने लॉन्च किए हैं। और फिर अगर हम लोग बात करें तो पोलर ऑर्बिटिंग सेटेलाइट भी होता है, तो इन सेटेलाइट की मदद से भी जैसे भारत को हम लोग स्कैन कर रहे होते हैं और अलग अलग चैनल होते हैं, इंफ्रारेड चैनल 24 घंटे अवेलेबल होता है और विजिबल चैनल दिन में अवेलेबल होता है, वाटर वेपर चैनल 24 घंटे अवेलेबल होता है। तो इन सब के मदद से जो डेटा हमको प्राप्त हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा। अब ये डेटा का क्या करेंगे, तो ये डेटा को हम लोग सुपर कंप्यूटर्स में डालते हैं। सुपर कंप्यूटर्स में डालते हैं इसलिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सघन डेटा होता है और ये पूरे इंडिया का डेटा, अगर सिर्फ इंडिया का फोरकास्ट कर रहे हैं, रीजन का फोरकास्ट कर रहे हैं तो रीजनल डेटा हो गया, इसे वर्ल्ड का फोरकास्ट कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड का डेटा हो गया, तो डेटा की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और आप जानते हैं सेटेलाइट रडार का इमेज का भी साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो ये डेटा काफ़ी सघन्य होता है और इस डेटा को हम लोग सुपर कंप्यूटर में डालते हैं। सुपर कंप्यूटर में फिजिक्स के प्रिंसिपल लगे होते हैं, जैसे कि एयर पार्सल है इसका मूवमेंट किस हिसाब से होगा, कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर कैसे होगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे होगा, तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ये जो इक्वेशंस बनते हैं, जो फिजिकल और मैथमेटिकल इक्वेशन आप जिसको समझते हैं, तो उन इक्वेशंस में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स

0: समझ के ये डेटा इंटर की जाती है। और आप एक इजी भाषा में समझिए कि जैसे कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं कि आप आगे के समय के लिए बता सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग इसको आगे के समय के लिए कि अगले 12 घंटे में क्या होगा, अगले 24 घंटे में क्या होगा, अगले 36 घंटे में क्या होगा, 10 दिन में क्या होगा, तो अलग अलग रेंज का अलग अलग पूर्वानुमान होता है। शॉर्ट रेंज जो पूर्वानुमान है 3 दिन के लिए वैलिड होता है, मीडियम रेंज पूर्वानुमान है 10 दिन के लिए वैलिड होता है, एक्सटेंडेड रेंज 1 महीने के लिए होता है, सीजनल होता है 1 सीजन से लेकर साल भर तक का ये पूर्वानुमान देता है। तो ये जो मॉडल्स है जो हम लोग को ये जो आउटपुट निकला है ये मॉडल गाइडेंस इसको कहते हैं। तो जैसे ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम हो गया एक मॉडल है, ECMWF एक मॉडल है, तो इस टाइप के जो मॉडल्स होते हैं इसी तरह से आपने भारत फोरकास्टिंग सिस्टम अभी नाम सुना होगा, तो ये भारत का अपना मॉडल है जो कि 6 किलोमीटर के एरिया का मतलब 6x6 36 किलोमीटर का फोरकास्ट देता है। अभी तक जितने भी पुराने मॉडल्स थे वो 12x12 144 किलोमीटर या 9x9 81 किलोमीटर के देते थे, अभी ये भारत फोरकास्टिंग सिस्टम इंडिया का अपना है जो 6x6 मतलब 36 किलोमीटर का अगर स्क्वायर एरिया बोले तो उसके लिए फोरकास्ट वैलिड रहता है, तो इस हिसाब से पूर्वानुमान किया जाता है।
1: बहुत ही विस्तार में आपने बताया कि किस तरह से इस पूरे जो क्रम है, ये जो पूर्वानुमान का पूरा जो विज्ञान है वो किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है और कितने सारे डेटास की जरूरत होती है उसको एनालाइज किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, फिर वैज्ञानिकों के द्वारा उसको देखा जाता है कि ये कितना मतलब सटीक है। इसकी सटीकता की अगर बात करें, विश्वसनीयता की बात करें, क्योंकि लोगों में एक आम धारणा है कि भाई मौसम है इसके बदलने को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता कि मौसम क्या बदलेगा, कब कैसा करवट लेगा। तो अब जो ये पूरा विज्ञान है मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित, इसको आप कितना सटीक मानते हैं, इसकी विश्वसनीयता को कितना सही मानते हैं?
0: देखिए मीडियम रेंज फोरकास्ट जो 7 दिनों का होता है वो काफी सटीक होता है, उसमें से भी अगर हम लोग बोले तो 5 दिन का बहुत सटीक होता है, जितना हम लोग कम आते हैं ना 3 दिन का और सटीक होता है। तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग का जो 3 दिन का फोरकास्ट है, डे 1 का फोरकास्ट है वो 95% के आसपास में सटीक होता है, डे 2 का फोरकास्ट है वो थोड़ा सा कम होते हुए 85-90 होता है, डे 3 में आपको 80% के अप्रोक्स में सटीक होता है। जैसे हम लोग दूरी बढ़ाते जाते हैं ना, क्योंकि आज के दिन में मौसम पूर्वानुमान सबसे चुनौतीपूर्ण विषय हो गया है, क्योंकि वेदर इतना डायनेमिक हो गया, क्लाइमेट चेंज के कारण वेदर इतना डायनेमिक हो गया है कि ऐसा नहीं हो सकता है ना कि हम लोगों ने आज फोरकास्ट दिया है और अगला फोरकास्ट 7 दिन बाद दें। एक ही दिन में हो सकता है कि मौसम बदलाव के कारण हमें शाम को अपडेशन करना पड़ता है कि हाँ हमने जो दिया था इस आधार पर दिया था बट अभी बदलाव हो गया तो हम लोगों को भी चेंज करना पड़ता है। तो थोड़ा डायनेमिक तो एकदम हो गया है क्लाइमेट चेंज के कारण, इसमें चुनौतियां बहुत ज्यादा हो गई। आप इसीलिए देखिए कि एक तो डेटा का डेंसिटी इतना ज्यादा है और जितने सब जो अच्छे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो इसमें लगाए जाते हैं और फिजिक्स और इम्प्रूव हो रही है, डेटा का डेंसिटी मतलब ऑब्जर्वेशन आपको और डेंस हो रहा है, बट चुनौतियां अभी भी इसलिए है कि क्लाइमेट चेंज बहुत फास्ट है।
1: मतलब अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो मौसम का बदलना वो जितने डेटास होते हैं सिर्फ उन्हीं पर निर्भर नहीं होता है, ये जो क्लाइमेट चेंज वाला एक फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है विघ्न डाले या इसमें एक जो भी परिवर्तन आता है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंजेस के फिर बहुत सारा पैरामीटर्स है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि आप लोगों के सामने चुनौतियां भी बहुत मतलब अधिक है।
0: आप इसी हिसाब से समझिए कि देखिए क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं हैं हाल के सालों में बढ़ी हैं, तो ये बहुत लोकलाइज्ड फेनोमेना है और ये फेनोमेना को पकड़ने के लिए आपको बहुत डेंस नेटवर्क चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपको रडार का नेटवर्क पूरे भारत में चाहिए कि कोई भी कोना अछूता ना रहे, और तीसरा कि अगर आपने पूर्वानुमान भी कर लिया है तो उसका डिसिमिनेशन कितना फास्ट हो पाए, पब्लिक तक वो जानकारी कितना एडमिनिस्ट्रेशन के पास कितना जल्दी पहुंच पाए, क्योंकि थंडरस्टॉर्म या क्लाउड बर्स्ट के जो इवेंट्स होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, कभी कभी आधा घंटा से 1 घंटा कहीं समय होता है, तो कितना जल्दी आप तैयार हैं कि उस चीज़ों से निपट पाए वो भी एक चुनौती बनी हुई रहती है। और साथ में हम लोग देखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि एक ही राज्य में आप देखिएगा कि पहले बिहार झारखंड एक ही था, झारखंड में इतना अच्छा बारिश हो रहा था, बिहार में बारिश नहीं हो रहा, तो आप देखिए ये चुनौती इस हिसाब से हो गया है कि कभी कभार हम लोग थंडरस्टॉर्म पीरियड में देखते हैं या मानसून पीरियड में भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जिले के एक हिस्से में अच्छी बारिश हुई दूसरे हिस्से में बारिश नहीं हुई, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब देखिए बादल तो गुजर गुजर रहा है, अब वो बादल यहाँ बारिश तो दिया है बट आगे बारिश नहीं दे रहा है, उसके और आगे दे रहा है, तो ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। रडार से आप देख सकते हैं कि बादल में कितने बारिश होने की प्रॉबिलिटी है, बट वो बारिश यहीं पर होगा कि 10 किलोमीटर बाद होगा कि 50 किलोमीटर बाद होगा, ये अभी भी चुनौती का विषय।

0: बना हुआ है।
1: जो मौसम पूर्वानुमान का क्षेत्र है इसमें काफी चुनौतियां भी हैं और आपके माध्यम से हमने श्रोताओं को प्रयास किया है ये बताने का कि मौसम पूर्वानुमान का महत्व क्या है या किस तरह से आम जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष संवाद में हमने जाना कि मौसम पूर्वानुमान केवल बादलों को देख लेने या अनुमान लगा लेने भर की बात नहीं बल्कि इसके पीछे है उन्नत तकनीक, वैज्ञानिक गणनाएं और निरंतर शोध। मौसम वैज्ञानिकों की जो मेहनत है और चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, और अभिषेक जी आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक ये बात पहुंची तो हमारे स्टूडियो में आकर काफी समय दिया इसके लिए और मैं समझता हूँ हमारे श्रोता काफी लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे यहाँ आए।
2: तो अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता में मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और चुनौतियां क्या हैं इसके बारे में, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद और उनसे बात कर रहे थे प्रभु शरण। तो इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, और आज हम जिस महान वैज्ञानिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर पार्क्स। आज हम आपको विज्ञान और आविष्कार की दुनिया के एक ऐसे महान व्यक्तित्व से परिचित करा रहे हैं जिनके एक महत्वपूर्ण आविष्कार ने आधुनिक औद्योगिक युग की नींव रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महान वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर पार्क्स। इन्हें दुनिया का पहला व्यवहारिक कृत्रिम प्लास्टिक विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। अलेक्जेंडर पार्क्स का जन्म 29 दिसंबर सन 1813 को इंग्लैंड के औद्योगिक नगर बर्मिंघम में हुआ। उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था और नए नए आविष्कार दुनिया को बदल रहे थे। बचपन से ही पार्क्स की रुचि विज्ञान, धातुओं और रसायनों में थी। इन्होंने पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त किया। युवावस्था में इन्होंने धातु उद्योग से जुड़े कार्यों में भाग लिया और यहीं से इनकी वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ। अलेक्जेंडर पार्क्स एक जिज्ञासु और प्रयोगशील व्यक्ति थे। हमेशा नई चीजों की खोज और पुराने तरीकों को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे रहते थे। इन्होंने धातुओं को अधिक मजबूत और उपयोगी बनाने के लिए कई प्रयोग किए। विशेष रूप से इलेक्ट्रो प्लेटिंग तकनीक के विकास में इनका

राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पार्क्स ने अपने इस नए पदार्थ को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लोगों ने पहली बार देखा कि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हुए बिना भी उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती है। पार्किंसन के कंघियां, चाकू के हैंडल, बटन, सजावटी वस्तुएं और अन्य दैनिक उपयोग की कई सारी चीजें बनाई जा रही थी। हालांकि ये आविष्कार वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाद में विकसित होने वाले सेलुलॉइड और अन्य आधुनिक प्लास्टिक इसी विचार से प्रेरित माने जाते हैं। इनके वैज्ञानिक सोच का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाना और उद्योगों को अधिक प्रभावी बनाना। ये हमेशा मानते थे कि विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य समाज की प्रगति और मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यही कारण है कि इन्होंने लगातार प्रयोग किए और नए समाधान खोजने का प्रयास किया। 29 जून 1890 को अलेक्जेंडर पार्क्स का निधन हो गया, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्य आज भी विज्ञान और उद्योग जगत में याद किए जाते हैं। इन्हें आधुनिक प्लास्टिक का उद्योग अग्रदूत माना जाता है और इनका नाम विज्ञान के इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। अलेक्जेंडर पार्क्स का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि नई सोच, निरंतर प्रयास और प्रयोग करने का साहस हमें महान उपलब्धियों तक पहुंचा सकता है। तो हमने आपको बताया कि अलेक्जेंडर पार्क्स कौन थे और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया था इसके बारे में। अब बारी है खोज और आविष्कार की, और खोज और आविष्कार में हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं स्टेनलेस स्टील का आविष्कार कैसे हुआ इसके बारे में। स्टेनलेस स्टील, जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन से लेकर बड़े बड़े उद्योगों, अस्पतालों, रसोई घरों, भवनों और वैज्ञानिक उपकरणों तक में किया जाता है, ये धातु है स्टेनलेस स्टील। स्टील मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण धातु मानी जाती है, लेकिन साधारण स्टील की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस समय उस पर आसानी से जंग लग जाती थी। जंग लगने से धातु कमजोर हो जाती थी और उसकी उपयोगिता भी कम हो जाती। वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसी धातु बनाने का प्रयास कर रहे थे जो मजबूत भी हो और जंग से सुरक्षित भी रहे। स्टेनलेस स्टील के आविष्कार का श्रेय मुख्य रूप से ब्रिटिश धातु वैज्ञानिक हैरी ब्रेयरले को दिया जाता है। इनका जन्म 1871 में इंग्लैंड के सेफील्ड नगर में हुआ, जो उस समय इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सन 1913 में हैरी ब्रेयरली ने एक विशेष परियोजना पर काम शुरू किया। उस समय ब्रिटिश सेना को बंदूकों की नाल में होने वाले घिसाव और जंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। सेना चाहती थी कि ऐसी धातु विकसित की जाए जो अधिक समय तक टिकाऊ रहे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए ब्रेयरली ने स्टील में विभिन्न तत्वों को मिलाकर प्रयोग करना शुरू किया। पाया कि जब स्टील में लगभग 12-13% क्रोमियम मिलाया जाता है तो धातु की सतह पर एक बहुत पतली और अदृश्य सुरक्षात्मक परत बन जाती है। ये परत ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वतः बनती रहती है और धातु को जंग लगने से बचाती है। एक दिन इन्होंने अपने प्रयोगों में तैयार किए गए स्टील के कुछ नमूनों को प्रयोगशाला के एक कोने में छोड़ दिया। कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि अन्य नमूनों पर जंग लग चुकी है, लेकिन जिन नमूनों में क्रोमियम की मात्रा अधिक थी वो बहुत साफ और चमकदार बने हुए थे। यही आगे चलकर स्टेनलेस स्टील के आविष्कार का आधार बना। इस नई धातु को प्रारंभ में स्टेनलेस स्टील अर्थात जंग रहित स्टील कहा गया, लेकिन बाद में इसका नाम स्टेनलेस स्टील रख दिया गया। ये खोज धातु विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार केवल एक नई धातु की खोज नहीं थी, बल्कि ये उद्योग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांति साबित हुई। इसने रखरखाव की लागत कम की, उपकरणों की आयु बढ़ाई और अनेक क्षेत्रों में कार्यक्षमता को बेहतर बनाने का काम किया। तो हमने आपको बता दिया कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार कैसे हुआ और इसकी खोज दुनिया को कैसे बदली इसके बारे में, और आज हमने ढेर सारी जानकारी आपके साथ साझा कर ली, ढेर सारी बातचीत आपसे हो गई। और अब हमारे स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जिस भी मुकाम पर पहुंचने की कोशिश में हैं, आप लगातार मेहनत करते रहें ईमानदारी से, और मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगी, आप एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे विज्ञान जगत कार्यक्रम। इसमें चर्चा थी गर्मी में विद्युत उपकरणों का सावधानी से उपयोग करें। भेंटवार्ता आप सुन रहे थे मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और चुनौतियां। भेंटवार्ताकार थे डॉक्टर अभिषेक आनंद, इनसे बातचीत कर रहे थे प्रभु शरण। और जीवन परिचय में आज थे अलेक्जेंडर पार्क्स। और आविष्कार में आज जानकारी थी स्टेनलेस स्टील के बारे में। वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार का था, प्रस्तुति प्रभु शरण की थी। और इसी के साथ आज का विज्ञान जगत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे जोहार रांची थोड़ी ही देर में।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार रांची। सुनने वाले सभी दोस्तों को रेणु
1: और उषा जायसवाल का
0: नमस्कार
1: जोहार।
0: तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सुविचार से। संघर्ष आपको कमजोर नहीं बल्कि बेहतर बनाता है। सच्ची ताकत हार न मानने में नहीं बल्कि गिरकर फिर उठने की क्षमता में होती है। जीवन में चुनौतियां और कठिनाइयां हमेशा आएंगी, लेकिन जो इससे सीखता है वही मजबूत बनता है।
1: और जानते हैं, संघर्ष आपको कमजोर नहीं बनाता, आपकी समझ, धैर्य और साहस को गहरा करता है। दूसरों की राय से भयभीत न हो, अपनी सीमाओं को पहचानें और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करें। यानी कि संघर्ष जितना कठिन है, जीत उतनी ही भव्य होगी। इन बातों पर हम अगर अमल करते हैं तो जीवन को सुखमय और आनंदमय हम जरूर बना लेंगे।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
4: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: और रेनू जी, जब हम बातें करेंगे ना अपने कार्यक्रम में, तो सबसे पहले हम मौसम को लेना चाहते हैं, क्योंकि मौसम इतना बदलता है, पलक झपकते बादल आ जाते हैं, छा जाते हैं, रिमझिम बारिश भी शुरू हो जाती है या फिर बूंदाबांदी होती है, और तुरंत इतनी कड़ी धूप कि बस लगता है छाता खोले ही रहो, या तो बारिश के लिए या फिर धूप के लिए,
6: है ना। आंख भी चौली, मौसम जो है ना अभी आंख भी चौली कर रहा है, पूरी तरह से भी मानसून आया नहीं है, जहां तहां रुक भी गया है।
5: लेकिन गर्मी जो है ना, इसका भी आनंद अपनी जगह पर है, और बारिश आ जाएगी ना फिर लगेगा कि पता नहीं कब बारिश खत्म होगी। और जब बारिश की बातें हो रही है, तो झारखंड में मौसम रुक रुक कर अपना मिजाज बदल रहा है। कल दोपहर बाद रांची समेत कई हिस्सों में खूब बारिश हुई है ना, और मौसम भी सुहावना हो गया। और लेकिन फिर ऐसा कहा जा रहा है कि आज यानी गुरुवार से 4 दिनों तक उमस भरी गर्मी पड़ने का पूर्वानुमान है। विशेषकर पलामू में अगले 3 दिन तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। तो गर्मी जो बढ़ेगी ना, तो समझ जाइए कि आम जरूर पकेंगे। कुछ अच्छी अच्छी बातें भी होती है ना मौसम जब बदलते
6: हैं। और जो मौसम अच्छे जो बीत रहे हैं, जिसमें गिरावट कल बारिश हुई, तो जो गिरावट आई है, मौसम अच्छा हुआ, तो हम उसको लेके चले। सब तरह का मौसम का मिजाज के साथ,
5: मौसम का मिजाज तो चलता ही रहता है। और साथ साथ जब भगवान ने ये 4 मौसम जो बनाए हैं ना, तो सबकी अपनी खासियत भी है, कुछ उसके नुकसान भी है, तो लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है।

0: रेणु जी, जब बातें हम करते हैं ना बहुत सारी जानकारी की, क्योंकि ये कार्यक्रम है जानकारियों भरा, तो चलिए आज हम बताते हैं आज कौन सा खास दिवस है। आज यानी 25 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस। इसकी शुरुआत 2010 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था में नाविकों के अद्वितीय योगदान को मान्यता देना है।
1: और 1975 में इंदिरा गांधी की सिफारिश पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश की आपातकालीन की घोषणा की थी। इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और विपक्षी नेताओं ने जेल में डाल दिया गया था। भारत सरकार इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है।
0: और जब बातें करते हैं और भी जानकारी की, तो एक जब हम लोगों को जागरूक करते हैं, जैसे बहुत सारी जानकारी मिलती है ना, तो उससे हमें जागरूकता ही मिलती है।
1: हाँ, एक तो और आज के दिन का ऐतिहासिक घटना है।
0: हाँ,
1: कि 1983 ईस्वी में कपिल देव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज को हराकर अपना पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था। ये ऐतिहासिक जीत लॉर्ड्स के मैदान पर दर्ज हुई थी।
0: और 1999 में आज के दिन कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण चोटी जुबलिंग पर कब्जा कर लिया था। कारगिल युद्ध 1999 भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया एक ऐतिहासिक और दुर्गम युद्ध था।
1: ये संघर्ष मई से जुलाई 1999 तक कश्मीर के कारगिल जिले में नियंत्रण रेखा एलओसी पर हुआ, जहां भारतीय सैनिकों ने विपरीत परिस्थितियों में अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तानियों को खदेड़कर चोटियों पर पुनः तिरंगा फहराया।
0: तो हम आज के दिन को मनाते हैं एक प्यारे से देशभक्ति गीत के साथ।

0: रेणु जी, जब हम बातें कर रहे थे देशभक्ति की, तो देशभक्ति का जब नाम आता है ना, तो बस पूरा शरीर के रोए हैं ना, वो खड़े हो जाते हैं। अपने देश के लिए मर मिटने को हर किसी की तमन्ना होती है, लेकिन हमारी किस्मत कहाँ की, हम फौज में भर्ती हों और अपने देश के लिए। लेकिन एक कर्तव्य ज़रूर निभा सकते हैं कि हमारे जो फौजी भाई हैं, जब भी हमें हमारा उनसे सामना हो, तो उनका हम सम्मान ज़रूर करें, उनके परिवार वालों का सम्मान ज़रूर करें, क्योंकि वो हमारे बीच नहीं रहे जो शहीद हो गए, लेकिन उनके परिवार को अगर हम सम्मान देते हैं तो उनको हमारी दिली सम्मान पहुंच जाएगी, और यही हमारा कर्तव्य भी होता है। और चलिए हम आगे भी बढ़ते हैं इस कार्यक्रम में, और ये बताते अपने श्रोताओं को कि हर साल 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस यानी सफ़ेद दाग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सफ़ेद दाग के बारे में जागरूकता फैलाना, गलत धारणाओं को दूर करना और सामाजिक भेदभाव को ख़त्म करना है। और इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें भी हैं कि इसके कारण क्या है, ये भी बता दीजिए।
1: हाँ, ये त्वचा में रंग बनाने वाली कोशिकाओं के नष्ट होने से होती है, जिसके कारण त्वचा पर सफ़ेद धब्बे होने लगते हैं। और लोगों का मानना है कि ये छुआछूत की बीमारी है, ऐसा नहीं है। डॉक्टरों लोगों का भी कहना है कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं है।
0: एक साथ बैठने, छूने, खाने से ये फैलती नहीं है, इसलिए उनका साथ दीजिए, उनके दिल की भावनाओं

0: का सम्मान कीजिए और उन्हें वो सम्मान मिलना चाहिए जो एक नॉर्मल इंसान को मिलता है, क्योंकि उनके मन में बहुत तरह की परेशानी हो जाती है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ,
1: हाँ,
0: तो
1: उन्हें
0: उनको
1: सपोर्ट करना
0: सपोर्ट
1: चाहिए।
0: करना चाहिए मानसिक रूप से ताकि उन्हें इससे कोई दुख ना पहुँचे। और कहते हैं कि सही समय पर इलाज और डॉक्टर की सलाह से इस बीमारी को फैलने से
1: रोका
0: रोका
1: जा
0: जा सकता
1: सकता है।
0: है, त्वचा का रंग वापस लाया जा सकता है,
1: हाँ,
0: इसलिए इसके उपाय भी हैं। और अगर आप मतलब डीपली जाएं तो इसका कुछ कुछ उपाय आयुर्वेद में भी मिल जाएगा ताकि इससे परेशानी नहीं होगी, और हो भी गई है तो आप इसे मान लें कि मेलेनोसाइट एक रसायन है वो लीवर में, उसकी कमी से
1: ये
0: स्किन
1: स्किन
0: का
1: बदल
0: रंग है
1: जाता
0: सो
1: है,
0: उसका
1: बदल
0: बदलने
1: के
0: लगता
1: जाता
0: है,
1: है।
0: इसलिए ये ज़्यादा
1: तो
0: परेशानी की बात नहीं
1: और
0: है।
1: हाँ, उषा
0: और
1: जी, हम
0: अब
1: अपने
0: आगे
1: श्रोताओं
0: बढ़ते
1: को,
0: हैं।
1: श्रोताओं को अपना बता दें कि आज का ये कार्यक्रम 11 बजे तक आधे घंटे का ही है, उसी में हम लोग को बहुत सारी बातें करनी है
0: हाँ, तो बस
1: तो
0: जल्दी जल्दी में कुछ और बातें हम कर देते हैं। और जो आपने कहा ना कि 11 बजे, हम 11 बजे तक ही है, तो हम ये बता दें अपने श्रोताओं को कि 11 बजे इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपको मिलवाएंगे IGSTF श्री अनूप बिरथरे जी से, और इनसे बातें करेंगे सिंधु मिश्रा जी, है ना।
1: हाँ,
0: तो ये कार्यक्रम आप 11 बजे
1: अब
0: से जरूर सुनिएगा, लेकिन पहले थोड़ी सी
1: इतिहास के
0: जानकारी
1: पन्ने पलटते
0: और।
1: हैं और जन्म के और निधन के बारे में जानते हैं, किनका हुआ।
0: तो आज के दिन जन्म हुआ भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का, 1900 ईस्वी में हुआ था। 1903 में चंद्रशेखर पांडे का जन्म हुआ था, जो प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। सुचिता कृपलानी का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था, जो महिला भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। भारत के 8वें प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्म भी 1931 में आज ही के दिन हुआ था। और 1924 में बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक मदन मोहन का जन्म हुआ था।
1: मदन मोहन 1950, 1960, 1970 के दशक के भारतीय संगीत निर्देशक थे। उन्हें हिंदी फिल्म उद्योग के सबसे मधुर और कुशल संगीत निर्देशकों में से एक माना जाता है। उन्हें पुरस्कारों से, कई पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया।
0: और 1935 में उदय चंद का जन्म हुआ, जो भारतीय पहलवान और कुश्ती कोच थे। और 1957 में गोपाल प्रसाद दुबे का जन्म हुआ, जो सरायकेला छऊ नृत्य के अग्रणी नर्तक हैं। 1975 में मनोज कुमार पांडे का जन्म हुआ, जो परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय
1: सैनिक
0: सैनिक
1: थे।
0: हैं।
1: और सतीश शाह का जन्म 1961 ईस्वी में हुआ। ये भारत के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हैं। और 2019 में मोहन राणा डे का निधन हुआ, जो गोवा के स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानी थे। हाँ, एक और बात याद है उषा जी, कि 1986 इसमें सुधा सिंह का जन्म हुआ, जो भारत की प्रसिद्ध महिला एथलीटों में से एक हैं। सुधा सिंह भारत की एक खिलाड़ी हैं, उन्होंने अनेक पदक जीते हैं। उन्हें 2012 में अर्जुन पुरस्कार तथा 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ऐसे
0: तो
1: भारत
0: चलिए
1: के
0: इनको उत्साहित करने के लिए एक प्यारा सा गीत आप अपने श्रोताओं को
1: ये है
0: सुनाइए।
1: हमारी भारत की बेटी।
0: बिल्कुल।

0: और अब इसी गीत के साथ
1: कार्यक्रम जोहार चेक्स में
0: हाँ यही पर संपन्न होता है। दीजिए इजाजत,
1: नमस्कार जोहार
0: जायसवाल को और रेणु को,
1: नमस्कार
0: नमस्कार जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जोहार रांची, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम इनसे मिलिए। तो आईजी एचडीएफ श्री अनूप बिरथरे से सिंधु मिश्रा की बातचीत सुनते हैं।

0: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हमारे साथ हैं आईजी एसटीएफ श्री अनूप बिरथरे सर। सर का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार सर
1: जी। नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए, और आकाशवाणी रांची के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार, जोहार।
0: कार्यक्रम में हम आपसे शुरुआत में आपके बचपन, आपके पारिवारिक परिवेश के बारे में जानना चाहेंगे।
1: जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बाई शहर में हुआ है
0: जी।
1: और जो मेरे फादर हैं वो एक जो है बिजनेस करते हैं, वहाँ पर वहीं पर क्रिया करते थे, और उसके बाद जो प्रारंभिक मेरी जो एजुकेशन है वो उत्तर प्रदेश में ही एक सरकारी स्कूल में हुई है, और उसके बाद मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। 10+2 तक मैं उत्तर प्रदेश के उसी छोटे कस्बे में था। वहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन की क्वालिटी नहीं थी, बट उस समय में जब हम लोग स्कूलिंग के डेज़ में थे तो एक अच्छी बात ये थी कि सरकारी स्कूल में भी शिक्षक बड़े अच्छे होते थे और बड़े जो है इंस्पायर्ड होते थे, और बहुत ही डेडिकेटेड टीचर्स ने हम लोगों को पढ़ाया, तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की। और उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी और हिस्ट्री में, और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में मैंने एमए किया और एमफिल किया हिंदी साहित्य से। तो बचपन उत्तर प्रदेश के एक छोटे कस्बे में बीता, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा सुविधाएं वो नहीं थी, बट उसने हम लोगों को सिखाया कि कैसे कम संसाधनों में रहना है, कैसे जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हम लोग जो है मुझे वहीं से मिली।
0: सर, आपके व्यक्तित्व निर्माण में मैं जानना चाहूँगी कि आपके परिवार की क्या भूमिका रही?
1: इसमें देखिए कि निश्चित तौर पर जिस परिवार और समाज में आप रहते हैं वहाँ से आप चीज़ों को सीखते हैं। तो मेरी माता जी का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा, वो हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेट करती थी कि पढ़ाई करके ही कुछ हासिल कर पाएंगे। और जब हम लोग 10th या 12th के दौरान में थे या उसके पहले भी, तो उनका भी एक सेक्रीफाइस जैसा हर पेरेंट्स का होता है कि जब सुबह 4 बजे या 5 बजे हम लोग पढ़ने के लिए उठते थे, उस समय मॉर्निंग में, आजकल तो बच्चे लेट नाइट तक पढ़ते हैं, उस समय मॉर्निंग में पढ़ने का कल्चर था, तो मैंने देखा कि माता जी भी मेरी साथ में उठ जाती थी और साथ में उठ करके जो है थोड़ा सा बातें करना या लगातार कुछ अपने काम करते रहना, और हम लोग उस दौरान पढ़ते थे। इसके पीछे उनका प्रयोजन ये होता था कि अगर पेरेंट्स भी साथ में जागें तो बच्चे फिर मतलब थोड़ा मोटिवेटेड होते हैं और जो है दोबारा उनको नींद फिर ना आए, तो माता जी का योगदान रहा। फादर की जो डेथ है वो काफ़ी पहले हो गई थी, उनका स्वर्गवास उस समय हो गया था जब मैं 7वीं क्लास में था।
0: अच्छा।
1: तो फादर के ना रहने से निश्चित तौर पर दिक्कतें हुई, और उनका जो एक सपोर्ट होता है और एक जो एक फादर का एक जो गाइडेंस होता है उसका अभाव जरूर रहा, बट ये है कि परिवार में अन्य जो भाई बहन

0: उनके साथ मिलकर के हम लोगों ने किया, और फैमिली का और सोसाइटी का बहुत योगदान है, और उन्होंने हमेशा पढ़ने के लिए मोटिवेटेड किया, और जिस कारण से हम लोगों ने मेहनत करके और पढ़ाई अच्छे से की।
1: बचपन से ही हम एक सपना देखने लगते हैं कि बड़े होकर हम अमुक स्थान पर जाएंगे, या लक्ष्य का निर्धारण भी हम तकरीबन कर ही लेते हैं। तो आपका क्या बचपन से ही यही लक्ष्य था, आप पुलिस सेवा में ही जाना चाहते थे, या सपना पीछे रह गया और आप इस ओर आ गए?
0: इसमें देखिए कि अप टू ट्वेल्थ जो है 10+2 तक तो मैथमेटिक्स से मैंने पढ़ाई की, और इंजीनियरिंग करने का एक जो है ड्रीम था इंजीनियरिंग करने का, बट समहाउ उसमें मैं असफल रहा। तो ये एक श्रोताओं को बहुत इंपॉर्टेंट जानने वाली बात है कि 12वीं तक पढ़ाई आपने की और बट इंजीनियरिंग एग्ज़ाम में मेरा किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो या बहुत ही छोटा हो, वहाँ पर भी एडमिशन नहीं हुआ। तो ये एक मुझे झटके की तरह था, एक शौक की तरह था कि आप इंजीनियरिंग बनने का सोच रहे हैं, मैथमेटिक्स से ट्वेल्थ कर रहे हैं और आपका नहीं हो रहा है। बट उसके बाद जब मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया तो उसमें मैं पढ़ने के लिए गया, तो मैंने अपनी लाइन को चेंज किया। अप टू ट्वेल्थ तक मैंने मैथमेटिक्स से पढ़ाई की, फिर ग्रेजुएशन मैंने ह्यूमैनिटीज़ में किया, इकोनॉमिक्स हिस्ट्री वगैरह में। तो जब मैंने वो पढ़ाई की तो मैंने जाना कि मुझे अंदर से अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो ये सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, इकोनॉमी, फिलोसफी। तो ये बेसिकली है कि दो चीज़ें इसमें ज़रूर सीखने की हैं कि पहला तो असफलताओं से घबराना नहीं है। आजकल है बच्चे ट्वेल्थ के बाद इंजीनियरिंग में नहीं हुआ या मेडिकल में नहीं हुआ तो परेशान हो जाते हैं। इसमें देखिए कि वो ज़िंदगी का अंत नहीं है, बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो आपको बाद में ओपन होंगे, और आप पहले जानिए कि आपका क्या जो है फर्स्ट लव है, आपको क्या पसंद है। तो ये मुझे ट्वेल्थ के बाद लगा कि ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसमें मैं ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करूँगा। और उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी अच्छा किया और फिर बाद में और जगहों पर भी। तो और ऐसा नहीं था कि हम लोगों का कोई पुलिस में आने का ड्रीम था, बट ये जब ग्रेजुएशन हम लोग करने लगे, जब ग्रेजुएशन मैंने किया तो निश्चित तौर पर जो है सिविल सर्विसेज एक उद्देश्य बना कि सिविल सर्विसेज को निकालना है, और सिविल सर्विसेज में कोई भी सर्विस हो सकती है। फिर जब सिविल सर्विसेज का रिजल्ट आया बाद में पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो उसमें इंडियन पुलिस सर्विस मुझे मिली 2007 में। तो उसके बाद में हम लोगों ने अच्छे से उसका काम किया और मन लगा करके काम किया।
1: सर, छात्र जीवन का कुछ ऐसा भी अनुभव आपके साथ हुआ होगा जो आज भी आपको प्रेरणा देती होगी?
0: छात्र जीवन में बहुत सारे अनुभव हैं जो रहे हैं पॉजिटिव, और जो है बहुत सारे इंस्पिरेशंस हुए, फेल्योर्स भी मिली हैं, तो हर तरीके का। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहने के दौरान वहाँ जो कल्चर है, लाइब्रेरी में जाकर के पढ़ने का, डिबेट डिस्कशन का जो कल्चर है, तो वो चीज़ें जो है इंस्पायर करती हैं। और बहुत ही सस्ता एक शहर है इलाहाबाद, ऐसा शहर है जहाँ बड़े बड़े साहित्यकार रहे, महादेवी वर्मा जी, निराला जी, हरिवंश राय बच्चन, फिराक गोरखपुरी, तो वो इंस्पिरेशन एक रहती थी। और बुक्स पढ़ने का मुझे शौक था, तो वहाँ पर संसाधन कम थे, कम बुक हम लोग खरीद पाते थे, लेकिन हॉस्टल्स में रहने में एक दूसरे की बुक को शेयर करने की भी चीज़ें रहती थी, तो उस तरीके का एक पढ़ने लिखने का कल्चर था। उसके बाद जब हम लोग JNU में मैं गया तो वहाँ पर भी डिबेट डिस्कशन का एक कल्चर था। और ये सारी चीज़ें हैं जो एक मतलब कंबाइंड स्टडी है, वो हमेशा आपको इंस्पायर करती है। और जब आपके अच्छे नंबर्स आते हैं या कुछ अच्छा परफॉर्म आप करते हैं किसी भी चीज़ में, तो आपको तारीफ़ मिलती है, तो आप उससे भी इंस्पायर्ड होते हैं। तो बहुत सारी यादें हैं स्टूडेंट लाइफ की दोनों यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई जो आज भी जो है अच्छी लगती हैं उनको याद करने पर।
1: जब हम संघर्षरत होते हैं, यानी कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, तो हम अपने संघर्षशील जीवन से भी काफ़ी मजबूती पाते हैं, तो ऐसा कोई अनुभव आपके साथ हुआ हो?
0: जी, इसमें जो है जैसा मैंने बताया कि ट्वेल्थ में जो एक फेल्योर मिली जब इंजीनियरिंग में आप नहीं जा पाए, उसी तरीके से जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कुछ एग्ज़ाम्स दिए, तो शुरू में एक दो एग्ज़ाम्स में नहीं हुआ, सिलेक्शन जब नहीं हुआ, तो उसके बाद में आपको ख़राब लगता है, और जब आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन है और नहीं हो रहा है उसके बाद में, तो वो चीज़ें आपको निराश कहीं ना कहीं करती हैं। और उसके बाद एक जॉब जो मुझे मिली पहले, वो भी मैंने ज्वाइन की, वो मेरे लिए ड्रीम जॉब नहीं थी, लेकिन फिर भी उसको किया। तो वो एक स्ट्रगल है जो कंपटीशन के समय में आपके साथ आता ही है। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे UPSC के फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स भी पास किया, मेंस भी पास किया, और इंटरव्यू तक भी मैं पहुंचा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही अपने, लेकिन इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो वो एक बहुत लो मोमेंट था लाइफ में कि आप बहुत आगे जाने के बाद जब आप वापस जाते हैं, लेकिन उस समय भी आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, फिर उसके बाद अगेन पढ़ाई शुरू करते हैं तो एक टाइम आता है और उसके बाद ही आपको सक्सेस मिलती है। तो ऐसे मोमेंट्स आए हैं लाइफ में, बट उस दौरान आपका अपना जो विल पावर है, आपका जो आस्था है, चाहे वो किसी भी स्पिरिचुअल पावर के लिए रहे, किसी भी चीज़ों के लिए रहे, और फैमिली का सपोर्ट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और उसमें आप अच्छे से करते जाइए तो निश्चित तौर पर फाइनली सक्सेस मिलती ही।
1: सर, आज आप HDFIG के रूप में कार्यरत हैं और इस ओर आने का अनुभव भी आपका बहुत ही अच्छा रहा, और साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि इस पद पर रहते हुए आप कैसा अनुभव कर रहे हैं।
0: इसमें देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मुझे इंडियन पुलिस सर्विस में झारखंड काडर मिला, क्योंकि ऑल इंडिया सर्विस काडर बेस्ड होती है, जिस राज्य को आपको आवंटित किया जाता है वहाँ आप अधिकांश हिस्सा नौकरी का अपना करते हैं। तो झारखंड राज्य में आने के बाद में, चूँकि यहाँ जो खूबसूरत हमारा जो राज्य है प्रकृति से पूरी तरीके से हरा भरा और जंगल पहाड़ झरनों से भरा हुआ, और बहुत अच्छा मुझे यहाँ पर काम करने का मौका मिला विभिन्न पद में। और ख़ास तौर पर जब हम लोग यहाँ ज्वाइन किए तो 2007 बैच है मेरा, 2008 में हम लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में और झारखंड में आए, तो उस समय नक्सल समस्या अपने पीक पर थी
1: जी।
0: 2008 में बहुत ज़्यादा उग्रवाद की समस्या थी, और उस समस्या में ऐसी जगहों पर बहुत ही चुनौतीपूर्ण पोस्टिंग्स हुई। शुरुआत में जो पोस्टिंग्स हुई हैं, चाहे वो घाटशिला में मैंने काम किया, HDPO घाटशिला में, उस समय लालगढ़ आंदोलन बंगाल में चल रहा था, तो जमशेदपुर का जो ग्रामीण इलाका है घाटशिला और गुड़ाबंदा चाकुलिया, वो सब बंगाल में मिदनापुर और झाड़ग्राम के बॉर्डर में है, तो काफ़ी बड़ी समस्या वहाँ पर थी, बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती थी। तो उनसे भी आपको खुद ही सीखना है, क्योंकि आप एक अजीब सी बात होती है कि आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं और स्टूडेंट लाइफ के बाद एक ट्रेनिंग करके आप आ जाते हैं, और उसके बाद ये चैलेंजेस को आपको अपनी ही ट्रेनिंग से आपको सीखना होता है। तो उस नक्सल समस्या ने बहुत हम लोगों को सिखाया, बहुत मेहनत की विभिन्न जिलों में रहते हुए, तो उसने काफ़ी लर्निंग दी, और ये आपको एक दिखाया कि किस तरीके से घनघोर गरीबी का लोग सामना कर रहे हैं, इसके अलावा नक्सल समस्या का भी सामना कर रहे हैं। तो एक अच्छा लगता है कि आप उस समस्या के समाधान में एक हिस्से के रूप में आप रहे, और जो भी आपको करने का मौका दिया वो इस नौकरी नहीं दिया, और उसके बाद HDF में अभी रहते हुए भी हम लोग लगातार हैं, और HDF का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है झारखंड राज्य से नक्सल समस्या को ख़त्म करने में। जो HDF है, झारखंड की स्पेशल टास्क फोर्स, झारखंड जगुआर जिसका नाम है, ये एक स्पेशल एंटी नक्सल फोर्स है झारखंड राज्य की। तो इस फोर्स ने 2008 में अपने गठन के बाद अभी तक झारखंड राज्य में नक्सल उन्मूलन में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और हम लोग भी उसी माध्यम से जो भी कर सकते हैं कंट्रीब्यूट स्टेट के लिए वो कर रहे हैं।
1: इन जिम्मेवारियों को निभाते हुए कुछ जो आपको पल मिलते हैं रिलैक्स करने के लिए, उन राहत के पलों पर आप क्या करना ज़्यादा पसंद करते हैं?
0: मुझे बुक्स बहुत पढ़ना पसंद है शुरू से ही, और बुक्स मैं बहुत रेगुलर रीडर हूँ। जब बहुत बिजी रहता हूँ तब भी मैं कोशिश करता हूँ कि बुक्स पढ़ूँ। मेरी अपनी खुद की लाइब्रेरी भी है घर में, जिसमें लगभग 1500 से ज़्यादा बुक्स हैं, तो बुक पढ़ने का मुझे शौक़ है, वो मैं करता हूँ। इसके अलावा जो मूवीज़ देखने का भी शौक़ है, मूवीज़ और इन सब का जो है, थोड़ा बहुत म्यूज़िक सुनने का, ख़ास तौर पर जो लाइट क्लासिकल म्यूज़िक है, गज़ल कवाली वगैरह, तो उसको मुझे एक्चुअली उर्दू भी मैंने पढ़ी है अपने स्टूडेंट लाइफ में, तो मुझे जो है जो बड़े जो फ़नकार हैं उर्दू शायरी के, शायरों को पढ़ना अच्छा लगता है। जैसे इसके अलावा जो गज़ल गायक हैं, चाहे वो मेहंदी हसन साहब हों, गुलाम अली साहब हों, जगजीत सिंह या नुसरत फ़तेह अली साहब की जो कवालियाँ हैं, तो उनको सुनने का और जो है क्या नाम है उनका, और शायरी वगैरह को भी पढ़ने का शौक़ है, तो वो हम करते हैं। दूसरा स्पोर्ट्स और योगा
1: जी।
0: तो ये जो है मैं ज़रूर श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि एक मेरा भी एक कटु अनुभव रहा है जीवन में। स्टूडेंट लाइफ के दौरान बहुत अवेयर हम लोग नहीं थे स्वास्थ्य के प्रति, तो खराब हेल्थ के कुछ इश्यूज आए जब पढ़ने के दौरान हम लोगों को, तो उसने कहीं ना कहीं करियर में भी स्टूडेंट लाइफ में प्रभावित किया। हो सकता है कि जो सफलता आपको पहले मिलती वो बाद में मिली, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप शुरू से ही योगा प्राणायाम इस तरह की एक्टिविटीज़ अगर बच्चे करें तो, आउटडोर एक्टिविटीज़ वो बहुत ही ज़रूरी है आपके पढ़ाई लिखाई में भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए और बाद में भी। तो मैं योगा करता हूँ और योगासन मुझे अच्छा लगता है, प्राणायाम मुझे अच्छा लगता है, और इससे बहुत फ़ायदा है, और ये बहुत एक लाइफ एक बैलेंस है एक्चुअली। प्रोफेशनल लाइफ में सफल होना जितना ज़रूरी है उतना ही हेल्दी रहना भी ज़रूरी है। एक अनहेल्दी व्यक्ति अगर आप रहेंगे तो आप ना एक अच्छे स्टूडेंट बन पाएंगे ना एक अच्छी नौकरी कर पाएंगे, तो इसलिए एक बैलेंस बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल सही बात है। और शारीरिक और मानसिक तौर से अगर हम स्वस्थ होंगे तभी हम अपने कार्य को भी सफलतापूर्वक निभा पाएंगे। सर, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे।

0: कि जब योगा और प्राणायाम आप कर रहे हैं और मानसिक स्वास्थ्य आपका अच्छा है, तो आपने अभी अभी बताया कि गीत संगीत का भी शौक आपको है, तो मैं चाहूंगी कि आपकी पसंद का एक गीत हम यहाँ सुने, तो
1: ये
0: कौन सा गीत
1: मैं जो
0: आप
1: है
0: सुनना
1: वो
0: चाहेंगे?
1: मैं मेहदी हसन साहब की आवाज़ में एक गज़ल है, अहमद फराज साहब की लिखी हुई, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, वो गज़ल मुझे बहुत पसंद है, उसको सुना जा सकता है।
0: जी ज़रूर, तो आपकी पसंद का ये गीत हम यहाँ सुनते हैं।

0: क्या योगदान है और क्या किस तरह से वो आपको सामंजस्य बिठाकर काम के प्रति और परिवार के प्रति आगे बढ़ रहे हैं?
1: देखिए, फैमिली में तो मेरे फादर की का स्वर्गवास तभी हो गया था जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था। फिर
0: जी
1: माताजी का भी कुछ सालों पहले उनका स्वर्गवास हुआ है। तो एक भाई है मेरे और 2 सिस्टर्स हैं, वो अपना जो काम है बिजनेस वगैरह वो करते हैं। इसके अलावा फैमिली में जो है न्यूक्लियर फैमिली है मेरी। अभी यहाँ पर जो है मेरी वाइफ हैं वो बहुत अच्छी पेंटर हैं और बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर और पामिस्ट भी हैं वो। उन्होंने जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और जो न्यूमरोलॉजी और टैरो कार्ड रीडिंग वगैरह के कोर्स किए हुए हैं, तो उन्होंने काफ़ी एक्सपर्टीज़ उसमें हासिल कर रखी है। तो वो अपना प्रोफेशनल काम करती हैं। इसके अलावा 2 बेटे हैं मेरे, तो बड़ा वाला बेटा भी जस्ट 12th पास किया है और अब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए आगे बढ़ेगा। और जो छोटा वाला बेटा है वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो 9th क्लास में है और दोनों ही रांची में पढ़ते हैं। और फैमिली का देखिए बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता ही
0: बिल्कुल
1: है
0: बिल्कुल
1: आपके किसी भी तरह की सफलता के लिए। फैमिली तो बैकबोन है और ऐसे प्रॉब्लम्स के क्षण आपको आते ही हैं व्यक्तिगत लाइफ में भी प्रोफेशनल में भी, जिसमें फैमिली एक सपोर्ट के रूप में। तो मेरा मानना है 2 ही चीज़ें हैं जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, पहला आपकी हेल्थ और दूसरा फैमिली सपोर्ट।
0: जी
1: तो आजकल इन दोनों चीज़ों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल लाइफ में। आपने देखे होंगे बहुत से लोग हैं जो प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं या बिजनेस में या किसी भी चीज़ में, लेकिन फैमिली लाइफ उनकी बहुत अच्छी नहीं है।
0: जी
1: तो उसके कारण से जो है बहुत से डिप्रेशन के केसेस आते हैं, बहुत सी मेंटल उस तरह के प्रॉब्लम्स के आते हैं, डिस्टर्ब्ड फैमिलीज़ आपने देखी होंगी। तो लाइफ जो है ना वो मेरा मानना है कि स्प्रिंट नहीं है, मतलब तेज़ दौड़ नहीं है, वो एक मैराथन है।
0: जी
1: लंबे समय तक एक बैलेंस के साथ में चीज़ों को करने का नाम ही ज़िंदगी है। और बहुत सारी फेल्योर्स, जैसा मैंने बताया कि 12th के बाद में भी फेल्योर और हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी फेल्योर मिली है
0: जी
1: लाइफ में, लेकिन उसके बाद उससे उठ कर के जब आप खड़े होते हैं तभी बेहतर है। और ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप एक बेहतर इंसान बने, काम आप कुछ भी कर सकते हैं, और एक अच्छे व्यक्ति बने, एक अच्छे जो है वो बहुत ज़रूरी है, और वैल्यूज़ को लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है।
0: सर, अंत में चलते चलते मैं उन युवाओं के लिए आपके द्वारा एक संदेश चाहूँगी जो भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़ना चाहते हैं और अभी उसकी तैयारी में भी जुटे हुए हैं, तो ऐसे लोगों को आप अपनी ओर से क्या संदेश देंगे?
1: जो लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर एक अच्छा करियर ऑप्शन है। आज भी बहुत सारे हमारे सामने ऑप्शंस मौजूद हैं टेक्निकल सर्विसेज में और बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स हैं। उसके बाद भी सिविल सर्विसेज आज भी एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। इसमें पढ़ने के लिए आपको कठिन मेहनत की ज़रूरत है निश्चित तौर पर, लेकिन आपको लाइफ में चैलेंजेस बहुत देगी ये नौकरी, और बहुत जो है सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ करने के लिए मिलेगा। तो पढ़ाई कंटिन्यू जो लोग कर रहे हैं वो अपना करेंगे ही। इसके अलावा इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं जो
0: जी
1: रहे हैं उनका बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना ज़रूरी है, और हमेशा आप अलर्ट रहें, अवेयर रहें, मतलब अपने आसपास होने वाली चीज़ों को लेकर के, जनरल नॉलेज के लिए, पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमिक्स, मतलब हर तरीके की चीज़ों को पढ़ते रहें, और ग्रेजुएशन टाइम से ही इसकी तैयारी करें। ग्रेजुएशन के टाइम से ही बेसिकली ये सारी चीज़ों को, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, बहुत सारे सब्जेक्ट्स एक साथ पढ़ने होते हैं, तो वो आप 1-2 साल में नहीं कर सकते हैं।
0: जी
1: तो आप शुरू से ही उसको टारगेट करके पढ़ें और अच्छे से अपना चीज़ों को करते जाएं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी।
0: सर, आपने बहुमूल्य वक्त निकाला, अपने व्यक्तिगत जीवन की बातों को हमारे साथ साझा किया और साथ ही साथ अपने सुंदर विचारों को भी हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू, शुक्रिया।
0: श्रोताओं, इस बातचीत के साथ ही हमारा आज का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम की सहयोगी सिंधु मिश्रा को आज दें इजाजत। नमस्कार।

अभी आप कार्यक्रम इनसे मिलिए में आईजी एसटीएफसी अनूप विलथरे से सिंधु मिश्रा की बातचीत सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी रांची से प्रसारित किया गया। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद, बस थोड़ी ही देर में।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। शुरुआत करते हैं फिल्म श्री 420 से के इस गाने से। आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, शब्दों में पिरोया है शैलेंद्र ने, संगीतवत किया शंकर जयकिशन ने। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं नया बाजार बक्सर से राजेश केशरी, पंकज केशरी, रोहन केशरी, गोलाघाट बक्सर से विजय केशरी, गौरी शंकर केशरी और शंभू केशरी, मेहरनगर उमेरखंड महाराष्ट्र से अभिजीत राही, सरिता गहवाणकर, सिद्धांत गहवाणकर, प्रिंस एकांश, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश वैशाली, श्वेता सुमित, कुमारी ध्वनि और परी। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म श्री 420 से ये गाना।

कार्यक्रम का अगला गाना आप श्रोताओं के नाम नहज मंजिर महसौल सीतामढ़ी विहार से अकरम हुसैन प्रिंस बेगम इशरत अकरम बहू रुबीना वसीम बाबू आरिज वसीम नवासा अरहान बाबू नवासा हमजा बाबू नवासा मुजम्मिल बाबू नवासी हुमैरा नाज नवासी सुमैरा नाज नवासी अबिहा नाज साजिया शाहीन नाज नाजिया नूरी नाज बच्चू शेख चीना शेख कोलीवारा औराई जिला मुजफ्फरपुर से आप हैं मोहम्मद फैसल शेख नुजहत जहां नाज शेख टोली समस्तीपुर से मोहम्मद सहनाज परवेज मुसरत जहां नाज और लुधियाना पंजाब से आप हैं अमरजीत सोनम कौर परमजीत आदिमा कौर बिहार कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फकीर डब्लू उल्ला फकीर परवीन आसमा फकीर बुलंदशहर से बदरू वली अंसारी फर्जी वली अंसारी फर्जी वरु अंसारी आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म बहारों के सपने से ये गाने आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा धुन बनाई है राहुल देव परमन ने।

कार्यक्रम का अगला गाना फिल्म मधुमति से, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की, शब्दों में पिरोया शैलेंद्र ने, संगीतबद्ध किया सलीम चौधरी ने। इस गीत को सुनना चाहते हैं भटिंडा रोड डबरवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और उनके घर के सारे सदस्य, सरगुजा मैंड पाठ से सोनिया ठापा, सोनम ठापा, रेशमा ठापा और अदीबा ठापा, बिहार कॉलोनी लोनी से परवीन डोम, सरफुद्दीन डोम, कुमारी वली डोम, कुमारी डब्लू डोम, जेल रोड मथुरा से वसीम आसमा बेलदार, अकरम आसमा बेलदार, उल्लाह आसमा बेलदार। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म मधुमति से ये गाना।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा आप श्रोताओं के नाम। बड़ा बाम्बो गांव सिपाही साही से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, निशा प्रकाश, ललित प्रधान, किरण केशरी, राजकुमार केशरी, श्याम देव नायक और देवेंद्र जी। चक्रधरपुर ग्राम गेलिया लोहर से कोमल वेसरा, बनवाली वेसरा, बासंती, अनु, सिद्ध कुमारी और पूजा। खरसावां झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, गौरव नायक, जलेश्वर नायक और मुकेश नायक। आप हैं दिगवार रांची रोड से अर्जुन राम, राधा रानी, रानी पल्लवी, सुनीता रानी, कुमकुम, सरजू, हरिशंकर मिस्त्री, अर्जुन लाल और एआर अकेला। पेटर बार गोपालपुर से सदावर एम्ब्रम, बीके मरांडी, शिवप्रसाद, शशिभूषण और राजकिशोर। आप सबकी पसंद से सुनते हैं फिल्म परवरिश से ये गाना। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने, संगीत पद किया दत्ता राम ने, आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की।

इसी गीत के साथ फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगा हर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: बहनों, अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में। और आज हम हैं सखिया रानी
6: और शिल्पी। और बहनों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको हर रोज की तरह सुनवाते हैं एक भेंटवार्ता। और आज का भेंटवार्ता भी बहुत खास है क्योंकि इसका विषय है वोकल फॉर लोकल, यानी कि स्वदेशी खरीदें। भेंटवार्ताकार हैं गोपाल कृष्ण दुबे, एक शिक्षक हैं, और उनसे बातचीत की है हमारी रेडियो सखी रानी शुक्ला ने। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
7: कभी सोचा है कि हमारी रोजमर्रा की खरीदारी भी देश के विकास में योगदान दे सकती है? हाँ बहनों, जब हम स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, उन्हें अपनाते हैं, तो हम केवल अपनी जरूरतें पूरी नहीं करते बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं। वोकल फॉर लोकल ऐसी ही एक सोच है जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी खरीदें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं विशेष अतिथि गोपाल कृष्ण दुबे जी। आप रांची के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नमस्कार गोपाल कृष्ण जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम गृह लक्ष्मी में।
8: जी नमस्ते रानी जी।
7: गोपाल जी, आजकल वोकल फॉर लोकल की काफी चर्चा हो रही है। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इसका अर्थ क्या है और आज के समय में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है?
8: जी, सर्वप्रथम तो मैं आकाशवाणी के सभी श्रोता बंधुओं को नमस्कार करना चाहूंगा। जी, वोकल फॉर लोकल भारतीय होने के दृष्टिकोण से देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का एक सार्थक अभियान है। इसका सीधा अर्थ हम ले सकते हैं जो लोकल उत्पाद है, जैसे हम लोग गांव के हस्तशिल्प निर्मित वस्तुएं हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, स्थानीय मसाले हैं, या देश के किसी घरेलू कंपनी द्वारा निर्मित जो सामान है उनको खरीदने के साथ साथ इसके प्रचार प्रसार में हमारा जो सहयोग है वही इस अभियान का लक्ष्य है। देश में स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों के प्रयोग को प्राथमिकता देना ही वोकल फॉर लोकल है। आज के समय में आपने पूछा कि यह महत्वपूर्ण क्यों है, तो मैं मानता हूं कि आज के समय में देश को आर्थिक रूप से मजबूत, सशक्त और वैश्विक उन्नति के दृष्टिकोण से यह बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थानीय वस्तु का प्रयोग जब हम करते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, कला, संस्कृति आदि धरोहरों का जो संरक्षण है वह भी होता है। जी रानी
7: जी, बिल्कुल, आपने बहुत ही सरलता से वोकल फॉर लोकल का महत्व समझाया, अर्थ समझाया। अब हम जानना चाहेंगे कि जब हम स्वदेशी वस्तुओं और स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों को अपनाते हैं तो इसका हमारे स्थानीय रोजगार, समाज और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है?
8: जी निश्चित रूप से, जब हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तो उत्पादों की मांग बढ़ने से उद्योगों का विस्तार होता है जिससे स्थानीय स्तर पर उद्योग लगते हैं, कारखाने खुलते हैं, तो इससे क्या है कि लाखों युवाओं को रोजगार मिलता है। और हमारे देश में एक समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में है कि पलायन की समस्या, उसमें भी कमी आती है। साथ ही साथ जो पारंपरिक जो हुनर है हमारे युवाओं के अंदर, लोगों के अंदर, उनकी रक्षा एवं उसको उचित स्थान भी मिलता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं खासकर, उनको आत्मनिर्भर व जागरूक बनने का एक मौका मिलता है। स्थानीय उद्योगों के विकास से देश के जीडीपी को बढ़ावा मिलता है। इससे वैश्विक आर्थिक मंदी का संकट जब आता है तो इससे कोई प्रभाव खासम खास नहीं पड़ता है देश पर। तो मुझे लगता है कि इन वस्तुओं के प्रयोग करने से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है।
7: बिल्कुल, लेकिन राह हमेशा आसान तो नहीं होती। स्वदेशी उत्पादों की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन कई बार उत्पादकों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। ये चुनौतियाँ कितनी गंभीर है और उनके समाधान के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?
8: जी, यह तो एक महत्वपूर्ण बिंदु है। मुझे लगता है कि जब ये छोटे उद्यमी जो है बाजार में जब अपने उद्योग को लाते हैं तो उनका मुकाबला जो पहले से एस्टेब्लिश्ड जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनके साथ इनका टकराव होता है, उनसे लड़ना पड़ता है। खासकर मैं बताऊं तो उन्हें गुणवत्ता में निरंतरता रखनी होती है, ब्रांडिंग का अभाव होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि जो स्थानीय सरकार है उसका योगदान यहाँ पर अहम हो जाता है। ऐसे में यदि सरकार मान लेते हैं कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को एक एरिया को लेकर अगर कॉमन फैसिलिटी सेंटर गांव में या फिर कुछ एरिया को लेकर अगर वो स्थापित करती है जहां पर जो आधुनिक मशीन है जिससे जो छोटे उद्यमी हैं वो पैकेजिंग, लेबलिंग और क्वालिटी टेस्टिंग का काम यदि आसानी से वे कर पाएंगे तो मुझे लगता है कि इससे जो स्वदेशी उत्पाद है इसको हम एक उचित स्थान दे सकते हैं। साथ ही आपको पता भी होगा कि जीआई टैग जो होता है इंडिया में उससे क्या है कि एक निश्चित कर दिया जाता है कि यह भारत का प्रोडक्ट है, जिससे क्या है कि विदेश में भी इसका वैल्यू जो है वो बढ़ता है।

0: जीआई टाइप के लगने से।
1: बिल्कुल, मतलब चुनौतियां तो हैं लेकिन अगर सही दिशा में काम हो तो इन्हें अवसर में बदला जा सकता है।
0: जी, जरूर जरूर।
1: जी, अब बात आती है उपभोक्ताओं की जागरूकता की। आज बाजार में अनेक विकल्प मौजूद हैं, ऐसे में उपभोक्ता ये कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा उत्पाद वास्तव में स्थानीय और स्वदेशी है, और खरीदारी करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
0: ये तो बहुत बढ़िया सवाल है। जागरूक उपभोक्ता हमें बनना ही चाहिए, और खासकर जब बात हो स्वदेशी उत्पाद से संबंधित, तो भारत में जैसे ग्लोबल स्टैंडर्ड एक वैश्विक संगठन है जो कि हर एक देश को एक अलग बार कोड देता है जिसकी शुरुआत अलग अलग डिजिट से होती है। तो इंडिया में जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं
1: जी
0: तो जो स्थानीय जो प्रोडक्ट है, या कह सकते हैं कि अपने देश के बने हुए हैं, तो उसके बारकोड को यदि आप देखें और वो अगर 890 इससे अगर प्रारंभ होता है बारकोड का नंबर,
1: जी
0: तो वो भारतीय प्रोडक्ट का निशानी है। साथ ही साथ आप जो पैकेट जो आपका बंद सामान है उसके पीछे यदि आप मैन्युफैक्चर्ड बाय मेड इन इंडिया देखते हैं,
1: जी
0: तो वह भी निश्चित करता है कि वह आपके देश का ही प्रोडक्ट है। साथ ही यदि हम जैसे उदाहरण ले दार्जिलिंग की चाय है, या बनारसी साड़ी है, या कतरनी चावल जैसे सामान खरीद रहे हैं,
1: जी
0: तो जीआई टैग बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जीआई टैग को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ वो इंडिया का सामान है, और उसमें पूरा डिटेल दिया रहता है कि वो किस जिले का है, किस राज्य का है सामान, वो पता चलता है।
1: जी
0: इसके अलावा हम लोग जो हमारे साप्ताहिक बाजार लगते हैं, या बीच बीच में जो मेला इत्यादि, खादी मेला हो गया, विभिन्न स्थानों पर लगते हैं, किसी प्रकार का मेला भी लगता है, तो वहां पर ज्यादातर जो लोकल सामान होते हैं उनकी बिक्री ही ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे बाजारों से भी कुछ सामान खरीदें तो इस अभियान को एक बढ़ावा मिल सकता है।
1: बिल्कुल, सही जानकारी और समझदारी से की गई खरीदारी ही इस अभियान को सफल बना सकती है। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी सर आपने। अब जब घर की खरीदारी की बात आती है तो इसमें महिलाओं की भूमिका बेहद अहम होती है,
0: जी,
1: ऐसे में गृहिणियां इस अभियान को मजबूत बनाने के लिए क्या योगदान दे सकती हैं?
0: समाज में तो हम लोग जानते ही हैं कि अगर एक पुरुष को जागरूक किया जाए तो वह उतना कारगर नहीं होगा जितना एक महिला को जागरूक कर दिया जाए। और आज महिलाएं जो है, प्रायः मैं देखता हूं कि भारतीय घरों में रसोई रोजमर्रा का जो सामान है उसे खरीदने के लिए जाती है बाहर। लेकिन आज जो मॉल सिस्टम है जिसमें हर एक वस्तु एक स्थान पर मिल जाती है, तो
1: जी
0: महिलाएं चाहती हैं आरामदायक स्थिति, और इस कारण से वे मॉल में जाकर सामान खरीद लेती है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि अगर वो स्थानीय चक्की या स्थानीय किराना दुकानों से सामान खरीदेंगी तो मुझे लगता है कि उनका योगदान इस चीज में अहम भूमिका निभा सकता है। आप त्योहारों में देख लीजिए, जैसे सजावट का सामान, ये महिलाएं ही इन सब चीजों को देखती हैं, या
1: बिल्कुल
0: दीपावली इत्यादि पर्व में, जैसा कि हम लोग विभिन्न त्योहारों में देखते हैं कि लोकल मार्केट में जो बच्चे होते हैं या बूढ़े होते हैं वो कुछ सामान जो है बेचते हैं, जो कि हस्तशिल्प होते हैं सामान, या फिर दीपावली इत्यादि के जो त्योहार होते हैं उसमें दिए इत्यादि या खेलने की जो वस्तुएं हैं वो भी आपको मिट्टी के बने हुए मिलते हैं। तो वहां पर यदि मान लेते हैं कि हम अगर अपने बच्चों के साथ जाते हैं और वहां पर उनको प्रेरित करते हुए वैसे सामान खरीदने को बताते हैं, तो मुझे लगता है कि महिलाओं का योगदान जो है वोकल फॉर लोकल के लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होता है।
1: बिल्कुल, निश्चित रूप से। और गृहिणियों के साथ अगर युवा भी इससे जुड़ जाएं तो इसका असर और भी व्यापक हो सकता है। हाँ, क्योंकि युवा पीढ़ी नई चीजों को जल्दी अपनाती है, ऐसे में युवाओं को स्वदेशी उत्पादों और वोकल फॉर लोकल की भावना से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए?
0: देखिए, मुझे लगता है कि युवा वर्ग का मतलब आज के समय में आकर्षण है। यदि हम मॉल इत्यादि में देखें तो जो जिस चीज से वो आकर्षित हो जाते हैं वो सामान लेते हैं।
1: जी
0: तो यदि हस्तशिल्प या स्थानीय स्तर पर जो प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, वो खाने का सामान हो या पहनने का या खेलने का हो, इसको यदि हम लोग एक आकर्षक ढंग देते हैं, आकर्षक रूप से उसका निर्माण करते हैं या उसकी पैकेजिंग करते हैं, तो मुझे लगता है कि वैसे सामान को खरीदने के लिए युवा वर्ग भी आकर्षित होगा, और यह स्वदेशी सामान के प्रति उनके लिए जागरूकता ही है। सोशल मीडिया के दौर में हम

0: परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। इसका अर्थ हुआ कि यदि हम दूसरे के वश में रहते हैं तो यह दुख है और अपने वश में रहते हैं तो यह सुख है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि हम भारत देश के प्रोडक्ट यानी कि अपने वश में यानी अपने देश के प्रोडक्ट को खरीदते हैं, सामान को खरीदते हैं, तो यह ही सुख है। और वोकल फॉर लोकल अभियान जो है वह खुद को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का अभियान है। तो हम सभी अपना सहयोग कर गौरवान्वित होने का काम करें। मैं आकाशवाणी को इस सुंदर प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित करने और वोकल फॉर लोकल इस अभियान को प्रेरित करने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम के लिए भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ।
1: जी गोपाल कृष्ण जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद रानी जी।
2: मैंने अभी सुन रही थी भेंटवार्ता। भेंटवार्ता का विषय था वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी खरीदें। भेंटवार्ताकार थे गोपाल कृष्ण दुबे और उनसे बातचीत की थी हमारी रेडियो सखी रानी शुक्ला। और रानी आगे अब क्या है बताओ?
3: आगे बहनों को ले चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनवाते हैं ये गीत।

0: और रानी बहनों से बात करेंगे जानकारी के तहत भारत के संविधान के बारे में। बहनों, संविधान जिसे हम भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं, किसी भी देश की पहचान और उसके नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है ये।
1: बहनों, ये केवल एक कानूनी किताब नहीं है बल्कि ये हमारे देश के मूल्यों, नैतिकताओं और सामाजिक न्याय का प्रतीक है।
0: भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और यह दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का आधार है। इसमें न केवल नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन है बल्कि यह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों का समाधान भी प्रस्तुत करता है।
1: हाँ बहनों, संविधान का महत्व इस बात में निहित है कि यह हमारे नागरिकों को एक समानता, स्वतंत्रता और न्याय का आधार प्रदान करता है।
0: संविधान हत्या दिवस जैसा कि आज है, हर भारतीय के अंदर लोकतंत्र की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अमर ज्योति को जीवित रखने का काम करता है ताकि कोई भी तानाशाही मानसिकता भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न कर पाए।
1: बिल्कुल, संविधान का महत्व केवल एक कानूनी दस्तावेज तक सीमित नहीं है बहनों, बल्कि ये हमारे देश की आत्मा है। ये हमें एकजुटता, समानता और स्वतंत्रता का मार्ग दिखाता है।
0: बिल्कुल, हमारा संविधान ने हमें ये न केवल अधिकार दिए हैं बल्कि हमें अपने कर्तव्यों का एहसास भी कराया है। संविधान के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके मूल्यों का सम्मान करें और इसे लागू करने में मदद करें।
1: हाँ बहनों, ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम संविधान के माध्यम से एक सशक्त और समृद्ध भारत का निर्माण करें।
0: बहनों।

0: अपने संविधान से हमें प्रेम करना चाहिए, गर्व होनी चाहिए और इसकी जानकारी सभी को रखनी चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल शिल्पी, और इसी के साथ अब कार्यक्रम का समय संपन्न होने को है और अगले कार्यक्रम में फिर से होगी मुलाकात। और चलने से पहले आपको बता दें बहनों कि आज के कार्यक्रम की प्रस्तुति थी गौरव पांडे की,
0: और आज अपने कार्यक्रम की दोनों सखियों को यानी कि मैं शिल्पी
1: और रानी को दे
0: इजाजत। नमस्कार।
2: गृहलक्ष्मी
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गृहलक्ष्मी, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत का। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से।
4: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

आवाज लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, शब्दों में पिरोया है हसरत जयपुरी ने, संगीत पर किया शंकर जय किशन ने।

अगला गाना सुनते हैं फिल्म रात और दिन से। आवाजें लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, शब्द रचना शैलेंद्र के, धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने।

अभिजीत की आवाज में सुनते हैं फिल्म जोश से ये गाना। इस गीत को लिखा समीर ने, धुन बनाई है अन्नू मलिक ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा फिल्म खुदगर्ज से नितिन मुकेश की आवाज, इंदिवर का लिखा हुआ और संगीत व्यक्त किया हुआ राजेश रोशन का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भारत ऊर्जा प्रणालियों के निर्माण की दिशा में ब्रिक्स सहयोग को मजबूत करना चाहता है। आज गुरुग्राम में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि विकास की आकांक्षाओं और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। संपूर्ण ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में भारत के निवेश के बारे में श्री मनोहर लाल ने कहा कि भारत विश्व की डिजिटल रूप से सक्षम सबसे बड़ी विद्युत प्रणालियों में से एक की नींव रख रहा है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर पहले ही लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह परिवर्तन बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। उन्होंने कहा कि इस दौरान नागरिक स्वतंत्रता निलंबित की गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि 25 जून उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग संबंधी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय एसआईटी ने राज्य सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के 6वें चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। राहत और बचाव कार्य के साथ साथ हादसे के कारणों की भी जांच की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि

0: देखने को मिली। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 570 अंक की उछाल के साथ 77,561 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर चल रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Samvidhan Hatya Divas is being observed today. It serves as a reminder of what happened when the Constitution of India was trampled over on the 25th of June 1975. It is also a day to pay homage to each and every person who suffered due to excesses in the emergency. Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah today paid homage to all those who stood firm in defence of democratic values during the emergency. In a social media post, Prime Minister Modi said the emergency was a direct assault on the Constitution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said the world is witnessing greater weaponization, higher risk-taking and politics suited to the social media era. Addressing the Jeju Forum for Peace and Prosperity 2026 in South Korea, Dr. Jaishankar said international cooperation is needed to confront challenges like COVID-19, acts of terrorism or the impact of extreme climate events.
2: The global south should be enabled with greater capacity and greater opportunities. This would also create new factors of global growth and provide global goods through common and shared endeavors. We cannot rely on a few to uphold rules and norms. The world must take more control over its own future.
1: Union Minister of Power Manohar Lal has said that India seeks to strengthen BRICS cooperation towards building energy systems. Inaugurating the 11th meeting of BRICS energy ministers in Gurugram today, the minister said affordable, reliable and sustainable energy is indispensable for achieving developmental aspirations and the sustainable development goals.
3: Future energy systems must balance sustainability with reliability. India is making significant investments across the entire energy value chain. India is laying the foundation for one of the world's largest digitally enabled electricity systems. More than 60 million smart meters have already been deployed, and this transformation will continue at scale in the coming years, empowering consumers while strengthening utility performance.
1: Civil Aviation Minister K. Ram Mohan Naidu today inaugurated the first Easy Connect flight from Varanasi's Lal Bahadur Shastri International Airport in Uttar Pradesh. The first hub and spoke flight connecting Varanasi to the world via Delhi is aimed at linking the length and breadth of India seamlessly with the world and vice versa. Speaking on the occasion, the minister said the new hub and spoke model paves the way for a monumental shift in how citizens travel. Air Chief Marshal Amarpreet Singh today released the memoir of Group Captain Shubhanshu Shukla, The Second Orbit, Belief of a Man, Dreams of 1.4 Billion Hearts, in New Delhi. The event commemorated the first anniversary of Group Captain Shukla's landmark Axiom 4 mission, which was launched on the 25th of June last year. Addressing the media, Air Chief Marshal Amarpreet Singh emphasized that the book will be a great motivator for the coming generation. The Enforcement Directorate ED today conducted search operations at multiple premises in Ghaziabad and Delhi in connection with a land fraud and money laundering case involving Sandeep Singh, promoters of Shrashth Prop Build Private Limited and office bearers of Seva Suraksha Sahkari Awas Samiti. ED officials said the accused allegedly induced members of the housing society to surrender their rights over approximately 41,500 4 square meters of land located at Akbarpur Bahrampur in Ghaziabad, Uttar Pradesh, by promising residential flats under a redevelopment project. In Venezuela, a state of emergency has been declared following back-to-back earthquakes of 7.2 and 7.5 magnitude that caused multiple buildings to collapse in Caracas and surrounding areas this morning. Addressing the nation, President Delcy Rodriguez announced the suspension of classes for students and non-essential activities until further notice. The president said 32 people have died and more than 700 have been injured following a series of powerful earthquakes. Rescue and recovery operations are underway underway in the affected regions. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed sorrow over the devastation caused by the severe earthquakes. And with that, we end this news bulletin.
4: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं अक्षरा अक्षय। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का बताया सबसे काला अध्याय। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों की दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के चैपवन मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में हुए शामिल। नव प्रशिक्षित जवानों के लिए दीक्षांत सलामी। वन्य जीव अपराधों की रोकथाम को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की रांची में समन्वय बैठक। तस्करी रोकने के लिए डाक, कुरियर और सभी परिवहन मार्गों पर निगरानी बढ़ा के निर्देश। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर बर्ड स्ट्राइक रोकने के लिए कड़े कदम। बिरसा चौक और हीनू में खुले में मांस मछली बेचने वालों पर होगी सख्त प्रशासनिक कार्रवाई। और रांची समेत कई जिलों में दोपहर बाद अचानक बदला मौसम, गरज के साथ झमाझम बारिश। मौसम केंद्र ने खूंटी, बोकारो और रामगढ़ के लिए भी जारी किया वज्रपात का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाले सभी नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का सबसे काला अध्याय और संविधान पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि इस दौर ने उन अनगिनत नागरिकों के असाधारण साहस को उजागर किया जिन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि देश न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजनाओं की समीक्षा के डिजिटल मंच प्रगति का 52वीं बैठक की कल नई दिल्ली में अध्यक्षता की। बैठक में सड़क, बिजली, औद्योगिक गलियारे और मेट्रो रेल क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री ने कहा है कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और जनता को समय पर लाभ नहीं मिल पाता। उन्होंने मंत्रालयों और राज्य सरकारों को लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान करने तथा परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने तपेदिक उन्मूलन के लिए AI के उपयोग पर बल दिया तथा NCC कैडेटों और माय भारत स्वयंसेवकों को जन जागरूकता अभियान से जोड़ने का सुझाव दिया। श्री मोदी ने साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से जुड़ी शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने साइबर धोखाधड़ी की रोकथाम, शिकायतों के त्वरित निपटारे और एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर देते हुए राज्यों से E0 FIR व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। सकलेन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
4: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राजधानी रांची के डोरंडा स्थित जैपवन मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नव प्रशिक्षित आरक्षियों के दीक्षांत पासिंग आउट परेड की सलामी ली। साथ ही उन्होंने प्रशिक्षण के दौरान विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जांबाज जवानों को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नए जवानों का हौसला बढ़ाया और उन्हें ईमानदारी व निष्ठा से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की सीख दी। धनबाद के कोयला नगर कम्युनिटी हॉल में भाजपा द्वारा प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने सुशासन, विकास और गरीब कल्याण को केंद्र सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि बताई।
6: 12 वर्ष में आदरणीय मोदी जी, उन्होंने गरीब कल्याण योजना चलाकर चाहे 81 करोड़ गरीब को 5 किलो मुफ्त अनाज हो, आयुष्मान 5 लाख रुपया निशुल्क इलाज का मामला हो, उजला गैस सिलेंडर देना हो या फिर घर घर नल जल लागू करके 25 करोड़ लोग गरीब को आज गरीबी रेखा से बाहर हो, ये यात्रा 2047 तक चलाते रहनी है।
4: रांची में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों की एक समन्वय बैठक आयोजित की गई। प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार ने वन्य जीव तस्करी रोकने के लिए हवाई, रेल, सड़क मार्गों समेत डाक व कुरियर सेवाओं पर भी निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों से आपस में सूचनाओं का त्वरित आदान प्रदान सुनिश्चित करने को कहा। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर बर्ड स्ट्राइक रोकने के लिए विमान पतन पर्यावरण प्रबंधन समिति की बैठक में कई कड़े फैसले लिए गए हैं। हवाई अड्डे के आसपास विशेष रूप से बिरसा चौक और हीनू क्षेत्र में खुले में मांस मछली बेचने वाले अनाधिकृत केंद्रों और बुच्चड़खानों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही पक्षियों को आकर्षित होने से रोकने के लिए नगर निगम को खुले नालों को जल्द ढकने और ऊंची इमारतों पर अवरोधक लाइटें लगाने के निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsoneair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के मुरहाबादी मैदान स्थित बापू वाटिका से आज युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए एक विशेष जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। पर्यटन और खेलकूद मंत्री सुदिव्य कुमार ने इस दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मंत्री ने आगाह किया कि नशा आज युवाओं के सामने एक बड़ी चुनौती है जो पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है।
7: अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन पर झारखंड में शुरू की है। यह हर कदम इस बात का संकल्प है कि झारखंड को हम मादक पदार्थों से बचाकर रखेंगे और साथ ही साथ अपने झारखंड को बेहतर सशक्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
4: दुमका जिले के रानीश्वर प्रखंड की गोविंदपुर पंचायत में किसानों ने सामूहिकता से समाधान की एक अनूठी मिसाल पेश की है। दो गांवों के किसानों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर जेसीबी मशीन की मदद से जल निकासी नाली को साफ कराया है। इससे क्षेत्र के करीब 150 बीघा जमीन से जल जमाव की समस्या दूर हुई है और 6 वर्षों के बाद यह भूमि दोबारा खेती के योग्य बन सकी है। किसानों के इस सामूहिक प्रयास को पूरे जिले में सराहना हो रही है। राज्य सरकार ने बोकारो जिले के चंदन कियारी स्थित पर्वतपुर और सीता नाला कोल ब्लॉक के खनन पट्टा को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा दी गई इस स्वीकृति से दोनों ब्लॉकों के विशाल क्षेत्र में खनन गतिविधियां शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद स्थानीय जनप्रतिनिधियों और युवाओं में खुशी का माहौल है।
8: चंदन क्यारी में दो कॉल ब्लॉक खुला, एक पर्वतपुर एक सीतानाला। तो सीतानाला में जो रैयत है जमींदाता है उनको भी उसी रूप से नौकरी मिलेगा जिस रूप से यहाँ पर कॉल ब्लॉक में मिलना है। इसमें पिछला एक साल हमारा काफी मेहनत की है हमने और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत ही योगदान है और उनके योगदान के तहत ही आज कॉल ब्लॉक का स्वीकृति हुआ है जिसमें हमारा सीतानाला भी एड हो गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि।
4: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज लगभग 0.7% की वृद्धि के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 500 अंक के उछाल के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 170 अंक की वृद्धि के साथ 24,191 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,32,900 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,25,000 रुपये प्रति किलो है। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज दोपहर अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह से ही उमस भरी गर्मी के बाद आसमान में काले घने बादल छा गए और तेज गर्जन और हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने तात्कालिक चेतावनी जारी करते हुए रांची, खूंटी, बोकारो और रामगढ़ जिलों के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 घंटों में तीव्र मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ स्थानों 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का भी पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। रामगढ़ जिला प्रशासन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय जिला स्तरीय बैडमिंटन और तैराकी प्रतियोगिता का समापन हो गया। छत्तरमांडू इंदौर स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में विधायक ममता देवी, उपायुक्त ऋतुराज और पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर अतिथियों ने कहा कि ग्रामीण खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का बताया सबसे काला अध्याय, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची के जैप वन मैदान में आयोजित पारण परेड समारोह में हुए शामिल, नव प्रशिक्षित जवानों की ली दीक्षांत सलामी। वन्य जीव अपराधों की रोकथाम को लेकर सुरक्षा एजेंसियों की रांची में समन्वय बैठक, तस्करी रोकने के लिए डाक कुरियर और सभी परिवहन मार्गों पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश। रांची के बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर बर्ड स्ट्राइक रोकने के लिए कड़े कदम, बिरसा चौक और हीनू में खुले में मांस मछली बेचने वालों पर होगी सख्त प्रशासनिक कार्यवाही। और रांची समेत राज्य के कई जिलों में दोपहर बाद अचानक बदला मौसम, गरज के साथ झमाझम बारिश, मौसम केंद्र ने खूंटी, बोकारो और रामगढ़ के लिए भी जारी किया वज्रपात का येलो अलर्ट। अंत में इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज तथा एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी। कलाकार हैं शिप्रा बोस। इनसे सुनेंगे दादरा और ठुमरी।

अभी आप शिप्रा बोस से दादरा और ठुमरी सुन रहे थे। इसी के साथ उपशास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अनुरंजनी यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में सुनते हैं चंद गजलें। कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। पहले सुनते हैं भूपेंद्र सिंह की आवाज में ये गजल।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: आइए सुनते हैं अश्के अम्बलवी की लिखी यह गजल, आवाज मिताली सिंह की।

मिताली सिंह के गाए इसी गजल के साथ सुगम संगीत यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अब से थोड़ी देर में आप आकाशवाणी दिल्ली से मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार सुनेंगे।

0: हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। और मैनचेस्टर में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मैच में आज शाम भारत का मुकाबला बांग्लादेश से। अब समाचार विस्तार से। आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ये दिवस 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल की याद दिलाता है, जब देश में संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान हत्या दिवस पर आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित रहे लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आपातकाल संविधान पर सीधा हमला था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दौरान लोकतांत्रिक संस्थाएं भी निशाने पर रहीं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी की कालजयी पंक्तियां आज भी उस कालखंड के काले अध्यायों को आवाज देती हैं।
1: जब आपातकाल को 1 वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी थी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, 1 बरस बीत गया।
2: सीख चौ में सिमटा जग किंतु विकल प्राण बिहग, धरती से अंबर तक बुझा मुक्ति गीत गया, 1 बरस गया, 1 बरस।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आपातकाल भारत के इतिहास का एक कठिन दौर था, जब संविधान के मूल्यों की कड़ी परीक्षा हुई। गृहमंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल के खिलाफ संघर्ष करने वाले लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय जनता पार्टी ने आपातकाल को भारतीय इतिहास का काला अध्याय बताते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आपातकाल के दौरान न्यायपालिका पर दबाव डाला गया, मीडिया की स्वतंत्रता प्रभावित हुई।
3: जुडिशरी के खिलाफ बेशर्मी, संपादक पत्रकारिता के कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दबाव, विपक्षियों को जेल में बंद करना और गलत तरीके से इमरजेंसी लगाना। मैं इमरजेंसी के अंडरग्राउंड में प्रधानमंत्री की भूमिका की तारीफ करूंगा। सरदार के रूप में जितना अंडरग्राउंड को उन्होंने गुजरात से लेकर उत्तर भारत को जो संगठित किया था वो कमाल था। और आज अपने ट्वीट में उन्होंने उस काले अध्याय को याद किया है कि देश की जनता ने कितनी हिम्मत दिखाई।
0: केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि ऊर्जा आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में आज ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास के लक्ष्यों और सतत विकास को प्राप्त करने के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा अपरिहार्य है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य के लिए तैयार ऊर्जा क्षेत्र के निर्माण के वास्ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, स्मार्ट दृढ़ ढांचे और ऊर्जा भंडारण प्रणाली का तेजी से विस्तार कर रहा है।
4: फ्यूचर एनर्जी सिस्टम्स मस्ट बैलेंस,
5: भविष्य की ऊर्जा प्रणालियों में स्थिरता और विश्वसनीयता के बीच संतुलन होना चाहिए। भारत ऊर्जा क्षेत्र की पूरी श्रृंखला में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है। अब तक 6 करोड़ से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं और आने वाले वर्षों में यह बदलाव और बड़े स्तर पर जारी रहेगा।
4: ट्रांसफॉर्मेशन विल कंटिन्यू एट स्केल।
0: ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की ये बैठक कल तक जारी रहेगी। इसमें ऊर्जा सुरक्षा, सतत विकास, सभी के लिए ऊर्जा की उपलब्धता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर मुख्य रूप से चर्चा हो रही है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया से प्रभावित राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने अधिक सहयोगात्मक वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए भारत के वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरा विश्व एक परिवार है के मार्गदर्शक सिद्धांत का उल्लेख करते हुए वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अवसर दिए जाने चाहिए।
6: The global south should be enabled.
7: वैश्विक दक्षिण को अधिक क्षमता और अधिक अवसर दिए जाने चाहिए। इससे वैश्विक विकास के नए अवसर पैदा होंगे और साझा प्रयासों से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। हम केवल कुछ देशों पर नियमों और मानकों को बनाए रखने के लिए निर्भर नहीं रह सकते। दुनिया को अपने भविष्य पर अधिक नियंत्रण रखना होगा।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने अमरीका के वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के विदेश उपमंत्री जैकब एस हेलबर्ग से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पर बताया कि बैठक में भरोसेमंद और विविध आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के उपायों पर भी विचार विमर्श किया गया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट ठगी से जुड़े एक बड़े मामले में चेन्नई और कोलकाता से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ऑपरेशन चक्र के छठे चरण में पंजाब, गुजरात, दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 16 राज्यों में 80 से अधिक स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने भूमि धोखाधड़ी और धनशोधन के एक मामले में आज दिल्ली और गाजियाबाद के कई ठिकानों पर तलाश अभियान चलाया। ये मामला श्रेष्ठ प्रॉप बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटरों और सेवा सुरक्षा सहकारी आवास समिति के पदाधिकारियों से जुड़ा है। पंजाब पुलिस ने एक केंद्रीय एजेंसी के साथ संयुक्त अभियान में अमृतसर जिले में सीमा पार से संचालित अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में एक अफगान नागरिक और एक नाबालिग सहित 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से जुड़े कथित अपमान की वीडियो को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कई राजनीतिक दलों के नेता उनके इस्तीफे और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। गुरुद्वारा प्रबंधन की सर्वोच्च संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC ने भी श्री मान से पद छोड़ने को कहा है। गुरुग्राम पुलिस द्वारा कल FIR दर्ज किए जाने के बाद मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा बचाव में पेश की गई फॉरेंसिक रिपोर्ट की जाँच शुरू हो गई है। मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप शामिल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में कहा कि एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है और गुरुग्राम स्थित एक प्रयोगशाला द्वारा फोरेंसिक रिपोर्ट में कथित हेरफेर की विस्तृत जांच चल रही है। इस बीच श्री भगवंत मान ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और ये उन्हें बदनाम करने के अभियान का एक हिस्सा है। सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच न्यायालय की निगरानी में कराने संबंधी जनहित याचिका पर आज तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हालांकि न्यायालय ने मामले को उचित समय पर सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया। याचिका में अयोध्या राम मंदिर में दान और चढ़ावे से संबंधित CCTV फुटेज, डिजिटल भुगतान रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों को सुरक्षित करने की मांग की गई है। इस बीच लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यीय SIT ने राज्य सरकार को इस मामले में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दी है। कोलकाता के तारातला इलाके में हुए एक हादसे में मृतकों की संख्या 9 हो गई है। 29 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 20 लोगों का इलाज अभी भी चल रहा है। विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हादसे के जिम्मेदार लोगों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी हैं। मामले की जाँच के लिए एक विशेष जाँच दल SIT गठित की गई है। इस मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना के मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पहली इजी कनेक्ट उड़ान का उद्घाटन किया। दिल्ली के रास्ते वाराणसी को दुनिया से जोड़ने वाली ये पहली हब एंड स्पोक उड़ान भारत को दुनिया से निर्बाध रूप से जोड़ने के उद्देश्य से शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में परिचालन हवाई अड्डों की संख्या दोगुनी से अधिक

0: @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वेनेजुएला की राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के कारण देश में आपातकाल की घोषणा की है। आज सुबह काराकस और आसपास के इलाकों में आए लगातार 7.2 और 7.5 तीव्रता के भूकंप के कारण कई इमारतें ढह गईं। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियों को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उन्होंने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक और निजी जन स्वास्थ्य तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है। शक्तिशाली भूकंपों में 32 लोगों की मौत की खबर है और 700 से अधिक लोग घायल हुए हैं। प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने भारत के लोगों की ओर से वेनेजुएला के लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। वहीं सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत अनुसूची H2 का दायरा व्यापक रूप से विस्तारित किया गया है ताकि नकली और घटिया दवाओं के प्रसार पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। इसमें QR कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस ढांचे के अंतर्गत दवाओं की अतिरिक्त श्रेणियां शामिल की गई हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर कारोबार में लगभग 0.7% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 575 अंक की उछाल से 77,566 पर, जबकि निफ्टी 173 अंक की वृद्धि के साथ 24,195 पर कारोबार कर रहे थे। और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने आज सुबह मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया पर 1-0 से जीत हासिल करके पहली बार नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया। इससे पहले मेक्सिको ने चेक गणराज्य को 3-0 से हराकर विश्व कप के ग्रुप चरण के अपने तीनों मैच में पहली बार जीत दर्ज की। मोरक्को ने हैती को 4-2 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के मुकाबले में भारत आज मैनचेस्टर में बांग्लादेश के साथ खेलेगा। मैच एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड स्टेडियम में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। बात मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में 30 जून तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। साथ ही कर्नाटक के तटीय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा में भी कल तक तेज बारिश हो सकती है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर 10 जुलाई तक किए जा सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज संविधान हत्या दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। दक्षिण कोरिया के जेजू फोरम में वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर बल दिया। भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में शुरू। वेनेजुएला में लगातार 2 शक्तिशाली भूकंप में कई इमारतें ढहीं, देश में आपातकाल घोषित। दक्षिण अफ्रीका ने मॉन्टेरी में दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर पहली बार फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी रांची से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती। शुरुआत करते हैं भारतीय सेना को समर्पित इस गीत से। गीत संगीत और गायक कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: Sena.
1: फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं अलका याग्निक की आवाज में फिल्म एलोसी कारगिल से ये गाना।

फौजी भाइयों, आइए सुनते हैं फिल्म परदेसी बाबू से ये गाना। गीत संगीत और गायक आनंद राज आनंद।

फौजी भाइयों, कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म बॉर्डर से। आवाजें सोनू निगम और अलका याग्निक की है, शब्द रचना जावेद अख्तर के, धुन बनाई है अनु मलिक ने।

इसी गीत के साथ फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम जय भारती यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड में नशा मुक्ति अभियान के तहत आज रांची की बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने जागरूकता मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और विजेताओं को पुरस्कृत किया। नशा मुक्ति में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। मैराथन में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के युवाओं ने हिस्सा लिया और हर कदम के साथ झारखंड को मादक पदार्थों के दुरुपयोग से बचाने का संकल्प लिया।
1: अभियान की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों पर झारखंड में शुरू की है। यह हर कदम इस बात का संकल्प है कि झारखंड को हम मादक पदार्थों से बचाकर रखेंगे और साथ ही साथ अपने झारखंड को बेहतर सशक्त बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।
0: उपराजधानी दुमका में मादक पदार्थों के सेवन और उसके दुष्प्रभावों के प्रति आमजन विशेषकर युवाओं के बीच जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज मिनी दौड़ का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना करते हुए कहा कि जागरूकता ही नशा उन्मूलन का सबसे प्रभावी माध्यम है। मिनी दौड़ में शामिल प्रतिभागियों ने नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए संकल्प लिया तथा लोगों को मादक पदार्थों से दूर रहने का संदेश दिया। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। इसका उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मानित और प्रोत्साहित करना है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अहमदाबाद, हैदराबाद और गुवाहाटी को देवघर से जोड़ने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। दिसंबर तक इन तीनों शहरों के लिए देवघर से सीधी उड़ान शुरू होगी। सांसद डॉ. निशिकांत दुबे ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से मिलकर इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था। उन्होंने कहा कि हर साल गुजरात और राजस्थान से बड़ी संख्या में जैन श्रद्धालु यहां आते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत खनन अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित सहायक खान सर्वेक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल प्रतिभागियों को स्किल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। इस कार्यक्रम के तहत 90 युवाओं को प्रमाण पत्र दिए गए। संस्थान के उप निदेशक डॉ. धीरज कुमार ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना भी है।
2: हमारी जो मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उनके तरफ से डायरेक्शन आया था कि आप तो इंजीनियर को पढ़ा ही रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएट करा ही रहे हो, बट अपने समाज के आसपास जो 12th पास आउट बच्चे हैं, जो आईटीआई पास आउट बच्चे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा कोर्स करो जिसके तहत उनको कुछ नौकरी मिलने की संभावना हो जाए। कि माइन सर्वेइंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे ये सर्वेयर माइनिंग में भी काम कर सकते।
0: गोड्डा के पत्थरगामा थाना क्षेत्र में आज राष्ट्रीय राजमार्ग 133 पर एक सड़क दुर्घटना में एक युवक की मृत्यु हो गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में गोड्डा सदर अस्पताल रेफर किया गया है। हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र स्थित दनुआ घाटी में एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर करीब 20 फीट गहरी खाई में जा गिरा। घटनास्थल पर पहुंची चौपारण थाना पुलिस और एनएचएआई की एम्बुलेंस टीम ने ट्रेलर में फंसे चालक को सुरक्षित बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चौपारण पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें हजारीबाग सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। धनबाद में शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम संपन्न कराने को लेकर पुलिस सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधि पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। त्योहार के दौरान आम लोगों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है उमंग कार्यक्रम में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंह रौल, नारायणी सिंह रौल, नोमेश सिंह रौल, नेहा और वान्या सिंह रौल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है, दूसरों को सम्मान देने वाला व्यक्ति स्वयं सम्मान का अधिकारी बन जाता है। इस सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है सरगुजा मैनपाट से रुबीना थापा, सोनम थापा, फातिमा थापा, आसमा थापा, आदिबा थापा, रेशमा थापा, कुमारी वली थापा और कुमारी डब्ल्यू थापा। जेल रोड कानपुर से रोशन आसमा, सरफुद्दीन, फातिमा थापा, वसीम अकरम बेलदार और डब्ल्यू सोनम थापा। स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीना तमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी। कृष्णा पार्क दिल्ली से असलम आसमा कुरैशी और अकरम आसमा कुरैशी। आप सभी श्रोताओं को धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और आइए चलते हैं एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। साथियों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनूठी गुफाओं के बारे में। जैसा कि हमने बताया था कि अजंता और एलोरा की गुफाओं के बारे में तो सभी जानते हैं, वहाँ पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लेकिन भारत में कई ऐसी गुफाएं हैं जिनका नाम लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन वे पुरातत्व और मानव विज्ञान के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे बोर्रा की गुफाओं पर। आपको शायद ये नाम अनजाना लग रहा होगा, तो आपको बता दें स्थानीय भाषा में इन गुफाओं को बोर्रा गुहलू कहा जाता है। बेशक ये बहुत जाना माना नाम तो नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी और गहरी गुफाओं में से एक है। तो आइए जानते हैं कि ये गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। ये गुफाएं आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध बंदरगाह विशाखापत्तनम से लगभग 90 किलोमीटर दूर अनंतगिरी की पहाड़ियों में स्थित हैं। इनकी गहराई 260 मीटर से भी अधिक है। श्रोताओं, माना जाता है कि ये गुफाएं लगभग 10 लाख वर्ष पुरानी हैं। लेकिन ये जानना भी बहुत रोचक होगा कि इन गुफाओं का निर्माण आखिर कैसे हुआ। श्रोताओं, यहाँ एक नदी है जिसका नाम गोस्थानी है। गोस्थानी नदी की छोटी छोटी जलधाराएं यहाँ की चूना पत्थर से बनी पहाड़ियों पर लाखों वर्षों से बहती रही हैं। इस नदी की धार में एक खास प्रकार का अम्ल या एसिड है जिसे ह्यूमिक एसिड कहते हैं। इसने चट्टानों को खरादना शुरू किया और लाखों वर्षों में एक विशाल गुफा बना दी। सच में प्रकृति का करिश्मा आश्चर्यजनक है। श्रोताओं, इन गुफाओं की सबसे रोचक बात यह है कि यहाँ के खरादे हुए पत्थर छत से लटकते हुए और फर्श से ऊपर उठते हुए दिखाई देते हैं। नदी के लगातार टपकते पानी ने यहाँ के पत्थरों को अद्भुत आकार प्रदान किया है। श्रोताओं, सुखद आश्चर्य होता है कि नदी के पानी द्वारा खरादे गए पत्थरों की प्राकृतिक आकृतियाँ इतनी अनोखी और वास्तविक हैं कि लोगों ने इनके नाम रख दिए हैं, जैसे शिव पार्वती, माँ बच्चा, ऋषि की दाढ़ी, मगरमच्छ, गाय इत्यादि। है ना बड़ी अद्भुत बात। सच में श्रोताओं, प्रकृति बड़ी अद्भुत शिल्पकार है। और तो और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि गुफा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखाई पड़ता है, जिस पर पानी टपकता रहता है। स्थानीय लोग इसे पवित्र मानते हैं। तो श्रोताओं, ये तो बात हुई गोर्रा गुफाओं की। आइए बात करते हैं आखिर इसकी खोज कैसे हुई, ये जानना भी बहुत जरूरी है। सन 1807 की बात है। ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज ने इसकी खोज तब की जब वे चट्टानों पर नदी के प्रभाव का अध्ययन करने इस क्षेत्र में आए। जब उन्होंने इन गुफाओं में प्रकृति द्वारा लाखों वर्षों में निर्मित इन अद्भुत आकृतियों को देखा तो प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर वे भी चकित रह गए। फिर उन्होंने विधिवत इन गुफाओं का दस्तावेजीकरण किया और उसे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। इन दिनों ये गुफाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इन गुफाओं को देखने बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक और भूगर्भ शास्त्री आते हैं। श्रोताओं, जब हम प्रकृति के करिश्मे को देखते हैं तो हमें ये मान लेना चाहिए कि आकर्षण सिर्फ चकाचौंध और दिखावे में ही नहीं होता। सच्चा आकर्षण तो वहाँ है जहाँ हम अवलोकन करके ये समझ लेते हैं कि प्रकृति कितनी अनोखी और विस्मयकारी है। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी अद्भुत विस्मयकारी आंध्र प्रदेश की बोर्रा गुफाओं की। अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, बोर्रा गुफाओं की खोज कैसे और किसने की। 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम गिजू भाई बधे का। यह कार्यक्रम भारत के सुप्रसिद्ध शिक्षाविद गिजू भाई बधे का के शैक्षिक चिंतन और शिक्षा के क्षेत्र में उनके अनुप्रयोगों की जानकारी देता है। गिजू भाई बधे का जी ने मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को भारतीय परिप्रेक्ष्य में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। उनकी बहुचर्चित पुस्तक दीवा स्वप्न के बारे में भी इस कार्यक्रम में जानकारी दी गई है।
1: गुरु भूमि यानी गुरुओं और शिक्षकों की भूमि, भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था ने असंख्य विद्वानों को जन्म दिया। शल्य चिकित्सा में आचार्य सुश्रुत और चिकित्सा विज्ञान में महर्षि चरक और बाल रोग विशेषज्ञ जीवक के बारे में भला कौन नहीं जानता।
2: खगोल विज्ञान और गणित में आर्यभट्ट, वराह मिहिर और भास्कराचार्य का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। और भी बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने विद्या के हर क्षेत्र में शिक्षा दी और ज्ञान का दीप प्रज्वलित किया।
1: यदि हम आधुनिक भारत की बात करें तो इसमें कई विलक्षण विभूतियां हुई जिनका शैक्षिक चिंतन और दर्शन सदा स्मरण रखा जाएगा।
2: उन विलक्षण आधुनिक विभूतियों में मुख्य रूप से हैं श्री अरविंद, भगिनी निवेदिता, रविंद्रनाथ टैगोर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और गिजू भाई बधे का।
1: साथियों, आज हम बात करेंगे सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं शैक्षिक चिंतक गिजू भाई बधेका जी के, जो एक गुजराती लेखक और महान शिक्षा शास्त्री थे।
2: गिजू भाई बधेका का जन्म 15 नवंबर 1885 को गुजरात राज्य के सौराष्ट्र के चित्तल नामक गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गिजू भाई के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। उनके मन में बच्चों के प्रति अविरल स्नेह और गहरी संवेदना थी।
1: कहते हैं कि उनकी बचपन की शिक्षा बहुत पीड़ादायक थी। उन दिनों रटंत पद्धति का ही बोलबाला था। शिक्षा का अर्थ अक्सर पिटाई और बेंत खाना हुआ करता था। अपने बचपन की यातनापूर्ण शिक्षा का उनके बाल मन पर भारी प्रभाव पड़ा। बचपन की शिक्षा की इस पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाए।

0: हाँ तो बच्चों, कल मैंने तुम लोगों को डेढ़ का पहाड़ा सिखाया था और कहा था कि सबको याद करके आना है। याद किया है ना सबने? तो इसका मतलब हुआ किसी ने ठीक से याद नहीं किया है। बीजू, तुम सुनाओ।
1: जी मास्टर जी, मैंने कोशिश
0: कोशिश वोशिश मैं नहीं जानता, खड़े होकर सुनाओ।
1: जी जी, डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूना तीन।
0: अरे जल्दी जल्दी बोल, मेरी बेत भूल गया क्या?
1: जी जी जी, सुनाता हूँ। डेढ़ एकम डेढ़, डेढ़ दूनी।
0: तुम सबके लिए मेरी बेत ही ठीक है। इधर इधर आओ, सामने।
1: जी।
0: कान खोल कर सुन लो तुम सब, यदि कल ठीक से याद नहीं करके आए तो सबका इससे भी बुरा हाल करूंगा, समझे?

0: गिजू भाई ने अपनी औपचारिक शिक्षा समाप्त की और उच्चतर अध्ययन के लिए बंबई चले गए, जो आज मुंबई कहलाता है।
1: साथियों, उनके जीवन की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है जिसने उनका जीवन बदल दिया। गिजू भाई 1913 में पिता बने। बेटे के जन्म के तुरंत बाद जब इस युवा पिता ने अपने नवजात बेटे को गोद में उठाया, तब उनकी आंखों के सामने उनका अपना दारुण बचपन घूम गया। वो गहरी सोच में डूब गए और सोचने लगे।
2: एक प्रतिष्ठित परिवार के हर बच्चे की तरह मेरे बेटे को भी एक दिन स्कूल जाना होगा, और स्कूल जाने का मतलब है छोटी छोटी गलतियों के लिए रोजाना बेत की मार खाना। तो क्या ये भी उसी प्रकार मार खाएगा जैसी मार हमने खाई थी? मैं जानता हूं कि ये स्कूल जाएगा, लेकिन क्या मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए? नहीं, क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे बच्चे सीखें लेकिन बिना तनाव के, भय मुक्त होकर? इस पर जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। समाज को इस दिशा में कुछ करना ही होगा।
0: गिजू भाई ने 1920 में एक बाल मंदिर यानी विद्यालय की स्थापना की और वकालत छोड़कर पूरी तरह बाल शिक्षा को समर्पित हो गए। यहीं से शुरू हुए बाल शिक्षा पर उनके अनेकानेक शैक्षणिक अभिनव प्रयोग। वो पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों को सरल, सुगम और सरस बनाने पर बहुत जोर देते थे।
1: उन्होंने बच्चों के इंद्रिय विकास, शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति का अवलोकन, कथा वाचन और खेल आधारित शिक्षा जैसी गतिविधियों पर बल दिया। इस पद्धति से बच्चे हंसते खेलते आनंददायी गतिविधियों में भाग लेते हुए खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते थे।
0: इस बाल मंदिर में 2.5 वर्ष की आयु से लेकर 6 वर्ष की आयु के बालकों को प्रवेश दिया जाता था। गिजू भाई स्वयं इन बालकों के साथ रहकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। वो बालकों को ब्रह्म स्वरूप मानते थे, इसलिए अपने द्वारा स्थापित विद्यालयों को उन्होंने बाल मंदिर कहा।
1: सन 1922 में भावनगर के तख्तेश्वर मंदिर के पास उन्होंने एक और बाल मंदिर खोला, जिसका उद्घाटन महात्मा गांधी जी की धर्मपत्नी कस्तूरबा गांधी के कर कमलों से हुआ।
0: इसी भावनगर में उन्होंने देश के शिक्षकों के लिए प्रथम राष्ट्रीय मोंटेसरी सम्मेलन का आयोजन किया और शिक्षकों के लिए अध्यापन मंदिर या शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया। मोंटेसरी शिक्षा पद्धति को पूर्णतया आत्मसात करने के बाद उन्होंने उसके सिद्धांतों को भारतीय संदर्भ में पूरी तरह अपनाने का प्रयास किया।
1: एक बार किसी पत्रकार ने गांधी जी से गिजू भाई के बारे में कुछ लिखने को कहा, तब गांधी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा था,
3: गिजू भाई जैसे महान व्यक्ति के लिए कुछ लिखने वाला मैं कौन होता हूँ? शिक्षा के क्षेत्र में उनके कार्यों ने मुझे हमेशा मुक्त किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उनका ये महान कार्य आगे बढ़ चलेगा।
1: गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते थे, तो गिजू भाई को बाल शिक्षा के क्षेत्र में उनकी माता तुल्य करुणा और योगदान के कारण लोग उन्हें मोछाई माँ अर्थात मूछों वाली माँ भी कहते थे।
0: बच्चों को शिक्षा देने के बारे में गिजू भाई अक्सर कहा करते थे,
4: शिक्षक बंधु, कहानी बच्चों को रटाना नहीं, खूब रस ले लेकर अभिनय करके उन्हें कहानी समझाओ, उनसे प्रेम से बात करो, उन्हें हंसाओ। वो सिर्फ सूचनाओं से अबोध हैं, अज्ञानी नहीं है। यदि बच्चा सप्ताह में 5 दिन शिक्षक के साथ 5 या 6 घंटे बिताता है तो क्या उसे सच्चा प्यार और सम्मान नहीं मिलना चाहिए?
1: अपनी साहित्यिक कृतियों में उन्होंने भाषा, लिखावट, भूगोल, इतिहास और अन्य सभी विषयों के शिक्षण के लिए अनेक रोचक और सृजनात्मक विधियों को सविस्तार समझाया है। साथियों, आज हमारे बीच एक शिक्षक मौजूद हैं, श्री जीतेश कुमार जी, जिन्होंने गिजू भाई की शिक्षण पद्धतियों को अपनी कक्षाओं में अपनाया है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं।

0: किया है और मैं काम कर रहा हूँ, उनमें एक है नाट्य प्रधान पद्धति। हम सभी जानते हैं कि बच्चे भूमिका निर्वहन यानी रोल प्ले और नकल करना बहुत पसंद करते हैं।
1: जी।
0: तो नाटक और कहानी के द्वारा किसी भी कठिन संकल्पना या घटनाओं के क्रम को बड़ी ही आसानी से समझाया जा सकता है।
1: जी, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसके अलावा कोई और पद्धति है?
0: जी और है, एक है युगल और सहभागिता पद्धति।
1: युगल और सहभागिता पद्धति।
0: जी, इस पद्धति के बारे में जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है
1: जी,
0: वो ये है कि इसमें बच्चे समूह शिक्षण की अपेक्षा कम समय में सीखते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी, इसके अलावा एक पद्धति और है।
1: हाँ हाँ, बताइए।
0: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
1: प्रश्नोत्तरी पद्धति।
0: जी, इसमें बच्चों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाता है कि वो प्रश्न पूछें।
1: अच्छा।
0: और वो पूरे आत्मविश्वास से बेझिझक कक्षा में प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित करते हैं। जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो ये है कि इन सारी पद्धतियों को मिला करके जो सीखने का प्रतिफल है
1: जी,
0: वो बहुत ही शानदार है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो दोस्तों ये थे हमारे साथ जीतेश कुमार जी। तो जीतेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अहम जानकारी के लिए।
2: साथियों, अभी आपने गिजू भाई द्वारा बताई गई कुछ शैक्षणिक पद्धतियों के बारे में जाना। बाद में धीरे धीरे गिजू भाई के उसी शैक्षिक चिंतन पर आधारित विद्यालय गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर भारत के अनेक राज्यों में फैल गए और हजारों बच्चों को उनकी नूतन शिक्षण विधियों से दीक्षित किया जा सका।
1: गिजू भाई ने 100 से भी अधिक बालोपयोगी पुस्तकें लिखी। उन्होंने शिक्षकों के लिए भी पुस्तकें लिखी हैं। उनकी एक बहुचर्चित पुस्तक है दिवा स्वप्न। बाल शिक्षा के जगत में गिजू भाई की ये एक अनुपम कृति है। गुजराती भाषा में पुस्तक का पहला प्रकाशन सन 1931 में हुआ।
2: इस पुस्तक में गिजू भाई ने अपने शैक्षणिक प्रयोगों के बारे में बताया है, प्राथमिक शिक्षा की रूढ़िवादी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला है, बालकों में बढ़ रही शिक्षा के प्रति निरस्ता के कारणों की विस्तार से चर्चा की है। दरअसल वो रटंत शिक्षण पद्धति के विरुद्ध थे।
1: गिजू भाई के अनुसार,
3: शिक्षा सामाजिक परिवर्तन और विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। विद्यालयों को बाल विकास की एक प्रयोगशाला होना चाहिए जिसमें बालकों के विकास के अनुरूप संपूर्ण साधन और सामग्री हो, ताकि बालक स्वयं प्रयोग कर सकें और अनुभव प्राप्त कर सकें।
1: आदर्श शिक्षक होने के साथ साथ वो एक महान शिक्षाविद, चिंतक, विचारक और लेखक भी थे। चौवन वर्ष की आयु में 23 जून 1939 को शिक्षा के क्षेत्र में समर्पित इस कर्मठ और विलक्षण कार्यकर्ता का निधन हो गया।
2: उनके नाम पर कई शिक्षक सम्मान स्थापित किए गए हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले शिक्षकों को दिए जाते हैं। उन्हें शिक्षा समुदाय और हम सबका कृतज्ञतापूर्ण नमन।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गिजू भाई बधे का, एक विलक्षण शिक्षा शास्त्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनि अंकन मयंक कुमार और विकास सांगवान, कलाकार शिमाइला परवेज, प्रवीण शर्मा, असर नवाज उस्मानी, सुनील लोहिया और परवेज गौहर, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा निर्माण जगबंधु जाना।
5: श्रोताओं, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम गिजू भाई बधे का।

आइए अब सुनते हैं एक बेहद खूबसूरत गीत, जिसके द्वारा आप जान पाएंगे कि एक बच्चे के मन की भावनाएं क्या क्या हैं और वो अपने अभिभावकों और शिक्षकों से क्या अपेक्षा रखता है।

0: इस कार्यक्रम के बाद अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है, प्रस्तुत है कार्यक्रम रांची मेलोडीज। शुरुआत करते हैं फिल्म नैया के इस गाने से। आवाज यशुदास की है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में फिल्म सफर से ये गाना। इस गाने को लिखा इंदवर ने, धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

आइए सुनते हैं फिल्म दिलवाले से ये गाना। आवाजें कुमार सानू और अलका याग्निक की है, शब्दों में पिरोया है समीर ने, संगीतबद्ध किया नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम का आखिरी नगमा सुनते हैं फिल्म साजन की बाहों में। आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज है, समीर की रचना, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर झारखंड में नशा मुक्ति अभियान के तहत आज रांची की बापू वाटिका से अल्बर्ट एक्का चौक तक मादक पदार्थों के विरुद्ध जागरूकता मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मंत्री सुदिव्य कुमार ने जागरूकता मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उन्होंने युवाओं को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई, विजेताओं को पुरस्कृत किया और नशा मुक्ति में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों को सम्मानित किया। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। गुमला में उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने बैठक में संबंधित अधिकारियों तथा सीएसआर प्रतिनिधियों को दिव्यांगजनों के लिए बैटरी चालित व्हील चेयर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में बेंच डेस्क की कमी दूर करने तथा 26 नए आंगनबाड़ी केंद्रों में आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। मेदिनीनगर सदर थाना क्षेत्र के मेदिनीनगर पांकी मुख्य पथ स्थित पोखराहा चौक के पास सड़क दुर्घटना में करार निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। इससे गुस्साए लोगों ने आज पुलिस चौकी पर हमला कर जवानों के रहने के लिए लगाए गए टेंट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और गुजरात के सूरत में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत के बाद आज सरायकेला खरसावां जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र स्थित संबंधित पेट्रोलियम प्रोडक्ट कंपनी के बाहर मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने हंगामा किया। शव को लेकर धरने पर बैठे लोगों ने संबंधित कंपनी से मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।
2: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडीन और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान जगत। वाचन एवं सहयोग वसंत कुमार, प्रस्तुति प्रभु शरण की।

नमस्कार, विज्ञान जगत कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से उपस्थित हो चुके हैं हम। मैं हूं बसंत और आप सभी का स्वागत है विज्ञान जगत कार्यक्रम में। तो हर बार की तरह हम आज फिर से ढेर सारी नई रोचक जानकारी और तथ्यों को लेकर उपस्थित हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए क्या क्या नई जानकारी लेकर आए हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करने वाले हैं गर्मी में विद्युत उपकरणों का सावधानी से क्यों उपयोग करना चाहिए इसके बारे में। इसके बाद बारी होगी भेंटवार्ता की, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और चुनौतियों के बारे में। इसके बाद बारी होती है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पार्क्स के बारे में। इसके बाद बारी होगी खोज और आविष्कार की, जिसमें आज हम आपसे जानकारी साझा करेंगे स्टेनलेस स्टील का आविष्कार कैसे हुआ इसके बारे में। तो ये हमने आपको बता दिया कि आज के कार्यक्रम में हम आपसे किन किन विषयों पर बात करने वाले हैं और क्या जानकारी देने वाले हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गर्मी में विद्युत उपकरणों का सावधानी से क्यों उपयोग करना चाहिए इसके बारे में। हम अपने जीवन में विद्युत उपकरणों का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो हमारे जीवन को सुलभ बना सके और हमें सुविधा प्रदान कर सके। लेकिन जब यही चीज हम जैसे तैसे इस्तेमाल करने लगे और इनका रखरखाव ठीक से न करें तो ये उपकरण हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। गर्मी का मौसम आते ही सबसे पहले हम बिजली से चलने वाले उपकरणों का उपयोग करने के बारे में सोचते हैं और इसका इस्तेमाल काफी मात्रा में करने लगते हैं। पंखे, कूलर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, पानी की मोटर, चार्जर और अन्य तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हम दिन रात चलाते रहते हैं। ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही न केवल उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि आग लगने, शॉर्ट सर्किट और बिजली के झटके जैसी गंभीर दुर्घटनाओं का कारण भी बन सकती है। गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ने के कारण बिजली की तार और उपकरण अधिक गर्म हो जाते हैं। यदि वायरिंग पुरानी हो या उपकरण खराब स्थिति में

0: तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सभी विद्युत उपकरणों के नियमित जांच और रखरखाव बहुत आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि लोग एक ही मल्टीप्लग या एक्सटेंशन बोर्ड में कई उपकरण लगाकर एक साथ जोड़ देते हैं। इससे बिजली का भार बढ़ जाता है और तार गर्म होकर शॉर्ट सर्किट का कारण बन जाते हैं। इसलिए आवश्यकता के अनुसार ही उपकरणों का उपयोग करना चाहिए और ओवरलोडिंग करने से बचना चाहिए। एयर कंडीशनर, कूलर और रेफ्रिजरेटर जैसे उपकरणों की समय समय पर सफाई और सर्विसिंग करानी बहुत आवश्यक है। धूल जम जाने से इनकी कार्यक्षमता कम हो जाती है और बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। साथ ही उपकरणों के अधिक गर्म होने का खतरा भी बना रहता है। मोबाइल फोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। चार्जिंग पूरी होने के बाद चार्जर को बिजली के सॉकेट से निकाल देना चाहिए, लेकिन कई बार हम ऐसी चीजों को नजरअंदाज करते हैं और चार्जर को लगा हुआ छोड़ देते हैं, यानी चालू अवस्था में ही छोड़ देते हैं। इससे होता यह है कि बिजली उसमें निरंतर चलते रहती है और अनजाने में ही दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं। यदि किसी उपकरण से चिंगारी निकल रही हो या जलने की गंध आ रही हो या असामान्य आवाज भी आ रही हो तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए और किसी प्रशिक्षित तकनीशियन से उसकी जांच करवानी चाहिए। गर्मी के मौसम में पानी और बिजली का संपर्क भी खतरनाक साबित हो सकता है। गीले हाथों से कभी भी बिजली के स्विच या उपकरणों को न छुएं। पानी के मोटर, कूलर या अन्य उपकरणों का उपयोग करते समय ये बात ध्यान में रखें कि बिजली के तार सुरक्षित और सूखे हों। थोड़ी सी सावधानी हमें बड़ी दुर्घटनाओं से बचा सकती है। इसलिए गर्मी के मौसम में विद्युत उपकरणों का उपयोग समझदारी और सतर्कता से करनी चाहिए। तो ये हमने आपसे बातचीत कर ली कि गर्मी में विद्युत उपकरणों का सावधानी से हमें क्यों उपयोग करना चाहिए इसके बारे में। अब बारी भेंटवार्ता के, और भेंटवार्ता में आज हम जिस विषय की बात करने वाले हैं वो है मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और इससे जुड़ी हुई चुनौतियां। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ में है डॉक्टर अभिषेक आनंद और उनसे बातें कर रहे हैं प्रभु शरण।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रभु शरण आपका स्वागत करता हूं इस विशेष रेडियो कार्यक्रम में, जहां हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हम सभी के जीवन से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और उससे जुड़ी चुनौतियां। बदलते मौसम, बेमौसम बारिश, हीट वेव, तूफान, ये सब अब हमारे जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ऐसे में मौसम का सटीक पूर्वानुमान न केवल हमारी सुविधा का प्रश्न है, बल्कि यह कृषि या आपदा प्रबंधन, यातायात और आम जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें कौन सी तकनीकें काम करती हैं और किन चुनौतियों से जूझना पड़ता है मौसम वैज्ञानिकों को, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रांची मौसम विभाग के निदेशक और अनुभवी मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जी, जिनसे हम जानेंगे कि मौसम की दुनिया के पीछे कैसा चलता है विज्ञान और तकनीक का पूरा संसार। हम अभी अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार सर।
2: नमस्कार।
1: सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि मौसम पूर्वानुमान से क्या अभिप्राय है, इसका क्या मतलब है और इसके पीछे का जो विज्ञान है, जो सिद्धांत है, उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं।
2: देखिए, कोई भी जो पूर्वानुमान होता है उसका एक खास मकसद होता है, वो मकसद है प्लानिंग। पूर्वानुमान मतलब अगर पहले से आपको आइडिया हो गया है कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है, उसके हिसाब से आप अपना प्लानिंग करते हैं, गतिविधियां उसके हिसाब से आप अपने आप को थोड़ा सा ढालते हैं कि जो चुनौतियां आने वाली हैं उसको आप अच्छे से निपट पाएं। तो मौसम विज्ञान में भी यही है, मौसम पूर्वानुमान का मतलब हो गया कि मौसम आधारित आपको प्लानिंग करना है, क्योंकि मौसमी जो गतिविधियां हैं उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, बस उन गतिविधियों से जानकारी प्राप्त करके आप अपना प्लानिंग कर सकते हैं कि वो जो मौसमी गतिविधियां हैं, चाहे साइक्लोन हो, भारी बारिश हो, हीट वेव हो, कोल्ड वेव हो, तो जिससे आप जानकारी प्राप्त करके अपना जो काम है उसके हिसाब से कर सकते हैं, अपना प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से जो मौसम पूर्वानुमान है ये हर एक क्षेत्र में अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल रखता है। एक आम जन से लेके, किसान से लेके, विमान पतन से लेके, रेलवे से लेके, टूरिज्म से लेके, माउंटेनियरिंग से लेके, पिलग्रिमेज से लेके, जो भी आयाम हैं या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मौसम का एक रोल है। हमारा क्या क्लाइमेट होगा, क्या पहनावा होगा, क्या खान पीन होगा, कैसा मौसम रहता है, तो वो सब सारा कुछ जो है उससे हमारा क्लाइमेट बनता है और उससे हमारा जो रोजमर्रा का जीवन है वो भी प्रभावित होता है।
1: तो संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, हम या तो काम पर निकल रहे हैं, किसान अपने खेत में जा रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि अगर आप ट्रैवल में हैं या टूरिज्म

0: कहीं आप टूर कर रहे हैं तो हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है कि भाई मौसम कैसा है उसके अनुसार अपनी प्लानिंग करें। आम लोगों के लिए ये बात तो जरूरी है, लेकिन आम लोग ये नहीं जानते कि यह किस सिद्धांत पर इस पूर्वानुमान किया जाता है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं। कैसे आप लोग ये तय करते हैं कि आने वाला जो समय है या आने वाले घंटे में बारिश हो सकती है या मौसम में क्या बदलाव आ सकता है?
1: तो देखिए, एक इंस्ट्रूमेंटेशन का प्रिंसिपल है, जब तक आप किसी चीज़ को नापते नहीं आप उसके बारे में जानते नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको बुखार है तो आप थर्मामीटर से नापेंगे, आपकी हाइट क्या है तो आप उसको लेंथ में मेजर करेंगे, टेप से मेजर करेंगे कि कितना लेंथ है। उसी तरीके से अगर मौसम के बारे में जानना है, उसका क्या आगे में हो सकता है, तो उसके लिए अभी का मौसम जानना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो मौसम पूर्वानुमान एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, अभी की क्या स्थिति है उसके आधार पे हम लोग आने वाले दिनों में क्या स्थिति रहने की संभावना है। तो मौसमी पैरामीटर जिसमें प्रेशर, टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ में ही आप ह्यूमिडिटी भी जोड़ लीजिए, और साथ में रेनफॉल, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, क्लाउड कवर, तो ये सब जो बेसिक पैरामीटर्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, उसके आधार पर ही आप आने वाले समय में बता पाएंगे। तो ये सारे पैरामीटर्स पूरे विश्व भर में कलेक्ट होते हैं, अगर भारत की बात करें तो पूरे भारत भर में कलेक्ट होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटा, आप जो ज़मीन पे नाप रहे हैं उसको सतही हम लोग वेधशाला कहते हैं, जिसमें इंसान जाके ये सारे पैरामीटर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन आदमी नापता है। तो सतही वेधशाला हो गया, मैनुअल ऑब्जर्वेटरी हो गया। इसी में अगर ये ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा खुद ही नापा जा रहा है और डेटा भेजा जा रहा है, तो ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम हो गया, वेदर स्टेशन हो गया। तो जो मौसम बनता है वो लैंड, ओशन, एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन से बनता है। मतलब आप सीधे भाषा में समझिए कि जमीन, आसमान और आसपास में जो आपका कोई समुंदर है उससे कितनी दूरी है, क्या है, उस हिसाब से आपका जो मौसम है वो आपको देखने को मिलता है। इसीलिए आप देखते हैं जो कोस्टल इलाका होता है वो मॉडरेट वेदर सिस्टम रहता है, मतलब वहाँ जो टेम्परेचर है पूरे साल भर में बहुत ज़्यादा उसमें भिन्नता नहीं देखने को मिलती है। वही आप राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में टेम्परेचर गर्मी में 50 से ज़्यादा हो जाता है और ठंडों में नेगेटिव भी चला जाता है, तो कितनी भिन्नता है। जबकि आप ये कोस्टल सिटीज़ में देखेंगे तो ये भिन्नता नहीं देखने को मिलती है। तो आपको सब जगह नापना है, तो ज़मीन में हमने नाप लिया सतही वेधशाला ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से। आसमान में नापने के लिए हम लोग एक हाइड्रोजन बैलून छोड़ते हैं जिसमें सेंसर्स लगे हुए होते हैं, और ये जीपीएस के थ्रू हम लोग ट्रैक करते हैं। साथ में ये जो सेंसर का डेटा है हमारे अर्थ स्टेशन पे जो ऑब्जर्वेटरी है वहाँ पे एंटीना है, वहाँ पे वो डेटा पर सेकंड पे आता रहता है, तो कितना ऊपर जा रहा है और हर एक प्रेशर लेवल पे क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या विंड स्पीड है, क्या विंड डायरेक्शन है, ये सारे पैरामीटर्स आते हैं। और इनके आधार पे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर भी हम लोग निकाल पाते हैं, जिससे ये संभावना बताई जाती है कि आज गर्जन वज्रपात की क्या स्थिति बन रही है, ओलावृष्टि की क्या स्थिति बन रही है। और ये डेटा आपको एविएशन में भी यूज में आता है। साथ में रिमोट सेंसिंग में हम लोग रडार और सेटेलाइट का यूज कर रहे हैं, तो बैठे बैठे रडार से एक स्टेशन से आप, अगर एस बैंड रडार है तो 250 किलोमीटर, सी बैंड रडार है तो 150 किलोमीटर का एरिया को आप नाप सकते हैं। नापने का अर्थ हो गया कि जो बादल जो बन रहे हैं उन बादलों में कितना पानी है, कितना उसमें बर्फ के कण है, उस बादल के मूवमेंट किस दिशा में हो रही है, उसमें थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग करने का कितना पोटेंशियल है, तो इस हिसाब से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से 24 घंटा ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोग सेटेलाइट यूज करते हैं, जिसमें जियो स्टेशनरी सेटेलाइट जो होता है वो 24/7 आपको अर्थ को देख रहा होता है, खासकर भारत को देख रहा होता है जो INSAT 3D ने लॉन्च किए हैं। और फिर अगर हम लोग बात करें तो पोलर ऑर्बिटिंग सेटेलाइट भी होता है, तो इन सेटेलाइट की मदद से भी जैसे भारत को हम लोग स्कैन कर रहे होते हैं, और अलग अलग चैनल होते हैं, इंफ्रारेड चैनल 24 घंटे अवेलेबल होता है, और विजिबल चैनल दिन में अवेलेबल होता है, वाटर वेपर चैनल 24 घंटे अवेलेबल होता है। तो इन सब के मदद से जो डेटा हमको प्राप्त हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा। अब ये डेटा का क्या करेंगे, तो ये डेटा को हम लोग सुपर कंप्यूटर्स में डालते हैं। सुपर कंप्यूटर्स में डालते हैं इसलिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सघन डेटा होता है, और ये पूरे इंडिया का डेटा, अगर सिर्फ इंडिया का फोरकास्ट कर रहे हैं, रीजन का फोरकास्ट कर रहे हैं तो रीजनल डेटा हो गया, इसे वर्ल्ड का फोरकास्ट कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड का डेटा हो गया, तो डेटा की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और आप जानते हैं सेटेलाइट रडार का इमेज का भी साइज काफ़ी बड़ा होता है, तो ये डेटा काफ़ी सघन्य होता है। और इस डेटा को हम लोग सुपर कंप्यूटर में डालते हैं, सुपर कंप्यूटर में फिजिक्स के प्रिंसिपल लगे होते हैं, जैसे कि एयर पार्सल है, इसका मूवमेंट किस हिसाब से होगा, कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर कैसे होगा, कंजर्वेशन और मोमेंटम कैसे होगा, तो इस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि ये जो इक्वेशंस बनते हैं, जो फिजिकल और मैथमेटिकल इक्वेशन आप जिसको समझते हैं, तो उन इक्वेशंस में इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम समझ के ये डेटा इंटर की जाती है। और आप एक इजी भाषा में समझिए कि जैसे कैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं कि आप आगे के समय के लिए बता सकते हैं, तो उस हिसाब से हम लोग इसको आगे के समय के लिए कि अगले 12 घंटे में क्या होगा, अगले 24 घंटे में क्या होगा, अगले 36 घंटे में क्या होगा, 10 दिन में क्या होगा, तो अलग अलग रेंज का अलग अलग पूर्वानुमान होता है। शॉर्ट रेंज जो पूर्वानुमान है 3 दिन के लिए वैलिड होता है, मीडियम रेंज पूर्वानुमान है 10 दिन के लिए वैलिड होता है, एक्सटेंडेड रेंज 1 महीने के लिए होता है, सीजनल होता है 1 सीजन से लेकर साल भर तक का ये पूर्वानुमान देता है। तो ये जो मॉडल से जो हम को ये जो आउटपुट निकला है ये मॉडल गाइडेंस इसको कहते हैं। तो जैसे ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम हो गया एक मॉडल है, ECMWF एक मॉडल है, तो इस टाइप के जो मॉडल्स होते हैं, इसी तरह से आपने भारत फोरकास्टिंग सिस्टम अभी नाम सुना होगा, तो ये भारत का अपना मॉडल है जो कि 6 किलोमीटर के एरिया का मतलब 6x6 36 किलोमीटर का फोरकास्ट देता है। अभी तक जितने भी पुराने मॉडल थे वो 12x12 144 किलोमीटर या 9x9 81 किलोमीटर के देते थे, अभी ये भारत फोरकास्टिंग सिस्टम इंडिया का अपना है जो 6x6 मतलब 36 किलोमीटर का अगर स्क्वायर एरिया बोले तो उसके लिए फोरकास्ट वैलिड रहता है, तो इस हिसाब से पूर्वानुमान किया जाता है।
0: बहुत ही विस्तार में आपने बताया कि किस तरह से इस पूरे जो क्रम है, ये जो पूर्वानुमान का पूरा जो विज्ञान है वो किस तरह से इसमें इन्वॉल्व है और कितने सारे डेटास की जरूरत होती है, उसको एनालाइज किया जाता है कंप्यूटर के माध्यम से, फिर वैज्ञानिकों के द्वारा उसको देखा जाता है कि ये कितना मतलब सटीक है। इसकी सटीकता की अगर बात करें, विश्वसनीयता की बात करें, क्योंकि लोगों में एक आम धारणा है कि भाई मौसम है, इसके बदलने को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता कि मौसम क्या बदलेगा, कब कैसा करवट लेगा। तो अब जो ये पूरा विज्ञान है, मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान से संबंधित, इसको आप कितना सटीक मानते हैं, इसकी विश्वसनीयता को कितना सही मानते हैं?
1: देखिए, मीडियम रेंज फोरकास्ट जो 7 दिनों का होता है वो काफ़ी सटीक होता है, उसमें से भी अगर हम लोग बोले तो 5 दिन का बहुत सटीक होता है, जितना हम लोग कम आते हैं ना 3 दिन का और सटीक होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि स्टार्टिंग का जो 3 दिन का फोरकास्ट है, डे वन का फोरकास्ट है, वो 95% के आसपास में सटीक होता है। डे टू का फोरकास्ट है वो थोड़ा सा कम होते हुए 85-90 होता है। डे थ्री में आपको 80% के अप्रॉक्स में सटीक होता है। जैसे हम लोग दूरी बढ़ाते जाते हैं ना, क्योंकि आज के दिन में मौसम पूर्वानुमान सबसे चुनौतीपूर्ण विषय हो गया है, क्योंकि वेदर इतना डायनेमिक हो गया, क्लाइमेट चेंज के कारण वेदर इतना डायनेमिक हो गया है कि ऐसा नहीं हो सकता है ना कि हम लोगों ने आज फोरकास्ट दिया है और अगला फोरकास्ट 7 दिन बाद दें। एक ही दिन में हो सकता है कि मौसम बदलाव के कारण हमें शाम को अपडेशन करना पड़ता है कि हाँ हमने जो दिया था इस आधार पर दिया था, बट अभी बदलाव हो गया तो हम लोगों को भी चेंज करना पड़ता है। तो थोड़ा डायनेमिक तो एकदम हो गया है क्लाइमेट चेंज के कारण, इसमें चुनौतियां बहुत ज्यादा हो गई। आप इसीलिए देखिए कि एक तो डेटा का डेंसिटी इतना ज्यादा है और इतने सब जो अच्छे सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो इसमें लगाए जाते हैं, और फिजिक्स और इम्प्रूव हो रही है, डेटा का डेंसिटी मतलब ऑब्जर्वेशन आपका और डेंस हो रहा है, बट चुनौतियां अभी भी इसलिए है कि क्लाइमेट चेंज बहुत फास्ट है।
0: मतलब अगर हम इसको आसान भाषा में समझें तो मौसम का बदलना वो जितने डेटास होते हैं सिर्फ उन्हीं पर निर्भर नहीं होता है, ये जो क्लाइमेट चेंज वाला एक फैक्टर है वो भी कहीं ना कहीं इसमें जो है विघ्न डाले, या इसमें एक जो भी परिवर्तन आता है उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंजेस के फिर बहुत सारा पैरामीटर्स है। तो इसलिए ये कह सकते हैं कि आप लोगों के सामने चुनौतियां भी बहुत मतलब अधिक है।
1: आप इसी हिसाब से समझिए कि देखिए क्लाउड बर्स्ट की जो घटनाएं हैं हाल के सालों में बढ़ी हैं, तो ये बहुत लोकलाइज्ड फेनोमेना है, और ये फेनोमेना को पकड़ने के लिए आपको बहुत डेंस नेटवर्क चाहिए, ठीक है, और दूसरा आपको रडार का नेटवर्क पूरे भारत में चाहिए कि कोई भी कोना अछूता ना रहे, और तीसरा कि अगर आपने पूर्वानुमान भी कर लिया है तो उसका डिसिमिनेशन कितना फास्ट हो पाए, पब्लिक तक वो जानकारी कितना एडमिनिस्ट्रेशन के पास कितना जल्दी पहुंच पाए, क्योंकि थंडरस्टॉर्म या क्लाउड बर्स्ट के जो इवेंट होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता, कभी कभी आधा घंटा से 1 घंटा कहीं समय होता है, तो कितना जल्दी आप तैयार हैं कि उस चीज़ों से निपट पाए वो भी एक चुनौती बनी हुई रहती है। और साथ में हम लोग देखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो बहुत बड़ा चुनौती है, क्योंकि एक ही राज्य में आप देखिएगा कि पहले बिहार झारखंड एक ही था, झारखंड में इतना अच्छा बारिश हो रहा था, बिहार में बारिश नहीं हो रहा है, तो आप देखिए कि ये चुनौती इस हिसाब से हो गया है कि कभी कभार हम लोग थंडर स्टॉर्म पीरियड में देखते हैं या मानसून पीरियड में भी ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जिले के एक हिस्से में अच्छी बारिश हुई, दूसरे हिस्से में बारिश नहीं हुई। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि अब देखिए बादल तो गुजर रहा है, अब वो बादल यहाँ बारिश तो दिया है बट आगे बारिश नहीं दे रहा है, उसके और आगे दे रहा है। तो ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है। रडार से आप देख सकते हैं कि बादल में कितने बारिश होने की प्रॉबिलिटी है, बट वो बारिश यहीं पर होगा कि 10 किलोमीटर बाद होगा कि 50 किलोमीटर बाद होगा, ये अभी

0: भी चुनौती का विषय बना हुआ है।
1: जो मौसम पूर्वानुमान का क्षेत्र है इसमें काफी चुनौतियां भी हैं, और आपके माध्यम से हमने श्रोताओं को प्रयास किया है ये बताने का कि मौसम पूर्वानुमान का महत्व क्या है या किस तरह से आम जनजीवन से जुड़ा हुआ विषय है। तो श्रोताओं, आज के इस विशेष संवाद में हमने जाना कि मौसम पूर्वानुमान केवल बादलों को देख लेने या अनुमान लगा लेने भर की बात नहीं, बल्कि इसके पीछे है उन्नत तकनीक, वैज्ञानिक गणनाएं और निरंतर शोध। मौसम वैज्ञानिकों की जो मेहनत है और चुनौतियां कितनी बड़ी हैं, और अभिषेक जी आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं तक ये बात पहुंची, तो हमारे स्टूडियो में आकर काफी समय दिया इसके लिए, और मैं समझता हूँ हमारे श्रोता काफी लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे यहाँ आए।
2: तो अभी हम सुन रहे थे भेंटवार्ता में मौसम पूर्वानुमान की विश्वसनीयता और चुनौतियां क्या हैं इसके बारे में। इस विषय पर जानकारी दे रहे थे मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद, और उनसे बात कर रहे थे प्रभु शरण। तो इस भेंटवार्ता के बाद क्यों ना आपको एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुना दिया जाए। तो चलिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। इस गीत के बाद हम लौट कर आएंगे तो अपनी बातों को आगे जारी रखेंगे।

तो इस बहुत ही प्यारे से गीत के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का विज्ञान जगत कार्यक्रम में। और अब बारी है वैज्ञानिकों के बारे में बातचीत करने की। और आज हम जिस महान वैज्ञानिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर पार्क्स। आज हम आपको विज्ञान और आविष्कार की दुनिया के एक ऐसे महान व्यक्तित्व से परिचित करा रहे हैं जिनके एक महत्वपूर्ण आविष्कार ने आधुनिक औद्योगिक युग की नींव रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये महान वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर पार्क्स। इन्हें दुनिया का पहला व्यवहारिक कृत्रिम प्लास्टिक विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। अलेक्जेंडर पार्क्स का जन्म 29 दिसंबर सन 1813 को इंग्लैंड के औद्योगिक नगर बर्मिंघम में हुआ। उस समय इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा था और नए नए आविष्कार दुनिया को बदल रहे थे। बचपन से ही पार्क्स की रुचि विज्ञान, धातुओं और रसायनों में थी। इन्होंने पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त किया। युवावस्था में इन्होंने धातु उद्योग से जुड़े कार्यों में भाग लिया और यहीं से इनकी वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ। अलेक्जेंडर पार्क्स एक जिज्ञासु और प्रयोगशील व्यक्ति थे। हमेशा नई चीजों की खोज और पुराने तरीकों को बेहतर बनाने के प्रयास में लगे रहते थे। इन्होंने धातुओं को अधिक मजबूत और उपयोगी बनाने के लिए कई प्रयोग किए, विशेष रूप से इलेक्ट्रो प्लेटिंग तकनीक के।

में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में पार्क्स ने अपने इस नए पदार्थ को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। लोगों ने पहली बार देखा कि प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हुए बिना भी उपयोगी वस्तुएं बनाई जा सकती है। पार्किंसन के कंघियां, चाकू के हैंडल, बटन, सजावटी वस्तुएं और अन्य दैनिक उपयोग की कई सारी चीजें बनाई जा रही थी। हालांकि ये आविष्कार वैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, लेकिन व्यावसायिक स्तर पर इसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बाद में विकसित होने वाले सेलुलॉइड और अन्य आधुनिक प्लास्टिक इसी विचार से प्रेरित माने जाते हैं। इनके वैज्ञानिक सोच का मुख्य उद्देश्य लोगों के जीवन को आसान बनाना और उद्योगों को अधिक प्रभावी बनाना। ये हमेशा मानते थे कि विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य समाज की प्रगति और मानव जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यही कारण है कि इन्होंने लगातार प्रयोग किए और नए समाधान खोजने का प्रयास किया। 29 जून 1890 को अलेक्जेंडर पार्क्स का निधन हो गया, लेकिन इनके द्वारा किए गए कार्य आज भी विज्ञान और उद्योग जगत में याद किए जाते हैं। इन्हें आधुनिक प्लास्टिक का उद्योग अग्रदूत माना जाता है और इनका नाम विज्ञान के इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। अलेक्जेंडर पार्क्स का जीवन हमें ये प्रेरणा देता है कि नई सोच, निरंतर प्रयास और प्रयोग करने का साहस हमें महान उपलब्धियों तक पहुंचा सकता है। तो हमने आपको बताया कि अलेक्जेंडर पार्क्स कौन थे और इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया था इसके बारे में। अब बारी है खोज और आविष्कार की, और खोज और आविष्कार में हम आज आपको जानकारी देने वाले हैं स्टेनलेस स्टील का आविष्कार कैसे हुआ इसके बारे में। स्टेनलेस स्टील, जिसका उपयोग हमारे दैनिक जीवन से लेकर बड़े बड़े उद्योगों, अस्पतालों, रसोई घरों, भवनों और वैज्ञानिक उपकरणों तक में किया जाता है, ये धातु है स्टेनलेस स्टील। स्टील मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण धातु मानी जाती है, लेकिन साधारण स्टील की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उस समय उस पर आसानी से जंग लग जाती थी। जंग लगने से धातु कमजोर हो जाती थी और उसकी उपयोगिता भी कम हो जाती। वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसी धातु बनाने का प्रयास कर रहे थे जो मजबूत भी हो और जंग से सुरक्षित भी रहे। स्टेनलेस स्टील के आविष्कार का श्रेय मुख्य रूप से ब्रिटिश धातु वैज्ञानिक हैरी ब्रेयरले को दिया जाता है। इनका जन्म 1871 में इंग्लैंड के सेफील्ड नगर में हुआ, जो उस समय इस्पात उद्योग का प्रमुख केंद्र माना जाता था। सन 1913 में हैरी ब्रेयरली ने एक विशेष परियोजना पर काम शुरू किया। उस समय ब्रिटिश सेना को बंदूकों की नाल में होने वाले घिसाव और जंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा था। सेना चाहती थी कि ऐसी धातु विकसित की जाए जो अधिक समय तक टिकाऊ रहे। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए ब्रेयरली ने स्टील में विभिन्न तत्वों को मिलाकर प्रयोग करना शुरू किया। पाया कि जब स्टील में लगभग 12-13% क्रोमियम मिलाया जाता है तो धातु की सतह पर एक बहुत पतली और अदृश्य सुरक्षात्मक परत बन जाती है। ये परत ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर स्वतः बनती रहती है और धातु को जंग लगने से बचाती है। एक दिन इन्होंने अपने प्रयोगों में तैयार किए गए स्टील के कुछ नमूनों को प्रयोगशाला के एक कोने में छोड़ दिया। कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि अन्य नमूनों पर जंग लग चुकी है, लेकिन जिन नमूनों में क्रोमियम की मात्रा अधिक थी वो बहुत साफ और चमकदार बने हुए थे। यही आगे चलकर स्टेनलेस स्टील के आविष्कार का आधार बना। इस नई धातु को प्रारंभ में स्टेटलेस स्टील अर्थात जंग रहित स्टील कहा गया, लेकिन बाद में इसका नाम स्टेनलेस स्टील रख दिया गया। ये खोज धातु विज्ञान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुई। स्टेनलेस स्टील का आविष्कार केवल एक नई धातु की खोज नहीं थी, बल्कि ये उद्योग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक क्रांति साबित हुई। इसने रखरखाव की लागत कम की, उपकरणों की आयु बढ़ाई और अनेक क्षेत्रों में कार्य क्षमता को बेहतर बनाने का काम किया। तो हमने आपको बता दिया कि स्टेनलेस स्टील का आविष्कार कैसे हुआ और इसकी खोज दुनिया को कैसे बदली इसके बारे में, और आज हमने ढेर सारी जानकारी आपके साथ साझा कर ली, ढेर सारी बातचीत आपसे हो गई। और अब हमारे स्टूडियो की जो घड़ी है वो आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है, लेकिन जाने से पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप जिस भी मुकाम पर पहुंचने की कोशिश में हैं, आप लगातार मेहनत करते रहें ईमानदारी से, और मेहनत ही आपको आगे लेकर जाएगी, आप एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब आपसे लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम फिर से मिलेंगे नई रोचक जानकारी और तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान जगत। वाचन एवं सहयोग था बसंत कुमार का और प्रस्तुति थी प्रभु शरण की। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आइए श्रोताओं आज हमारे रांची केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से थोड़ी देर बाद यानी 4:35 पर आप सुनेंगे कुछ फिल्मी गाने। कार्यक्रम होगा सांझ सरगम। प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे शाम 5:00 और 5:02 पर आप सुनते हैं युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवानी। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता होंगे गौरव कुमार पांडे।

श्रमिक लोग, ये कार्यक्रम का वक्त होगा शाम 5:30, जिसमें आज चर्चा होगी शारीरिक गतिशीलता और संतुलन के लिए योग। मदन मोहन, शायरी को सुरों का अमर लिबास पहनाने वाले अमर संगीतकार। आपातकाल का दौर, लोकतंत्र की परीक्षा, संवैधानिक चुनौतियां और इतिहास के सबक, और पीएम व्यय वंदन योजना, सुरक्षित कल निश्चिंत जीवन। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी प्रशांत गौरव की, और शाम 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

0: शाम 6:02 का समय रहेगा कार्यक्रम किसान वाणी का। इस कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी संजीव कुमार लाल की। और 6:32 पर श्रोताओं, हम आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफ्ट क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण। और 11:10 पर हमारी सांध्यकालीन सभा का समापन होगा। कार्यक्रम संबंधी जानकारी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के रांची केंद्र से। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम सांझ सरगम।
1: कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निकल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: कार्यक्रम सांझ सरगम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रौनक जहां

का प्यार भरा नमस्कार। आज की पहली शुरुआत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत वीजू शाह का, फिल्म का नाम मोहरा।

प्रोग्राम की अगली पेशकश आंखें फिल्म से, बोल साहिल लुधियानवी के तर्ज रवि की और आवाज लता मंगेशकर की।

0: याद कभी कभी।
1: इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सांझ सरगम आकाशवाणी के रांची केंद्र से मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर।

0: जोकर।
1: राजा हिंदुस्तानी, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, जिसे लिखा था समीर ने और संगीत से सवारा था नदीम श्रवण ने, और आवाजें थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। और अब कार्यक्रम के आखिरी सफर में आइए सुने मोहम्मद रफी की आवाज में ये दिलकश नगमा, शकील बदायूनी के शब्द, रवि की तर्ज, फिल्म का नाम उम्मीद।

इसी गीत के साथ ही श्रोताओं, कार्यक्रम सांझ सरगम अब खत्म होता है। अगली मुलाकात तक के लिए अपनी दोस्त रौनक जहां को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। आइए सुने प्रादेशिक मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन अब राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से अगले महीने की 10 तारीख तक किए जा सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हर वर्ष उन शिक्षकों को दिया जाता है जिन्होंने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और समर्पण का परिचय दिया है। धनबाद के आईआईटी आईएसएम में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत खनन अभियंत्रण विभाग द्वारा संचालित सहायक खान सर्वेक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल प्रतिभागियों को स्किल सर्टिफिकेट प्रदान किया गया। संस्थान के उपनिदेशक डॉ. धीरज कुमार ने बताया कि संस्थान का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण देना नहीं बल्कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना भी है। गुमला में 30 जून से 29 जुलाई तक चलने वाले विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम SIR के संबंध में आज गुमला नगर परिषद कार्यालय सभागार में कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय पार्टी द्वारा नामित BLA2 को PPT के माध्यम से विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया। जिला उद्योग केंद्र लोहरदगा के सभागार में आज रैप योजना के तहत महिला उद्यमियों के नेतृत्व क्षमता और कार्यकुशलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक दिवसीय कार्यशाला सह जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक रघुवर सिंह ने महिलाओं को स्वरोजगार तथा आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। और देवघर में उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बिरसा कृषि रथ 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह रथ गांव गांव जाकर किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देगा। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलोहर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुने युवा श्रोताओं को संबोधित हमारा दैनिक कार्यक्रम युवानी।

0: हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पॉजिटिविटी से भरे होंगे और अपने मन पसंदीदा कार्यक्रम का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो आ जाइए अपनी रेडियो के करीब, क्योंकि हम लेकर आए हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त अंकिता,
1: और मैं हूँ आपकी दोस्त तरनजीत।
0: आप सभी को हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: तो श्रोताओं, आज 25 जून है और यह हमें भारतीय लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण अध्याय की याद दिलाता है।
1: बिल्कुल अंकिता, 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लागू किया गया था। इस दौरान मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए गए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्रभावित हुई।
0: और तरनजीत, संविधान हमें स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार देता है, इसलिए यह दिन हमें संविधान के महत्व और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के प्रति जागरूक करता है।
1: और अंकिता, हमारा संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है, यह देश के प्रत्येक नागरिक के अधिकारों, कर्तव्यों और आकांक्षाओं का आधार है। यह हमें समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व का मार्ग दिखाता है।
0: लेकिन तरनजीत, अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी आती है। एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में हमें संविधान का सम्मान करना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, साथ ही यह भी याद रखना आवश्यक है कि मानव अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा भी है।
0: बिल्कुल, एक सशक्त राष्ट्र वही होता है जहां संविधान के आदर्श, लोकतांत्रिक संस्थाएं और राष्ट्रहित तीनों के बीच संतुलन हो।
1: बिल्कुल, संविधान हत्या दिवस हमें अतीत की घटनाओं से सीख लेने, लोकतंत्र को मजबूत बनाने और संवैधानिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने का अवसर देता है।
0: आइए हम सभी संकल्प लें कि संविधान की गरिमा, लोकतंत्र की मजबूती और राष्ट्रहित को सदैव सर्वोपरि रखेंगे। संविधान का सम्मान करें, लोकतंत्र को सशक्त बनाएं।
1: बिल्कुल दोस्तों, और आइए इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: तरनजीत, अक्सर लोग संविधान को सिर्फ एक मोटी सी किताब समझते हैं, लेकिन क्या ये सिर्फ नियमों का संग्रह है?
3: बिल्कुल नहीं। अगर संविधान केवल किताब होता तो शायद साल बाद भी उतना ही प्रासंगिक रहता। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है पता है? कि यह समय के साथ खुद को बदलने और समाज की जरूरतों के अनुसार ढालने की क्षमता रखता है।
2: यानी संविधान बदलता भी है लेकिन अपने मूल सिद्धांतों को छोड़े बिना।
3: बिल्कुल अंकिता, सोचिए आज डिजिटल पेमेंट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन शिक्षा और डेटा प्राइवेसी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन संविधान के मूल्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता आज भी वही है, लेकिन समय के साथ उनकी नई परिस्थितियों के अनुसार व्याख्या की गई है।
2: तरनजीत, यही तो संविधान की सबसे बड़ी ताकत है, यह परंपरा और परिवर्तन दोनों के बीच संतुलन बनाकर चलता है।
3: बिल्कुल, और यही वजह है कि संविधान में अमेंडमेंट्स की व्यवस्था भी रखी गई है। अगर भविष्य की जरूरतें बदले तो संविधान भी लोकतांत्रिक तरीके से स्वयं को बेहतर बना सके।
2: लेकिन क्या संविधान सिर्फ सरकार और अदालतों के लिए है?
3: बिल्कुल नहीं अंकिता, संविधान हर नागरिक का भी मार्गदर्शक है। यह हमें सिर्फ अधिकार नहीं देता बल्कि कर्तव्यों की याद भी दिलाता है। जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझते हैं, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है।
2: यानी संविधान सिर्फ संसद की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबकी साझा जिम्मेदारी है।
3: बिल्कुल, संविधान को जीवंत बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है उसके मूल्यों को अपने व्यवहार में उतारना। चाहे वह समानता का सम्मान हो, दूसरों की स्वतंत्रता का आदर हो या कानून का पालन करना।
2: संविधान केवल देश को चलाने का दस्तावेज नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक भी है।
3: और शायद यही कारण है कि पूरी दुनिया भारत के संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखती है जो समय के साथ बदलते भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है।
2: तो आइए हम सभी संविधान को केवल परीक्षा का विषय नहीं बल्कि अपने जीवन का मूल्य बनाएं।
3: बिल्कुल दोस्तों, और दोस्तों आज 25 जून है और हर दिन अपने आप में कई कहानियां समेटे होता है, तो आइए जानते हैं कि आज इतिहास में 25 जून क्यों विशेष माना जाता है। तो सबसे पहले 25 जून 1975 को देश में आपातकाल की घोषणा हुई थी। यह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना रही है जिसने नागरिक अधिकारों, प्रेस की स्वतंत्रता और संवैधानिक व्यवस्थाओं पर व्यापक चर्चा को जन्म दिया है।
2: साथ ही 25 जून 1983 में भारत ने क्रिकेट विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। कप्तान कपिल देव के नेतृत्व में भारत ने मजबूत वेस्टइंडीज टीम को हराकर पहली बार विश्व कप को अपने नाम किया।
3: और दोस्तों वर्ष 2009 में भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी INS अरिहंत को समुद्र में उतारा गया था। यह भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी।
2: अब बात करते हैं विश्व की, तो वर्ष 1999 में आज ही के दिन स्लोवेनिया और क्रोएशिया ने यूगोस्लेविया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी। इस घटना ने यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बड़े बदलाव की शुरुआत की।
3: और दोस्तों साथ ही विज्ञान और संचार के जगत में भी यह दिन महत्वपूर्ण है। 25 जून 1967 को दुनिया का पहला वैश्विक लाइव सैटेलाइट टेलीविजन कार्यक्रम आर वर्ल्ड प्रसारित किया गया था। कला और संगीत जगत के लिए भी यह दिन यादगार है। 25 जून 2009 को विश्व प्रसिद्ध गायक माइकल जैक्सन का निधन हुआ था।
2: उन्हें किंग ऑफ पॉप कहा जाता था और उनका संगीत आज भी पूरी दुनिया में लोकप्रिय है।
3: और दोस्तों साथ ही वर्ष 1950 में आज ही के दिन कोरियाई युद्ध की शुरुआत हुई थी। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच शुरू हुआ ये संघर्ष शीत युद्ध के दौर की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ आज से जुड़ी विशेष घटनाएं। आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: और दोस्तों, अब आपकी और हमारी दोनों की जानकारी को बढ़ाते हुए आइए जानते हैं कुछ करंट अफेयर्स। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में एडिनबर्ग के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में महर्षि सुश्रुता की 90 kg वजन कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। और इसी के साथ फ्रांस अपने पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर के ऐतिहासिक उद्घाटन करने जा रहा है और यह सितंबर 2026 में होना तय है। इसी के साथ दोस्तों, हमारी लोकप्रिय हरमनप्रीत कौर 200 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी।
1: अर्जेंटीना के फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेसी इतिहास

0: इसके ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 6 फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया है।
1: और दोस्तों, न्यू दिल्ली में आयोजित पहले इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड्स 2025 समारोह में ओलंपिक पदक विजेता जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को बेस्ट मॉल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। और इसी के साथ ही वर्ल्ड बैंक ने हरियाणा जल संरक्षित वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट को 400 करोड़ लोन को स्वीकृति दी है। और दोस्तों, इसी के साथ आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य।
0: तो दोस्तों, पहला अमेजिंग फैक्ट तो सबने नोटिस किया होगा कि जब हम बोर होते हैं तो हमें समय धीरे धीरे चलता हुआ लगता है, लेकिन जब हम खुश होते हैं तो दिमाग समय को कंप्रेस कर देता है, इसलिए अच्छा वक्त जल्दी बीत जाता है।
1: तो अंकिता, और कुछ और अमेजिंग फैक्ट्स की बात करें?
0: बिल्कुल। तो दूसरा अमेजिंग फैक्ट स्पोर्ट्स लवर के लिए काफी रोचक होगा, खासकर जिन्हें बास्केटबॉल खेलने में दिलचस्पी है। दोस्तों, बास्केटबॉल जैसा खेल में प्लेयर सिर्फ मसल से नहीं, पेरिफेरल विजन से जीतते हैं, यानी आंखों के किनारों से देखने की ताकत उनका सबसे बड़ा वेपन होता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियाँ पसंद आई होंगी। और आइए इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत और फिर वापस बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में।

0: दोस्तों, बातें तो आपसे और भी करनी थी, पर फिलहाल हमारा समय हो चला है समाप्त। आपसे फिर मुलाकात करेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त तरनजीत
1: और अपनी दोस्त अंकिता
0: को इजाजत।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे युवाओं का कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी कराची केंद्र है। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर प्रस्तुत है कार्यक्रम श्रमिक लोक।

0: नमस्कार जोहार, मैं रंजना आप सभी का स्वागत करती हूँ आपकी अपनी कार्यक्रम श्रमिक लोक में। और आज हमारे साथ हैं दीपा। दीपा, तुम्हें भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार रंजना, और सभी सुनने वाले को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज के श्रमिक लोक कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारियाँ और कुछ मनोरंजक गीत। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक गतिशीलता के संतुलन बनाए रखना बहुत ही मुश्किल है।
0: हाँ, बहुत अच्छी बात कही। इस मुश्किल को योग अपनाकर सहजता से संतुलन बनाया जा सकता है। लंबे समय तक बैठकर काम करने, मोबाइल और कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग के कारण शरीर की लचक, संतुलन और सक्रियता प्रभावित हो रही है।
1: योग एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी उपाय है जो शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने में मदद करता है। योग के नियमित अभ्यास से मांसपेशियां मजबूत होती है, जोड़ों में लचीलापन के आता है और शारीरिक कार्य क्षमता बढ़ती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं रंजना, योग करके हम अपनी जो शारीरिक कमजोरी है उसे दूर कर सकते हैं, कार्य क्षमता बढ़ा सकते हैं और सबसे बड़ी बात है कि शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। रोग शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी बढ़ती है।
0: हाँ, और ऐसे भी कहा भी गया है ना कि शरीर अगर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो सबसे पहला तो आदमी ध्यान देता है ना कि एक जो है योग जो है एक सरल, सुरक्षित और प्रभावी उपाय है। इसे तो हम जानते ही हैं। और कुछ योगासन हम आपको बताते हैं जो विशेष रूप से संतुलन और गतिशीलता बढ़ाने में

0: मददगार है, जैसे कि आप वृक्षासन करें, ताड़ासन, त्रिकोणासन, वीरभद्रासन और मर्जरी, व्याघ्रासन। इनमें से वृक्षासन जो है ना, वो शरीर और मन दोनों को संतुलन बढ़ाता है, यह एकाग्रता में भी सुधार करता है।
1: इसी तरह त्रिकोणासन शरीर के विभिन्न हिस्सों में खिंचाव लाकर लचीलापन बढ़ाता है और रक्त संचार को बेहतर बनाता है। योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है, यह मानसिक शांति, तनाव नियंत्रण और आत्मविश्वास बढ़ाने में भी मदद करता है।
0: हाँ साथियों, योग करना है, पर एक बात का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि योग हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार करें, और यदि कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। शुरुआत आसन जो अभ्यास से ही करना शुरू करें और नियमितता बनाए रखें। नियमित रोज आप कम से कम 20 से 30 मिनट का योग सकारात्मक बदलाव आपका ला सकता है। ऐसा ना हो कि आप आज 4 दिन कर लिए, फिर 2 दिन छोड़ दिए, तो ये आप ऐसा मन में आएगा कि अरे कोई फायदा नहीं है। लेकिन नहीं, इसे आपको नियमित करना है, तो फिर आप देखिए आपको अपने आप में अच्छे महसूस होगा।
1: बिल्कुल, और स्वस्थ रहें, सक्रिय रहें और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इसी संदेश के साथ हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हिंदी सिनेमा के उस महान संगीतकार की, जिन्होंने शायरी को सुरों का अमर लिबास पहनाया और उनके धुन आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं, और हम उनके बारे में आगे भी बात करेंगे। लेकिन अभी समय है हमारे आज के खास मेहमान से बातचीत करने का, तो आइए हम हमारे मेहमान से जानते हैं कि किस प्रकार हुनरमंद हाथ विकास का साथ दे रहे हैं। और हमारे जो आज के मेहमान हैं वो है एलबी शास्त्री, जिनसे बातचीत कर रही हैं पूजा।
2: आपके साथ आपकी दोस्त पूजा, और आज का विशेष जो बातचीत है वो हमने रखा है हुनरमंद हाथ प्रगति की रफ्तार। बीते 12 वर्षों में भारत ने स्किल इंडिया मिशन से लेकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तक कई बड़ी पहल देखी है। उद्देश्य साफ था, युवाओं को सिर्फ डिग्री नहीं हुनर देकर आत्मनिर्भर बनाना। आज हम जानेंगे कि इन नीतियों ने जमीनी स्तर पर क्या बदलाव लाया है। हमारे आज के गेस्ट आज हमारे साथ है श्री एलबी शास्त्री जी, एक्स रीजनल डायरेक्टर राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। तो चलिए सबसे पहले हमारे गेस्ट का स्वागत करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत।
3: धन्यवाद मैडम।
2: पिछले 12 सालों में जो स्किल इंडिया मिशन जैसी योजनाओं की जो सबसे बड़ी उपलब्धि, आपकी नजर में आप क्या मानते हैं, क्या गांव कस्बे तक इसका असर पहुंच पाया है?
3: बहुत सारगर्भित प्रश्न है आपका। ये कौशल विकास की जो अवधारणा पिछले 12 सालों से संपूर्ण भारत में चलाई जा रही है, उसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य था कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो हुनरमंद कारीगर ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं, असंगठित क्षेत्र में भी हैं, उनको अभी तक कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला था। उनके अंदर में बहुत सारे ऐसे इंडिजिनियस क्वालिटी हैं जिसको कि अभी तक पहचाना नहीं गया था। तो निश्चित रूप से पिछले 12 सालों में इस क्षेत्र में बहुत काम हुआ है, लेकिन यहाँ एक चीज जरूर है कि जो अपेक्षित उत्साह नवयुवकों में, या कह सकते हैं कि जो प्रोडक्टिव वर्किंग क्लास है, उसमें लाने में अभी भी बहुत कुछ काम करने की आवश्यकता है। और उसमें एक सबसे दिक्कत आ रही है कि लोगों के अंदर में सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति जो है अभी थोड़ा सा उसमें को और काम करना चाहिए विभिन्न माध्यमों से, ताकि वो अपने हुनर को पहचान सकें, विकसित कर सकें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स उसको जोड़ सकें।
2: बिल्कुल, ये हेजिटेशन क्यों है?
3: हेजिटेशन सीखने के प्रति है। सीखना एक ऐसी चीज है जो कि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है मैडम। लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस जो होता है, आदमी की सीखने की कोई उम्र सीमा नहीं है। मैं यहाँ उद्धृत करना चाहूंगा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के उस कथन को, उन्होंने अपने आत्मकथा में लिखा है कि मैं जीवन के 78वें वर्ष में भी कुछ सीख रहा हूँ। एक ऐसा आदर्शवादी वाक्य लगता है, लेकिन ये एक हमको एक अपने हैबिट में इनकलकेट करना चाहिए। हम नए स्किल को, नई चीजों को कैसे आत्मसात करें, उसमें एक और कारण होता है। हेजिटेशन की बात कही, अभी आप देखिएगा कि जीवन के हर क्षेत्र में लोग कहने के आदि हो गए हैं, सुनने के नहीं। लिसनिंग कैपेसिटी जो है इतना डिटोरिएट कर रही है, जिसके चलते हम अपग्रेड नहीं कर पा।
2: पहले जो नौकरी का मतलब हम जो समझते थे सरकारी जी, या प्राइवेट कंपनी में काम
3: जी,
2: करना
3: जी,
2: क्या कौशल विकास ने युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप की तरफ भी मोड़ा है?
3: निश्चित रूप से इसमें आपका बहुत, ये इसमें बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स भी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, कि इन 12 वर्षों में बहुत लोगों को का स्किल को अपग्रेड करके उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है। और इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत आई है जो कि मैंने पहले भी कहा कि लोग थोड़ा सा इसमें पर्सनल इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं और के अंदर के स्किल को जो आइडेंटिफाई करने की बात थी उसमें, जैसे मान लीजिए स्किल डेवलपमेंट का बहुत सारा कार्यक्रम सरकार ने चलाया लेकिन उसमें के रुचि के हिसाब से उन्होंने अपने स्किल को नहीं चुना, इसके चलते थोड़ा सा अपेक्षित परिणाम आना चाहिए था वो नहीं आया। लेकिन इसमें जैसे आपने एक चीज कहा कि सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र में नौकरी की जो संभावनाएं हैं, आप समझ सकते हैं कि हमारे भारत प्रोडक्टिव क्लास है, वर्किंग क्लास आप जिसको कह सकते हैं, बेरोजगार कह सकते हैं, उनके अंदर में अपार क्षमता है। लेकिन सरकारी क्षेत्र में सभी को नौकरी मिले ये संभव नहीं है। इसीलिए पिछले 10-12 साल से खास करके जो वर्तमान सरकार है हमारी, उनका प्रयास है कि हम नौकरी करने की भावना को कैसे एंटरप्रेन्योरशिप एटीट्यूड में उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करें, यानी हम नौकरी पाने की लाइन में खड़ा नहीं हो बल्कि कुछ इस तरह से अपने को अपग्रेड करें कि हम नौकरी दे सकें, कुछ लोगों को हम इम्प्लाई कर सकें। उद्यमिता विकास की जो भावना है ये हमारे जो अनयूटिलाइज्ड वर्कफोर्स है उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है और जो हमारी बेरोजगारी है उसके लिए हमको सिर्फ सरकारी नौकरियों और निजी क्षेत्र के या कॉरपोरेट सेक्टर की नौकरियों पर आश्रित नहीं रहना।
2: योजनाओं में अगर बात करें महिलाओं की भागीदारी की, ज्यादातर देखा गया है कि सिलाई बुनाई ब्यूटिशियन जैसे कामों पे ज्यादा रुचि दिखाती, लेकिन क्या नए क्षेत्र में उन्होंने कुछ अलग सीखने की प्रयास किया है?
3: एकदम आपका बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है मैडम। अभी तक हम लोग एक पारंपरिक जो महिलाओं से जुड़ी हुई चीजें थी जैसे सिलाई बुनाई और ये सब एक ट्रेडिशनल टाइप, कुछ सारे ऐसे एरियाज हैं जहां महिलाओं ने अपने हुनर को विकसित करके एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए या खास करके टेक्निकल एजुकेशन में, इवन अदर एरियाज जैसे आप कह सकते हैं कि डिफेंस सेक्टर में, पुलिस डिपार्टमेंट में, प्रशासनिक क्षेत्र में जो महिलाओं का क्षेत्र बहुत कम हुआ करता था उनको हम घर के चार दीवारी तक ही सीमित। जैसे आप सिलाई बुनाई की जो बात आपने कही इसका एक बेसिक फंडा क्या था कि आपको घर के अंदर में ही रह के काम करना है। लेकिन खुला आयाम दिया गया है, खुला आकाश दिया गया है और महिलाओं को जो उचित स्थान सामाजिक आर्थिक प्लेटफॉर्म पे दिया जा रहा है उससे वो अपने को हर एरिया में एडजस्ट कर रही है। आप देखिए न्यायालय में जाइए तो आपको अधिक से अधिक महिला अधिवक्ताओं की संख्या मिलेगी, ये क्या करता है, महिलाओं ने अपने कार्य क्षेत्र को काफी एक्सटेंड किया है।
2: बिल्कुल। श्रमिकों की कार्य कुशलता से क्या आप अभिप्राय रखते हैं? साथ ही भारत सरकार द्वारा कौशल विकास द्वारा श्रमिक कार्य कौशलता में कैसी वृद्धि की जा सकती है?
3: कार्य कुशलता में वृद्धि की जहां तक बात है मैडम, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से सीख के पैदा नहीं होता। बहुत सारे ट्रेड्स हमारे जन्मजात होते हैं लेकिन उसको विकसित करने से हम बहुत नए नए क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। जहां तक सीखने और सिखाने की बात है, जैसे अब स्किल, अब इसमें एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा कि रोल ट्रेनिंग का भी होता है। तो ट्रेनिंग प्रशिक्षण से व्यक्ति के अंदर में एक गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है, तो उसमें बहुत सारे बिहेवियरल साइंटिस्ट ने अपने विचार रखे हैं, इस पर बहुत सारे रिसर्चेज हुए हैं और सबका निष्कर्ष यही होता है कि जब हम किसी ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहां तीन चीजों वृद्धि की अपेक्षा की जाती है। पहला तो हमारा नॉलेज अपग्रेडेशन होता है, स्किल इंप्रूवमेंट होता है। जिस ट्रेड में हम काम कर रहे हैं उस स्किल ओरिएंटेड अगर ट्रेनिंग में हम जा रहे हैं तो उसमें हम लेटेस्ट जो अपडेट्स है उससे अपने को हम इम्बाइव करते हैं। और तीसरा, हमारे अंदर में जो बहुत नकारात्मकता है, चाहे शुरू से हो या बाद में हो, निगेटिविटी जो है उसके चलते भी हम नई चीजों को नहीं सीख पाते। लर्निंग में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है, जैसे शुरू में भी हम लोगों ने इस चीज पर कहा, ट्रेनिंग में जाने से हमारे अंदर में बहुत सारे जो नकारात्मकता है उसमें हमारा जो एटीट्यूड है वो थोड़ा पॉजिटिव होता है और धीरे धीरे अगर हम ट्रेनिंग के इम्पोर्टेंस को समझें, रीट्रेनिंग में जाएं, तो हमारे अंदर मैक्सिमम लेवल तक निगेटिविटी खत्म तो नहीं होगा लेकिन एक डिजायरेबल लेवल का पॉजिटिविटी हमारे अंदर में आएगा। नॉलेज तो एक कॉमन फैक्टर है कि आप जब भी ट्रेनिंग में जाएंगे तो कुछ लेटेस्ट अपडेट आपको मिलेंगे, लेकिन अगर कुछ ट्रेनिंग ऐसा होता है जो सिर्फ स्किल ओरिएंटेड होता है, हम जिस ट्रेड में काम कर रहे हैं उसके लेटेस्ट डेवलपमेंट से हमको अपडेट किया जाता है। और एक होता है एटीट्यूडनल ट्रेनिंग, तो एटीट्यूडनल ट्रेनिंग इतना इंपॉर्टेंट है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेड, जैसे मैं जिस विभाग में 32-33 साल की सेवा हमने ने दी उसमें एटीट्यूडनल डेवलपमेंट इन डिफरेंट स्फीयर इरिस्पेक्टिव ऑफ ग्रेड हायरार्की, इसी बिंदु पर हम लोग प्रशिक्षण देते थे कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं लेकिन सभी में एक कॉमन फैक्टर जो एटीट्यूड डेवलपमेंट के या पॉजिटिव एटीट्यूड, जिसको अभी हम लोग एक नया टर्म दे रहे हैं सॉफ्ट स्किल इंप्रूवमेंट, इनरिचमेंट ऑफ सॉफ्ट स्किल, तो उसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी क्षेत्र में काम करते हुए भी एक ऐसे सही ढंग से समन्वय स्थापित करें और अपने संस्थान के या अपने राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त कर सके।
2: कौशल विकास की अगर बात करें तो कौशल विकास में सकारात्मक मनोवृत्ति विकास की क्या भूमिका होती है?
3: इसमें सकारात्मक मनोवृत्ति सबसे पहले जन्मजात हमारे अंदर में बहुत सारे

0: ऐसे ट्रेट्स होते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों को देखिएगा कि वो अपने हॉबीज को डेवलप नहीं, बहुत सारे उनके अंदर में, जैसे मान लीजिए कोई एक टेक्नोक्रेट, लेकिन आप देखिएगा कि टेक्नोक्रेट होने के साथ साथ उसकी गायन क्षमता बहुत अच्छी है, मतलब डाइवर्जेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर वो अपने हॉबी के द्वारा डेवलप करता है, तो एक टेक्नोक्रेट में अगर हम एक अच्छे लिरिसिस्ट या एक अच्छे सिंगर को ढूंढ लेते हैं, तो ये आप समझ सकते हैं हर व्यक्ति में हर विधा है, और स्किल इंप्रूवमेंट के द्वारा उसके अंदर के प्रॉपर स्किल आइडेंटिफाई कर करके फॉर्म दे करके आगे बढ़ा सकते, उसी को आज हम लोग कहते हैं मल्टी स्किलिंग। मल्टी स्किलिंग क्या है? अगर एक मान लीजिए राजमिस्त्री है, उससे हम सिर्फ राजमिस्त्री का काम करा रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छा वेल्डर भी बन सकता है, एक अच्छा मैशिनिस्ट भी बन सकता है, वो चीज को विकसित करना ही मल्टी स्किलिंग है। एटीट्यूड में एक पॉजिटिविटी नहीं आएगी, हम इसको एक सकारात्मक तरीके से नहीं लेंगे, तब तक हम स्किल डेवलपमेंट का जो मिशन है, इट इज जस्ट ए मिशन, इट्स नॉट ए एक्टिविटी, वो हम उसको अचीव कर सकते, इसमें हम धीरे धीरे, मतलब वो कह सकते हैं ना कि साइलेंट चेंज के द्वारा हम इसको अचीव कर सकते।
1: वर्तमान समय की बात करें तो बहुत सारे ऐसे बेरोजगार युवा और युवतियां हैं, उन्हें कैसे उद्यमिता विकास की भावना के साथ जोड़ा जा सकता है और उनका कैसे विकास किया जा सकता है?
0: आपने बहुत सही बात कही कि हमारे खास करके आर्थिक गतिविधियों में माना जाता है कि 18 साल से 35 साल का जो एज ग्रुप होता है उसको मोस्ट प्रोडक्टिव एज ग्रुप माना जाता है, और अपने देश में अगर हम अपने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारों की संख्या 18 से 35 साल में ही है, और इस 18 से 35 साल के एज ग्रुप के लोगों को, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, अब तो हम जब समान अवसर दे रहे हैं तो यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि लड़का को ज़्यादा बढ़ाना है, अगर हमको तो दोनों को एक तराजू पर रखना है, तो वो इनके अंदर में जो प्रोडक्टिविटी है उसको अगर हम सेपिंग नहीं करेंगे तो इनके अंदर में बहुत तरह की समस्याएं पैदा होती है, बहुत तरह के असंतोष आते हैं। तो और जहां तक सरकारी नौकरी की बात है, वो तो एक एज पर रिक्वायरमेंट होता ही है, जो सरकार के संसाधन है उसके हिसाब से, लेकिन हम सिर्फ सरकारी नौकरी और निजी क्षेत्र की नौकरी या कॉरपोरेट सेक्टर में जाने के लिए ही सिर्फ नहीं रहे हैं, बल्कि हम इस एज ग्रुप के लोगों को आइडेंटिफाई करें राइट फ्रॉम मैट्रिकुलेशन लेवल। हमारे भारत सरकार की एक योजना भी रही कि भाई आप राइट फ्रॉम स्कूल स्टेज ही लोगों के अंदर में ये पहचान कीजिए बच्चों में कि उनका किस तरफ झुकाव है। तो ये सब, क्योंकि जो फॉर्मेटिव पीरियड होता है मैडम, बच्चों का जो खास करके स्कूलिंग स्टेज होता है, उसमें उनके व्यक्तिगत रुझान को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। तो ये हमारे खास करके हाई स्कूल तक के या प्राइमरी एजुकेशन हाई स्कूल तक के शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है, उसमें व्यावसायिक शिक्षा का भी एक विभाग है, उसमें बच्चों के अंदर में जो स्वाभाविक रुझान है उसकी पहचान करके हम उस क्षेत्र में उनको अगर उस तरह से उनका मेनस्ट्रीमिंग करें तो बहुत हद तक एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप हो सकता है, और हमारे अंदर में जो युवा श्रम शक्ति है उसको एक नया अवसर के साथ साथ एक नया खुशहाली भी उनमें पैदा की जा सकती है।
1: नए हुनर को विकसित करने में युवा श्रमिकों की अगर बात करें तो कैसे उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है?
0: इसमें ट्रेनिंग का बहुत बड़ा रोल है। ट्रेनिंग सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं होता है, जैसे हर तरह का एक्सपोजर। ट्रेनिंग डजेंट मीन टू इम्पार्ट सर्टेन थिंग्स, मतलब कुछ हम उनको बता दें, जानकारी दे दें क्लासरूम में, ऐसा नहीं है। जब तक उनको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर से मतलब है, अगर मान लीजिए हम मशरूम की खेती का उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर हम इसको सिर्फ थ्योरेटिकल बेस करेंगे और इसके क्या क्या अदर इम्प्लीकेशंस है इस बारे में उनको थ्योरेटिकल नॉलेज, क्लासरूम नॉलेज होना चाहिए, लेकिन मशरूम की खेती कैसे की जा सकती है, इसमें क्या क्या चैलेंजेज हैं, जस्ट मैंने एक उदाहरण दिया, तो उनको फील्ड एक्सपोजर और एक तरह से जमीन से जोड़ कर करके जितनी भी हम उनके अंदर में प्रशिक्षण दें किसी तरह के खास विधा को विकसित करने के लिए, उसमें उनको एक कंटिन्यूअस क्लासरूम ट्रेनिंग के साथ साथ उनको फील्ड विजिट, प्रैक्टिकल एक्सपोजर, और फिर उनको अपने चॉइस ऑफ एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व करने के लिए मोटिवेट करना, वहां भी उनको फैसिलिटेट करना, सरकारी तंत्र, बैंकिंग सेक्टर और जो भी इंस्टीट्यूशंस लगे हैं उनको एक तरह से सामूहिक रूप से काम करना।
1: श्रोताओं, आज की बातचीत में साफ है कि हुनर सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं, सम्मान और आत्मविश्वास का भी नाम है। बीते 12 वर्षों में नीतियों ने रास्ता दिखाया है, पर असली रफ्तार तब आएगी जब हर हाथ हुनरमंद होगा और हर हुनर को काम मिलेगा। अगर आप भी कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं तो अपने नजदीकी जन शिक्षण संस्थान या स्किल इंडिया प्लेटफॉर्म से उनसे जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं, आपका बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
1: दोबारा मिलेंगे नई सारी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।
2: साथियों, अभी आपने बहुत ही अच्छी जानकारी सुनी एलबी शास्त्री से, हुनरमंद हाथ विकास का साथ। इसीलिए आप अपने हुनर को कभी भी ना दबाएं। हुनर अगर आपके पास है तो जरूर उसे लेकर आगे आएं और अपनी रोजगार को बढ़ाएं।
3: बिल्कुल। और रंजना, इस भेंटवार्ता सुनने से पहले हम बात कर रहे थे महान संगीतकार मदन मोहन की।
2: हाँ साथियों, मदन मोहन को हिंदी फिल्म संगीत का, गजलों का शहजादा भी कहा जाता है। उनकी रचनाओं में शास्त्रीयता, संवेदनशीलता और मधुरता का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। मदन मोहन एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने सुरों, शायरी को सुरों का ऐसा अमर लिबास पहनाया कि वह पीढ़ियों तक लोगों के दिलों में बस गई।
3: मदन मोहन का संगीत भावनाओं की गहराई, मधुरता और शास्त्रीयता का अनूठा संगम था। उनके गीत केवल सुनाई नहीं देते थे बल्कि दिल की गहराइयों तक उतर जाते हैं। उनकी रचनाओं में शास्त्रीय संगीत की मिठास और उर्दू शायरी की नज़ाकत साफ साफ दिखाई देती है।
2: और सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने कई श्रेष्ठ गीतकारों और गायकों के साथ मिलकर ऐसे गीतों की रचना की जो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं। जब भी धुनों का जिक्र होता है तो लग जा गले, नैना बरसे, रिमझिम रिमझिम, आपकी नजरों ने समझा, तू जहां जहां चलेगा, जैसे गीत स्वतः याद आ जाते हैं।
3: उनकी संगीत यात्रा यह दर्शाती है कि सच्चा संगीत समय की सीमाओं से परे होता है। उनकी धुनें आज भी नई पीढ़ी को आकर्षित करती हैं। उनकी एक और विशेषता थी कि वे गीत के शब्दों की आत्मा को समझते थे, इसलिए उनकी हर धुन कविता और भावनाओं को मिलाकर विस्तार बन जाती थी।
2: हाँ साथियों, यही कारण है कि उन्हें शायरी को सुरों का अमर लिबास पहनाने वाला संगीतकार कहा जाता है। आज उनके जन्मदिवस पर उन्हें याद करते हुए उन्हीं के सुरों में पिरोया हुआ ये प्यारा सा हम श्रोताओं के लिए गीत लेकर आए हैं।

0: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन लेता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अबुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अबुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: तो दोस्तों, कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम कार्यक्रम के अगले विषय की ओर चलते हैं।
3: हाँ,
2: आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसे अध्याय पर बात करेंगे जिसने हमारे देश की राजनीति और लोकतंत्र को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक ऐसा दौर जिसे हम आपातकाल या इमरजेंसी के नाम से जानते हैं।
3: हाँ साथियों, 25 जून 1975, ये वो तारीख है जब आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी। अगली सुबह जब देश उठा तो अखबारों के दफ्तरों की बिजली काट दी गई थी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी प्रेस पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी।
2: दोस्तों, ये वो समय था जब देश में राजनीतिक अस्थिरता थी, महंगाई चरम पर थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के चुनाव को रद्द कर दिया था। इसके बाद जो हुआ उसने हमारे संविधान और लोकतंत्र दोनों की कड़ी परीक्षा ली। आपातकाल के उन 21 महीनों में नागरिकों के मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए थे।
3: लेकिन कहते हैं ना, रात कितनी भी घनी क्यों ना हो, सुबह जरूर होती है। मार्च 1977 में जब चुनाव हुए तो भारत की जनता ने दिखा दिया कि असली ताकत किसके हाथ में है। देश की जनता ने वोट की चोट से सत्ता परिवर्तन किया और लोकतंत्र की जीत हुई।
2: इतिहास का ये सबक हमें सिखाता है कि लोकतंत्र कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक बार पा लिया तो हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। इसकी रखवाली हर पीढ़ी को करनी पड़ती है।
3: हाँ, आपातकाल ने हमें हमारे संविधान की अहमियत, स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत और प्रेस की आजादी का असली मतलब समझाया।
2: तो दोस्तों, आज जब हम आजादी की हवा में सांस लेते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि ये आजादी कितनी कीमती है। तो एक जागरूक नागरिक बने और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहें।
3: और साथियों, इसी क्रम में एक और जानकारी आपको देते हैं। एक हम बहुत ही अच्छी कहानी, मतलब क्या बोले, एक श्लोक सुनाते हैं ना कि हमारे जो जब दादा दादी या नाना नानी जो थे, बचपन में हमें कितना संभाल के रखते थे। जब हम कभी गिरते या फिर हम चलना सीख रहे हैं तो वो हमारी देखभाल करते थे, हमारी जिद को पूरी करते थे। लेकिन जब वो जीवन की उस शाम में पहुंचते हैं जहां उन्हें सहारे की जरूरत होती है, तो क्या हम या हमारा समाज उनके लिए पूरी तरह तैयार है?
2: साथियों, अब जो हम चर्चा करेंगे यह विषय यह है, सुरक्षित कल।

0: निश्चित जीवन पर आधारित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के बारे में।
1: हाँ साथियों, रिटायरमेंट के बाद ऐसा लगता है कि अब हमारे खर्च के कैसे चलेंगे, दवाइयों का बिल कैसे भरा जाएगा। इसी चिंता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जीवन बीमा निगम यानी LIC के साथ मिलकर प्रधानमंत्री वय वंदन योजना की शुरुआत की थी। ये एक ऐसी पेंशन स्कीम है जो खास तौर पर हमारे 60 साल या उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई गई है।
0: इस योजना की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है पेंशन का चुनाव। बुजुर्ग अपनी सहूलियत के हिसाब से चुन सकते हैं कि उन्हें पेंशन हर महीने चाहिए या फिर साल में एक बार। आप इसमें अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं।
1: और हाँ साथियों, 10 साल की पॉलिसी टर्म पूरी होने पर आपको आपकी निवेश की गई पूरी रकम पेंशन के आखिरी भुगतान के साथ वापस मिल जाती है। और कभी अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो इस योजना में इसका भी ख्याल रखा गया है।
0: तो अगर आपके घर में आपके माता पिता हैं, दादा दादी हैं, तो उन्हें इस योजना के बारे में ज़रूर बताएं। LIC के किसी भी ऑफिस में जाकर या ऑनलाइन भी इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है।
1: तो दीपा, हम आखिरी में यही कहेंगे दोस्तों से कि जिन्होंने अपनी पूरी जवानी हमारी कल संवारने में लगा दी, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका आज सुरक्षित करें। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना इसी सुरक्षित कल और निश्चित जीवन की एक बेहतरीन पहल है।
0: और इस योजना के द्वारा हम अपने जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, परिवार के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनके प्रति हम थोड़ी भी जो अपनी श्रद्धा है या थोड़ा सम्मान है, हम वो व्यक्त कर सकते हैं। और इसके साथ ही रंजना, कार्यक्रम का वक्त भी समाप्त हो चला है। तो आज के लिए अपनी दोस्त दीपा
1: और रंजना को दे इजाज़त।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम श्रमिक लोग। आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। शाम के 6 बज चुके हैं। आइए सुने अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। रांची स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय का 46वां स्थापना दिवस समारोह कल मनाया जाएगा। इस अवसर पर कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहेंगी। मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हजारीबाग समाहरणालय भवन परिसर में हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 2026 के तहत मतदाता हेल्पलाइन के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर मतदाता पंजीकरण, नाम संशोधन, मतदाता सूची से नाम हटाना तथा निर्वाचन संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। सरायकेला नगर पंचायत टाउन हॉल में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 6 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज लोक कल्याण मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत अध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने स्ट्रीट वेंडरों, महिला स्वयं सहायता समूहों तथा नागरिकों की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि नगर पंचायत सरायकेला ने अब तक 275 पात्र स्ट्रीट वेंडरों को PM स्वनिधि योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया है। देवघर जिला प्रशासन ने जिले के नागरिकों, विशेषकर ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत जिले के सभी प्रखंडों में तिथि निर्धारित कर विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्ज और FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी।

0: गच्छ लगाओ, गच्छ बचाओ।
1: किसान वाणी कार्यक्रम सुनो या सब किसान भाई बहन मन के कृष्ण जीवन पौराणिक संगे
0: रौर मन का संगे मनोज कर
1: जोहार।
0: जोहार। और ये कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। तो भाई देखो, बरखा पानी का दिन है और गस वृक्ष कर बात करा थी, तो एखने कर मौसम नहीं लगा लें किस
1: एखने कर मौसम में तो गच्छ मन लगाल से जे है से बढ़िया मने होए ला और बढ़े ला भी बढ़िया।
0: सही बात है भाई। देखो एखन डहर किनारे देखब तो सरकार देने से बहुत सारा गाछ वृक्ष मन लगाल जाते हैं, काली कि भाई देखो पानी कर दिक्कत नहीं होला है कि, और घेरा करके लगाते ताकि गाय गोरु मन नहीं
1: हाँ
0: खावे,
1: नहीं खाएन।
0: तो बढ़िया बात है। तो हमरे के भी सरकार के सहयोग करे के चाहिए, और सरकार देने से बहुत सारा योजना मन चलाल जाला जैसे गाछ कर लगाए के लिए, तो हमारे मन के गाछ मन के लेके और लगाए के और हरियर करे के, और हमरे के आंबा और लीची और जामुन का कहा है सबके खाए के है कि
1: हमरे
0: नहीं।
1: के भी पौधा मिलला के 10-15 गो आम्बा
0: अरे बात
1: लीची
0: बढ़िया
1: मनकर
0: बात है, तो के
1: सबके।
0: लगा दे
1: हाँ
0: लेके
1: लगा दे ही सबके।
0: तो ठीक है, तो अगला सब दो साल
1: हाँ
0: बाद आओ
1: एकदम
0: खाए के
1: एकदम
0: लिए।
1: एकदम।
0: सही बात है भाई। मन देखो सरकार बहुत सारे योजना के हमारे मन के दे हैं, बस जरूरत है जागरूक होए के और हमरे के फायदा उठाए कर है। और देखो ना भाई, एखन तो बरखा पानी का दिन भी हो गया और खेती बाड़ी में तो सब लागल भी हैं, और हमरे कर जे खेती बाड़ी करे वाला जो औजार मन रहे नहीं उसके हमरे मन के संभराए के रखे के
1: यह
0: है।
1: बरसात के दिन में चीती फीती लाइक जाए है ने।
0: सही बात है। और देखो चीती लागे कर बाद में हो सके कि वो यंत्र खराब हो जी, अब बहुत सारा गाड़ी घोड़ा भी सन है जे कि मशीन से चले ला, उखो हमरे मन के देख रेख करे
1: हाँ तो
0: के है।
1: जैसे मशीन से चले ले सेमन के समय से ग्रीसिंग करवाना, समय से मोबिल चेंज करवाना, समय से गियर वाइल चेंज करवाना, ब्रेक वाइल चेंज करवाना, ये सब जो है से जरूरी है।
0: सही बात है। देखो ना आज आजकल देखो तो आधुनिक तरीका कर नवा नवा मशीन वन भी आ जाए, छोटा छोटा ट्रैक्टर मन है, बड़ा बड़ा ट्रैक्टर मन है, सब तरह का मशीन है कि नहीं, मैंने आदमी कर काम बहुत कम हो जाए है।
1: हाँ हाँ और उमन कर देखभाल नहीं करब नहीं तो खराब होए कर भी जो है से संभावना है।
0: देखो आज के हमारे मन जिसकी मशीन का प्रयोग करा थे और मशीन खराब हो गए तो फिर तुरते कहाँ से लाने
1: गाय गोरु कहाँ से लाना तुरते।
0: देखो
1: सही बात है।
0: गाय गुरु कहाँ खोजब।
1: हाँ
0: तो भाई देखो मशीन के बढ़िया से रखो, और जितना भी यंत्र मन है मशीनरी हो चाहे खेती बाड़ी का यंत्र मन के बढ़िया से सुरक्षित रखे के, और देखो काम करे कर पाछे उके बढ़िया से सरियाए के रखे के है
1: और
0: कि नहीं।
1: धोए धाए के बढ़िया से रखे के
0: सही बात
1: जैसे
0: है।
1: ट्रैक्टर मन के भी देखे ले कि जैसे मने खेत के जोत के आए कर उसने राख देवे तो उकरे में खराबी हो गए ले
0: हाँ
1: ओके बढ़िया से धोए धाए के राख देना चाहिए।
0: देखो पूरा कादो कादो मन हो जाए है
1: हाँ
0: कि नहीं, तो साफ सुथरा रखे के। और देखो बता दे चाहे कि आज कर कार्यक्रम जो प्रायोजक हैं वो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय हैं, तो आज कर कार्यक्रम का बता दो का। आज सबसे पहले हमारे मन जानब आज कर बात में पशु मन कर होवे वाला प्रमुख विषाक्तताएं कर बारे में, और हमरे के बतावे दीक्षा मलेठा, इकर बाद कृषि विकास गीत में सुनब सुकुमार और संगी मन कर गावल गीत, और आज कर एक ठो किसान है वो है आनंद कुमार यादव। तो भाई देखो मौसम मन तो एखन नहीं पहुँचे नहीं।
1: हाँ नहीं पहुँचे तो हमरे के जानकारी करे के।
0: हाँ तो चलो भाई सुनी ले हमरे मन दीक्षा मलेठा से।
1: किसान भाइयों नमस्कार। पशुपालन हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम अपने पशुओं को रहने और खाने पीने का इंतजाम तो रखते ही हैं, लेकिन कई बार हमारी छोटी सी लापरवाही या अनजाने में हुई चूक पशुओं के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। चारा खाते समय कीटनाशकों के संपर्क में आने से या दूषित पानी पी लेने से पशुओं के शरीर में जहर फैल जाता है। सही समय पर लक्षण न पहचान पाने के कारण कई बार

0: पशु दम तोड़ देते हैं, जिसे पशुपालकों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। और इसी बीमारी को हम कहते हैं पशु विषाक्तता। इसी महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीक्षा मलेठा, सहायक प्राध्यापक वेटनरी कॉलेज रांची। दीक्षा जी, आपको हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आप हमारे श्रोताओं, हमारे किसान भाइयों को ये बताएं कि पशु विषाक्तता होती क्या है।
1: विषाक्तता का मतलब है विषाक्त तत्वों या पदार्थों से होने वाली समस्याएं।
0: जी।
1: जब कोई हानिकारक या विषाक्त या जहरीला पदार्थ सेवन के पश्चात हमारे शरीर में प्रवेश कर हमारी शारीरिक क्रियाओं को बाधित करता है, हमें बीमार करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उसे विषाक्तता कहते हैं। जिस प्रकार मनुष्यों में जहरीले पदार्थ खाने पर हानिकारक व प्रतिकूल प्रभाव दिखाई देता है, वैसे ही पशुओं में भी विषाक्त रसायन, जहरीले पौधे, सड़ा पुराना चारा खाने से गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं तथा कभी कभी मृत्यु भी हो सकती है।
0: जी, तो पशुओं में विषाक्तता के प्रमुख कारण क्या हैं?
1: देखिए, पशुओं में विषाक्तता के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि सबसे पहले आते हैं कुछ जहरीले पौधे जो कि आपने सुना होगा, जैसे पुटुस, थेथर, कनेर, गाजर घास, अकवन, धतूरा, कटेरी आदि।
0: जी।
1: ये जहरीले पौधे जो होते हैं ये भी विषाक्तता का कारण होते हैं।
0: जी जी।
1: अगला आता है अगर हरे चारे में ऐसा हरा चारा जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है, अगर उनमें आपने कीटनाशक छिड़काव किया हुआ है या फिर उर्वरक का उपयोग किया है, तो उनमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, या फिर साथ ही पानी का अभाव हो तो ऐसा चारा देने से पशुओं में नाइट्रेट विषाक्तता देखी जाती है जो कि ऑक्सीजन को बाधित करती है। अगला आता है यूरिया का उपयोग। हम सभी जानते हैं कि आमतौर पर पशुओं में संतुलित मात्रा में प्रोटीन की आपूर्ति के लिए यूरिया हम देते हैं, लेकिन इसे अगर निर्धारित मात्रा से ज्यादा दिया जाए तो इसके अधिक सेवन से विषाक्तता होती है।
0: जी।
1: अगला आता है कुछ सायोजनिक पौधे जैसे ज्वार, बाजरा, अलसी, बबूल, जिनमें की साइनाइड ग्लाइकोसाइड पाए जाते हैं। पशु अगर इनका सेवन कर ले, कच्चे छोटे पौधे अगर पशु खा ले, तो उनमें साइनाइड ग्लाइकोसाइड की मात्रा अधिक होती है।
0: जी।
1: वो साइनाइड विषाक्तता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा फफूंद लगा चारा, कीटनाशक का गलती से सेवन जो कि चारे या पानी के रूप में हो सकता है, साथ ही दूषित गंदा रुका हुआ पानी तथा कुछ अन्य रसायनों का गलती से सेवन पशुओं में विषाक्तता का कारण बनता है।
0: जी, अभी आपने बताया कि क्या क्या चीज खाने से होता है।
1: जी,
0: लेकिन इसको हम कैसे पहचानेंगे, कौन कौन सी विषाक्तताएं देखी जाती है?
1: देखिए, पशुओं में आम तौर पर जो विषाक्तताएं देखी जाती हैं वो होती है साइनाइड विषाक्तता, नाइट्राइट विषाक्तता, ऑक्सलेट विषाक्तता, एफ्लाटोक्सिकोसिस जो कि फफूंद लगे चारे के सेवन से होती है,
0: जी,
1: यूरिया विषाक्तता, कीटनाशक विषाक्तता तथा जहरीले पौधों का सेवन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइनाइड विषाक्तता। कुछ चारा जैसे कि ज्वार, बाजरा, बबूल, अलसी आदि, इन सब में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड मौजूद होते हैं, तो इनके कोमल फसलों में साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड की मात्रा अधिक होती है। साथ ही पानी का अभाव और अधिक मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग ग्लाइकोसाइड की मात्रा पौधों में बढ़ा देता है, जो कि साइनाइड विषाक्तता की संभावना को बढ़ा देता है।
0: जी जी।
1: दूसरा आता है नाइट्रेट विषाक्तता। कई ऐसे नाइट्रेट युक्त पौधे होते हैं जैसे कि ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ने के पत्ते, इनमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है। अगर हम इनमें नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग करते हैं, साथ ही अगर पानी का अभाव है या सूखापन है, तो इनमें नाइट्रेट का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है, जो कि शरीर में ऑक्सीजन को बाधित करता है और श्वास संबंधित विकार करवाता है। इसके अलावा आता है ऑक्सलेट विषाक्तता, जो कि ऑक्सलेट युक्त फसल के अधिक सेवन से होती है, जो कि शरीर में कैल्शियम की कमी को करवाता है। फिर बात करते हैं यूरिया विषाक्तता की। अधिक मात्रा में यूरिया मिश्रित आहार तथा खाली पेट यूरिया देने से क्या होती है। फिर एफ्लाटोक्सिकोसिस की बात करें तो कई बार हम जब चारा स्टोर करते हैं तो उस दौरान नमी और अधिक गर्मी के कारण फफूंद लगने का चांसेस हो जाते हैं।
0: जी।
1: जिस वजह से एफ्लाटॉक्सिन्स नाम के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं, और जिस वजह से पशुओं के लीवर में और पाचन तंत्र को वो प्रभावित करते हैं।
0: जी।
1: फिर आता है कीटनाशक। हम जानते हैं कि कीटनाशक का उपयोग पशुपालक बहुत करते हैं, तो यह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कीटनाशक

0: के सेवन से चारे के रूप में हो या फिर दूषित पानी के रूप में पशु इनका सेवन करते हैं। इसके अलावा कई विषाक्त पौधे जैसे कि मैंने अभी बताया, थेतर हो गया, गाजर घास हो गया, अकवन हो गया, ये सब भी इनके सेवन से भी पशुओं में हानिकारक या गंभीर लक्षण दिखाई देते हैं।
1: जी जी, पशुओं में विषाक्तता के सामान्य लक्षण क्या पाए जाते हैं और अगर लक्षण देख लिया गया तो उसके उपचार क्या है?
0: लक्षण की हम बात करें तो यह निर्भर करता है कि किस प्रकार की विषाक्तता हुई है
1: जी,
0: किस प्रकार का चारा पशु ने खाया है। अगर हम बात करें साइनाइड विषाक्तता की तो इसमें पशुओं को सांस लेने में तकलीफ होती है, अत्यधिक लार गिरता है, आंख नाक और श्लेष्मा झिल्ली का रंग गहरा हो जाता है, खून का रंग गहरा तथा मांसपेशियों में ऐठन और कंपन देखने को मिलती है और कई परिस्थितियों में जो कि गंभीर हो जाता है जब मामला, तो पशु की मौत भी हो सकती है। नाइट्रेट विषाक्तता में आप देखेंगे कि पशु तेज तेज सांस ले रहा है तथा पशु कमजोर तथा लड़खड़ाकर चलेगा, मुंह और आंखें नीली पड़ जाएंगी, साथ ही रक्त का रंग चॉकलेटी कलर का दिखाई देगा
1: जी।
0: एफ्लाटॉक्सिकोसिस में पशुओं के पाचन तंत्र तथा लीवर में असर दिखता है जिस वजह से पशु खाना कम खाते हैं, सुस्त नजर आते हैं, कमजोरी आ जाती है, साथ ही उत्पादन क्षमता और प्रजनन क्षमता प्रभावित हो जाती है
1: जी।
0: यूरिया विषाक्तता की बात करें तो इसमें पशु सुस्त, बेचैन, शरीर में ऐठन, लार टपकना, बार बार पेशाब करेगा और सांस लेने में तकलीफ दिखाई देती है, साथ ही पेट फूल जाता है
1: जी।
0: ऑक्सलेट विषाक्तता में क्योंकि यह कैल्शियम की कमी करवाता है तो पशु में कमजोरी और दूध उत्पादकता पर फर्क पड़ता है। कीटनाशक विषाक्तता से मुंह में अत्यधिक झाग और लार टपकता है, मांसपेशियों में ऐठन, सांस लेने में तकलीफ, दस्त, बेचैनी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। विषाक्त पौधों के सेवन के उपरांत पशुओं में पाचन, तांत्रिक तथा श्वास संबंधी विकार देखने को मिलते हैं, साथ ही पुटुस, गाजर घास में त्वचा संबंधित समस्याएं जैसे कि शरीर में लालिमा, लाल चत्ते आदि दिखाई देते हैं जो कि पशुओं को स्ट्रेस में लाते हैं और उनकी उत्पादकता पर फर्क पड़ता है। अगर उपचार की बात करें तो विषाक्तता का इलाज पशु चिकित्सक के परामर्श तथा उनकी देखरेख में ही करवाएं क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक उपचार होता है जो कि पशुपालकों को फॉलो करना चाहिए। हम बात करते हैं साइनाइड पॉइजनिंग के, तो इसमें सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायसल्फेट का इंजेक्शन दिया जाता है। नाइट्रेट विषाक्तता की बात करें तो इसमें 1% मिथिलिन ब्लू का इंजेक्शन दिया जाता है, साथ ही में एस्कॉर्बिक एसिड देते हैं। ऑक्सलेट विषाक्तता में कैल्शियम का सेवन बढ़ाया जाता है और कैल्शियम बोरोग्लुकोनेट का इंजेक्शन देते हैं। कीटनाशक व फफूंद के प्रकोप से बचाने के लिए पशु को फफूंद युक्त व कीटनाशक युक्त चारा देते हैं, साथ ही लक्षण के आधार पर उपचार किया जाता है
1: जी।
0: और यूरिया विषाक्तता में पशुओं को सिरका या फिर एसिटिक एसिड ठंडे पानी में मिलाकर देते हैं और विषाक्तता का उपचार करने
1: तो भाई एखन हमरे मने जानकारी कर ली बड़ा बढ़िया बारे में।
2: हाँ, तो भाई एकर बाद अब का जानकारी भी बताओ तनी। तो भाई देखो एकर बाद अब कृषि विकास गीत कर है, तो चलो एक ठो गीत सुनीला और बढ़िया सा आनंद ले ला और बता दे चाहे लेके भाई जेकर हमरे मन गीत सुनत ही कर याद दे रही गलक और हमारे गीत कर माध्यम से उके हमरे मन सुनब
1: और के बुझत थे हम मने सुकुमार विश्वकर्मा कर बारे में है ना, आओ तो सुना थी
2: चलो तब तो।

0: तो भाई देखो, एक है ना अब्रवन सुन ली सुकुमार सिंह मनकर गावल गीत, बहुत बढ़िया गीत रहे और खेती बाड़ी कर गीत है कि नहीं?
1: मैंने नवा नवा खेती कर बारे में बड़ा बढ़िया जैसे गीत कर माध्यम से संदेश देने किसान उनके।
0: और सही बात है, देखो और खेती बाड़ी कर बात कर थी और किसान कर बात नहीं हुई तो
1: हाँ,
0: कैसे हुई?
1: अब किसान से भेंट नहीं हुए
0: तो कैसे हुई?
1: तो
0: हमारे घर
1: कैसे हुए?
0: कार्यक्रम तो पूरा
1: सही
0: नहीं हो
1: बात।
0: पा रही, तो
1: हाँ,
0: आज कर किसान है
1: आनंद कुमार यादव और इनकर से भेंट करत हैं अरविंद कुमार मिश्रा।
2: किसान भाई। जोहार। जिस तरह से रोजाना हम आपकी मुलाकात नए नए किसान से कराते हैं, उनके अनुभव के बारे में जानते हैं कि किस तरह से वो खेती किसानी के काम से जुड़े हैं, उनका आय कैसा चल रहा है, किस तरह से नए नए प्रयोग कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानते रहते हैं किसान भाइयों के। तो आज भी एक नए किसान भाई हैं, इनसे आज हम मिलेंगे, इनके अनुभव के बारे में जानेंगे, क्या काम कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले किसान भाई का हम लोग स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। जोहार,
3: जोहार।
2: आप अपना परिचय दे दें, आपका नाम क्या हो गया, कहाँ के रहने वाले हैं?
3: मेरा नाम हो गया आनंद कुमार यादव, हम मूल रांची के रहने वाले हैं।
2: जी यादव जी, आप बताइए कि अभी किस तरह से आप क्या कर रहे हैं खेती किसानी में?
3: किसानी हम गौ मतलब पशुपालन का बिजनेस चला रहे हैं।
2: अच्छा, पशुपालन के
3: जी
2: काम से आप जुड़े हैं, ये जरूरी भी है। जो भी किसान भाई हैं अगर केवल खेती बाड़ी का काम अगर करते हैं तो उसमें आय सीमित मात्रा में होता है, लेकिन अगर खेती किसानी के साथ साथ

0: अगर पशुपालन के काम से अगर जुड़ते हैं तो उनके आय में वृद्धि होती है।
1: वृद्धि होती है
0: अच्छी बात है। यादव जी, कितने दिनों से आप पशुपालन के कार्य से जुड़े हैं?
1: जी। हमें 7 या 8 साल हो गया सर
0: तो कहीं से आप ट्रेनिंग लिए थे, कहीं
1: जी? नहीं,
0: प्रशिक्षण
1: ट्रेनिंग
0: लिए
1: बस
0: थे?
1: घर कुछ ट्रेनिंग चला आ रहा है, बस उसी में देखते देखते अनुभव होते चला गया।
0: अभी आपके पास कितनी गायें हैं?
1: मेरे पास अभी 13 गाय है।
0: कौन कौन सी नस्ल की?
1: होस्टेन है, जर्सी है, फ्रिजियन है, सब मिला के 13 गो जानवर है मेरे पास अभी।
0: तो दूध का उत्पादन कितना हो जाता है आपका?
1: दूध का उत्पादन हो जाता है मेरे पास दोनों बेला मिला के 150 से 200 लीटर।
0: बहुत ही बढ़िया। आप अपने खटाल से ही बेचते हैं या फिर
1: नहीं,
0: कहीं
1: कुछ
0: और बाहर
1: कुछ
0: भेजते हैं?
1: खटाल से ही बिक जाती है, कुछ पहुंचाना ही पड़ता है, बाहर भी ले जाना पड़ता है। और जो उसके अलावा जो फिर जो कुछ बच गया वो सेंटर में।
0: रेट तो भी ठीक ठाक है दूध
1: रेट?
0: का?
1: हाँ, रेट मनगर रेट नहीं मिलता, लेकिन हाँ घिस चिर के काम चल जा रहा है।
0: अच्छा एक चीज बताइए कि पशुपालन में जैसे गौ पालन से आप जुड़े हैं तो इसमें विशेष क्या क्या ध्यान देने वाली बातें हैं?
1: विशेष इसमें ठंडे और बरसात में ध्यान देना पड़ती है जानवर को,
0: किस किस तरह से?
1: कि जैसे बेसी पानी हो रहा है, ये उन लोग गोबर जिससे जो खाद खान होता है उन लोग का उधर से, उसमें नमी बेसी हो जाती है, उसके वजह से उन लोग का तबीयत खराब हो जाने का डर रहता है, ठंडा में ठंडा लगने का बेसी ये रहता है।
0: तो जिस तरह से अभी बहुत अधिक ठंड पड़ रही है तो इसमें कैसे आप लोग गाय का देख रेख करते हैं?
1: जी, हम लोग डेली शाम में उसको अलावा जो आग बोलते हैं आग लगा देते हैं किनारे में कर करके टीना टीना में जगह जगह पर, कि पूरा खटाल उसका सेट पूरा गर्म रहे, ठंडा का असर उसमें कुछ कम हो जाए।
0: और उसके अलावा कुछ खान पान में विशेष ध्यान?
1: खान पान में उतना बेसी ठंडा दिन नहीं होता है दिक्कत, बेसी दिक्कत होती है बरसात के दिन में खान पान में, और ये ठंडा के दिन में बस वही सिर्फ उसको जितना गर्मी दे सके उसके लिए उतना फायदेमंद है।
0: और दूध के उत्पादन में कुछ असर पड़ता है
1: हाँ,
0: ठंड
1: दूध
0: के
1: के
0: दिन में?
1: हाँ ठंडा के दिन में दूध के उत्पादन दूध हो जाती है कम।
0: तो उसकी भरपाई कैसे करते हैं? आपके तो जैसे उत्पादन में कमी हो गया तो आय में भी कमी हो
1: हाँ,
0: जाती है,
1: आय में ऑटोमेटिक है, आय में खत्म खत्म हो जाएगा कहानी उसका।
0: तो उसकी भरपाई कैसे करते हैं?
1: बस उसी में घिस तीर के जैसे तैसे चलाए अपना, 1 महीना 2 महीना घिंचाता है।
0: अच्छा देखिए, गौ पालन में सबसे अहम बात है कि उसका जो आवास होता है उसका व्यवस्था ठीक ढंग से करना होता है, तो
1: हाँ,
0: किस तरह से आप लोग उसका आवास का प्रबंधन कैसे करते हैं?
1: आवास हो गया सर, दो दो कट्ठा जमीन है पूरा, उसमें 2 कट्ठा में 1 कट्ठा में पूरा उसका घर बना हुआ है, मतलब सेट 1 कट्ठा प्रति छूटा हुआ है,
0: अच्छा
1: मतलब खाली, कि धूप में जैसे गर्मी के दिन में हो गया तो बाहर रात में निकाल दिए, ठंडा में हो गया तो धूप में निकाल दिए, और नीचे अपना ऊपर करकट है, नीचे ईंटा बिछाया हुआ है, ढलैया करवा सकते हैं, ढलैया करवाने से लोगों का पैर डैमेज होने का डर रहता है बेसी,
0: और ढालुआ होना चाहिए,
1: ढालुआ होना चाहिए वो तो, हाँ ढालुआ होना चाहिए,
0: जो
1: जो
0: भी
1: अपना पेशाब सब जो भी करे बाथरूम तो सब अपना नली के द्वारा बहके बाहर आ जाए।
0: और क्या क्या उसमें आप लोग करते हैं? जैसे कि बहुत किसान लोगों को हम देखते हैं कि उसके लिए अलग से मैट भी होता
1: हाँ,
0: है।
1: मेट होता है वो किसके लिए होता है? जो ढलाई कर दिए है उसके लिए मेट होता है, जो खरंजा में रखे हुए उसके लिए मेट की जरूरत नहीं पड़ता।
0: और साफ सफाई पर क्या
1: साफ
0: ध्यान
1: सफाई
0: देना है?
1: उस पर भी से ध्यान देना पड़ता है, साफ सफाई, साफ सफाई अगर समय से नहीं करिएगा तो 2 गो 4 गो बीमारी हो डेली डेली होना है, कभी ठंड फूल जाएगा, कभी दूध में प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी लोगों का सेहत ठीक नहीं रहेगा।
0: तो उस तरह का अगर बीमारी आप अगर गाय सब में देखते हैं तो क्या करते हैं?
1: उसके लिए फिर डॉक्टर चिकित्सा को बुलाते हैं, फिर उनसे जांच करवाते हैं, जो दवाई बोलते हैं वो दवाई चढ़ा लेते हैं, आगे अपना अनुभव से जो होता है वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर अगर नहीं संभला तो फिर डॉक्टर साहब को बुलाते हैं।
0: अब तो देखिए झारखंड सरकार की ओर से अब एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है, तो वो सब का भी लाभ आप लोग उठाते हैं क्या?
1: जी नहीं, अभी हम लोग उस सबके लाभ नहीं उठाते हैं,
0: लेकिन चिकित्सक के संपर्क में आप
1: जी
0: रहते हैं। इसके अलावा देखिए गाय सब बीमार ना पड़े उसके लिए आप लोग अपने स्तर पर क्या करते हैं?
1: तो उसकी बस वही देखभाल कि भाई जितना हो सके जितना उसका जगह सफाई रखिए उसके लिए उतना अच्छा है।
0: अच्छा अधिक उत्पादन लेने के लिए, दूध का उत्पादन लेने के लिए गाय को आप लोग क्या क्या खिलाते हैं?
1: गाय को खिलाना पड़ता है खल्ली, सरसों का हो गया, बादाम का हो गया, सरसों का अभी तो ठंडा में सरसों का चल रहा है बेसी, अब बादाम, और गर्मी के दिन में तीसी का।
0: और हरा चारा आप लोग देते हैं कि?
1: हरा चारा नहीं मिलता हम लोग को, टोन में हरा चारा का उम्मीद बहुत कम है, देहाती एरिया में मिल जाएगा लेकिन यहाँ टोन में मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल।
0: आप जैसे कि बता रहे हैं कि आपके यहाँ पर डे 200 लीटर के लगभग में दूध का उत्पादन हो जाता है, तो सीधे दूध बेचते हैं कि दूध से और भी कुछ
1: जी
0: आप
1: नहीं,
0: निकालते हैं?
1: सीधे दूध,
0: सीधे दूध ही
1: जी
0: बेचते
1: हाँ।
0: हैं। तो जैसे गौपालन में सबसे बड़ी बात है कि अगर गाय आप रखे हुए हैं, किसी कारणवश बीमार पड़ती है और वो मर जाती है, तो काफी नुकसान होना
1: जी
0: पड़ता
1: हाँ
0: है, तो इसके लिए इंश्योरेंस की भी व्यवस्था है, तो आप लोग इंश्योरेंस भी
1: जी, नहीं
0: करवाते होंगे,
1: इंश्योरेंस हमको नहीं करवाते
0: लेकिन
1: हैं।
0: इंश्योरेंस कराना ज्यादा फायदेमंद
1: हाँ
0: होगा,
1: ज्यादा फायदेमंद होता है,
0: नहीं तो इसमें नुकसान तो
1: नुकसान
0: काफी
1: बहुत
0: उठाना
1: होता
0: पड़
1: है। हाँ
0: सकता
1: नुकसान
0: है।
1: बहुत हो जाती है।
0: सालाना कितना आप इससे कमा लेते हैं?
1: सालाना का तो जुड़ाया नहीं है अभी तक,
0: अच्छा
1: इसलिए कि जितना जैसे अब जिस ठंडी के दिन है अभी

0: गर्मी दिन में और बरसात के दिन में,
1: ठंडा के दिन में और बरसात के दिन में।
0: अच्छा, दो मौसम में काफी दिक्कत होती है। गाय में किस तरह का रोग बहुत ज्यादा आप देखते हैं?
1: बेसी रोग गाय में दिखेगा आपका वही थनैला रोग।
0: और अक्सर हम देखते हैं किसान भाई लोग परेशान रहते हैं खुरहा चपका से भी।
1: ना, उस साल में एक बार आता है, वो तो नियम है, जरूरी नहीं है कि आना ही आना।
0: तो उसका भी तो टीका,
1: उसका टीका हर करवा दीजिए 6 महीने में, तो आएगा तो नुकसान उतना नहीं होगा।
0: तो आप टीकाकरण कराते हैं ना?
1: जी हाँ।
0: तो कुल मिला के जो पशुपालन का जो कार्य है वो काफी लाभप्रद है।
1: जी हाँ,
0: अगर जो किसान
1: जानकार हो जो उनके लिए, और जो अनुभव जिनके लिए नहीं हो तो नुकसान ही में जाएंगे।
0: सबसे पहले प्रशिक्षण लेना इसके लिए
1: जरूरी है। हाँ।
0: अगर किसान भाई प्रशिक्षण लेते हैं और इस कार्य में अगर उतरते हैं तो उनको अधिक लाभ मिलेगा। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। तो आप हमारे किसान भाइयों के साथ जुड़े, हमारे स्टूडियो में आप आए और अपना अनुभव आपने साझा किया, का बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार
1: जोहार।
2: तो भाई देखो, आज का किसान रहे आनंद कुमार यादव जी की बढ़िया से खेती बाड़ी कर रहे हैं और बड़े बढ़िया बढ़िया बात बता रहे हैं कि नहीं। तो इनके रहे बतिया ले हमारे कर संगी अरविंद कुमार मिश्रा। तो भाई देखो, कहे चाहते कि भाई देखो, पर्व त्यौहार में भी आते जाते तो सबके बधाई भी देवे ला, चूंकि कायल भी मुहर्रम है कि नहीं, तो सबके बधाई कर संगे आज करके आज कर हमारे मैंने सिराब की।
3: हाँ, अब तो देखो घड़ी कहते घर जाए ले, है नहीं? तो बताए देवे चाहे ई कार्यक्रम का प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार,
2: और कार्यक्रम का प्रस्तुत रहे संजीव कुमार तालकर, तो रोहमन का संगी मनोज और
3: कृष्ण जीवन पौराणिक के विदा देव
2: जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी की रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर। श्रोताओं, आइए अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के अंतर्गत ओल्ड ट्रैफ्ट क्रिकेट ग्राउंड मैनचेस्टर में भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय मैच का सीधा प्रसारण।

आठ बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम रंग तरंग। ये था लिखा जोखा विविध भारती से दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम

हम विविध भारती से बोल रही हैं, आइए सुने संध्या रंजन, बेला शेंडी की आवाज। फिल्म का नाम है जोधा अकबर, गीत जावेद अख्तर का, संगीत ए आर रहमान।

0: अब सुन रहे थे कार्यक्रम संध्या रंजन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। आइए आज सुनते हैं इस श्रृंखला की आठवीं कड़ी।
1: संगीत सरिता के सभी श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आजकल आप सुन रहे हैं श्रृंखला वायोलिन का विहंगम संसार। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एसएल कंडारा जी। आपको तबले पर संगति कर रहे हैं श्री संतोष मिश्र। पंडित जी, प्रातः समय गाए बजाए जाने वाले रागों में एक मुख्य राग है अहीर भैरव
2: जी।
1: आज इस राग की चर्चा करते हैं।
2: बिल्कुल।
1: अहीर भैरव राग का हमें परिचय दीजिए, कैसा इसका चलन है, इसके आरोह अवरोह के बारे में कृपया बताइए।
2: इस राग में देखिए ऋखव साथ तो होता ही सब राग में। सा के बाद ऋखव कोमल है, गंधार शुद्ध है, मध्यम शुद्ध है, पंचम तो शुद्ध होता ही है।
1: हाँ।
2: वो तो सिर्फ स्वर है सावर पर। फिर धैवत भी शुद्ध है, निखात उसकी कोमल है। ऋखव और निखात दोनों कोमल है। सारे गामा पाधा निशा
1: जी,
2: मैं आपको इस पे करके बताता हूँ।

0: इस राग की खासियत यह है कि भैरव के प्रकारों में ये बहुत लोकप्रिय राग है।
1: जी जी।
0: और इस पे फिल्म वालों ने भी काफी काम किया है, कुछ अच्छे गीत बनाए हैं, और क्लासिकल म्यूजिक में भी ये बहुत लोकप्रिय राग रहा है। तो पहले मैं आपको इसमें एक बंदिश सुनाता हूँ, उस्ताद आमिर खान साहब की बंदिश है वो।

0: क्या बात है पंडित जी। अहिर भैरव में ये खूबसूरत बंदी सुनने के बाद अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं मन्ना दा की आवाज में मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गाना। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई,
1: वो ऑल टाइम ग्रेट गीत है वो।
0: जी जी।
1: और उसमें जिस तरह से पंडित रामनारायण के जो सारंगी के पीसेज हैं,
0: जी हाँ,
1: वो बहुत सुनने काबिल है।
0: बजाइए, सुनते हैं
1: जी।

0: मन्ना डे के स्वर में अहीर भैरव राग पर आधारित मेरी सूरत तेरी आंखें फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं। ये रचना शैलेंद्र की, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और इसी के साथ वायोलिन का विहंगम संसार श्रृंखला की ये कड़ी अब यहीं समाप्त हो रही है। अगली कड़ी में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 8वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने, तबला संगति संतोष मिश्रा की।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन कौन कौन
2: लाया, कौन लाया। जिन शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है,
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू हुई। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुनियादी प्रशिक्षुओं के पारण परेड समारोह का किया निरीक्षण। कहा, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पुलिस विभाग के लिए है उत्साहजनक। झारखंड के दो नव निर्वाचित राज्यसभा सदस्यों झामुमो के वैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नाथवानी को आज राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। मुहर्रम को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर राज्यभर में प्रशासनिक तैयारी पूरी। रांची में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में किए गए बदलाव। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में किया संशोधन। नकली दवाओं की रोकथाम और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए पैकेट पर लगाना होगा QR कोड। और मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में बादल गर्जन, वज्रपात और बारिश की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के जैप वन ग्राउंड में आयोजित बुनियादी प्रशिक्षुओं के पारण परेड समारोह में शामिल होकर परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को सम्मानित किया। समारोह में 4 पुलिस उपाधीक्षक और 336 नवनियुक्त आरक्षियों ने प्रशिक्षण पूरा कर शपथ ली तथा मार्च पास्ट और कदम ताल के माध्यम से अपने कौशल का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण, आवासीय विद्यालयों और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है तथा महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पुलिस विभाग के लिए उत्साहजनक है।
2: सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, सिर्फ तनखे के लिए नहीं हम पुलिसों में बहाली होते हैं या विशेषकर सरकारी संस्थानों में आते हैं, बल्कि कुछ कर्तव्यों के साथ हम बन जाते हैं। अलग अलग चुनौतियां हम सबों के बीच में रहती है, उन चुनौतियों को भी हमें खत्म करने की आवश्यकता है, उसको समाधान करने की आवश्यकता है।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नाथवानी के अलावा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा गुजरात से चुने गए सदस्यों ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। मुहर्रम को लेकर रांची में विभिन्न स्थानों से जुलूस निकाले जाने के कारण पुलिस अधीक्षक यातायात ने कल सुबह 11 बजे से जुलूस समाप्ति तक शहर के कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों के परिचालन पर रोक लगाई है। किशोरी सिंह यादव चौक से अपर बाजार से महावीर मंदिर होते हुए शहीद चौक, सुभाष चौक, कचहरी चौक, चटरी तालाब, प्लाजा चौक, पुरुलिया रोड, सुजाता चौक, करबला चौक, कडरू और मैकॉन चौक समेत 15 से अधिक मार्गों पर सामान्य वाहनों का आवागमन वर्जित रहेगा। ट्रैफिक SP राकेश सिंह ने बताया कि मुहर्रम जुलूस के मद्देनजर अन्य मार्गों पर भी जरूरत के अनुसार ट्रैफिक डाइवर्ट किया जा सकता है, इसलिए नागरिक वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।
3: 26 तारीख को जो ट्रैफिक डाइवर्जन रहेगा वो 1 बजे से मेन रोड पे जो सर्जना चौक है वहां से लेके रतन पीटी तक पूरा रूट डाइवर्ट रहेगा। जो जाने वाला रास्ता है वो वन वे रहेगा। और जो 27 को है वो मेन जुलूस 27 को निकाला जा रहा है।
1: धनबाद में शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुहर्रम संपन्न कराने को लेकर पुलिस सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि सभी संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। किसी भी प्रकार की अफवाह या असामाजिक गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। त्योहार के दौरान आम लोगों की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल पूरी तरह मुस्तैद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज रांची में मेजर जनरल सज्जन सिंह मान और डोरंड कप के नोडल अधिकारी कर्नल हेमचंद्र ने शिष्टाचार मुलाकात की। रांची में पहली बार आयोजित होने जा रहे डोरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट की तैयारियों की जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी झारखंड के लिए गौरव की बात है और इससे राज्य के खिलाड़ियों को प्रेरणा और बेहतर अवसर मिलेंगे। उन्होंने सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी करने और खिलाड़ियों, टीम प्रबंधन तथा खेल प्रेमियों को बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज संविधान हत्या दिवस के अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता की पंक्तियां पढ़ीं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह कविता मात्र पंक्तियों का संग्रह नहीं है, बल्कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर थोपे गए दर्द, घुटन और प्रतिबंधों की एक जीवंत और सशक्त अभिव्यक्ति है।
1: जब आपातकाल को एक वर्ष हो गया तो अटल जी ने एक कविता लिखी और उन्होंने उस समय की मनस्थिति का वर्णन अपनी कविता में किया है। झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, झुलसाता जेठ मास शरद चांदनी उदार, सिसकी भरते सावन का अंतर्गत रीत गया, एक बरस बीत गया।
2: सीख चो में सिमटा जग किंतु विकल प्राण विहग, धरती से अंबर तक गुजा मुक्ति गीत गया, एक बरस गया।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में संशोधन किया है। नकली दवाओं की रोकथाम और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए शीर्ष दवा ब्रांडों की प्राथमिक पैकेजिंग पर बारकोड या क्यूआर कोड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्यूआर कोड आधारित पहचान की आवश्यकता पहले देश के शीर्ष 300 दवा ब्रांडों तक ही सीमित थी। टीके, मादक और मनोरोगी दवाओं और कैंसर रोधी दवाओं से संबंधित प्रावधान अगले वर्ष 1 जुलाई से लागू होंगे, जबकि रोगाणु रोधी दवाओं से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई 2028 से प्रभावी होंगे। मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी सेवाएं सुगमता से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हजारीबाग समाहरणालय भवन परिसर में हेल्प डेस्क का शुभारंभ उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी हेमंत सती ने किया। इस अवसर पर हेल्प डेस्क मैनेजर राजेश पांडे ने जानकारी दी कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाता हेल्प डेस्क के माध्यम से टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क कर मतदाता पंजीकरण, नाम संशोधन, मतदाता सूची से नाम हटाना तथा निर्वाचन संबंधी आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
3: हम लोग यहाँ मतदाता सहायता के लिए उपलब्ध है कि किसी तरह का अगर पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, अगर किसी को ढूंढना है 2003 में अपना वोटर लिस्ट में नाम सर्च करना है और उनको नहीं मिल रहा है किसी कारणवश, तो हम लोग वो प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पे। 2003 से रिलेटेड हो गया, वोटर कार्ड से रिलेटेड जानकारियाँ हैं वो हम लोग प्रोवाइड कराते हैं।
0: मौसम विभाग ने चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम समेत राज्य के 18 जिलों में अगले कुछ घंटों में हल्के से मध्यम दर्जे के बादल गर्जन, वज्रपात और बारिश की चेतावनी देते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। रांची में 24 से 26 जुलाई तक आयोजित होने वाली 16वीं झारखंड राज्य जूनियर एवं सब जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के लिए रांची जिला तैराकी संघ 28 जून को होटवार स्थित वीर बुधु भगत एक्वेटिक स्टेडियम में चयन परीक्षण आयोजित करेगा। चयन ट्रायल में रांची जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग के बालक और बालिकाएं भाग लेंगे। तैराकों के लिए SFI UID अनिवार्य है तथा प्रतिभागियों को जन्म प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित होना होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुनियादी प्रशिक्षुओं के पारण परेड समारोह का किया निरीक्षण। कहा, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पुलिस विभाग के लिए है उत्साहजनक। झारखंड के 2 नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्यों झाबुमो के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नाथवानी को आज राज्यसभा के सभापति CP राधाकृष्णन ने दिलाई शपथ। मुहर्रम को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर राज्यभर में प्रशासनिक तैयारियां पूरी। रांची में कई मार्गों पर यातायात व्यवस्था में किए गए बदलाव। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में किया संशोधन। नकली दवाओं की रोकथाम और उनकी प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए पैकेट पर लगाना होगा QR कोड। और मौसम विभाग ने राज्य के 18 जिलों में जारी किया येलो अलर्ट। अगले कुछ घंटों में बादल गर्जन, वज्रपात और बारिश की दी चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: हेरोइन, कोकीन, ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, कोडी और अफीम जैसे मादक पदार्थ युवाओं के सपनों को निगल रहे हैं। शुरुआत अक्सर जिज्ञासा से होती है, फिर आदत बनती है और देखते ही देखते नशा शरीर, दिमाग, परिवार और भविष्य सब कुछ छीन

0: देता है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में निषिद्ध मादक पदार्थों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीते वर्ष इस अभियान के अंतर्गत राज्य भर में 15,000 से अधिक जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया। याद रखें, अगुआ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मादक पदार्थों के उत्पादन, सेवन, तस्करी तथा अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कानून की कड़ी नजर है। एक बार फिर अगुआ सरकार के नशा मुक्त झारखंड अभियान से जुड़े और 15 जून से 26 जून तक चलने वाले जन जागरूकता अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए हम सब मिलकर नशा मुक्त झारखंड के संकल्प को साकार करें। नशा नहीं, जिंदगी चुने।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: प्रस्तुत है जिले में आजकल

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिम सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले में मतदाताओं के गहन पुनरीक्षण का कार्य तेजी से चल रहा है। इस बीच जिले के 94% मतदाताओं की मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है। आगामी 30 जून से 29 जुलाई तक बूथ लेवल अधिकारी BLO लोगों के घर घर जाकर SIR के फॉर्म वितरित करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मनीष कुमार ने इस बारे में बताया कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधितों को उचित प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के साथ हुई बैठक में भी सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं।
2: हमारे यहाँ कुल लगभग 10,84,238 वोटर हैं, जिसमें से हम लोगों ने 9,37,081 वोटर्स को मैप कर लिया है। जो मैपिंग परसेंटेज है हम लोग का 86.43 हो चुका है आज के दिन में, जो कि अभी 87 के आसपास पहुंच गया होगा। लगभग हमारे ASDD की जो सूची है 7.5% वोटर थे ASDD, तो ओवरऑल हम लोगों ने लगभग 94% लोगों को या तो मैप कर लिया है या तो ASDD की सूची में नामांकित कर लिया है। तो अब हमारे पास जो अनमैप्ड इलेक्टर्स बचे हैं वो सिर्फ 6% के आसपास अनमैप्ड या तो ASDD में जो नहीं है वो बचे हैं। हम लोगों की 20 तारीख से सभी स्तर पर ट्रेनिंग चालू हो गई है।
1: पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस सिलसिले में पिछले दिनों प्रदेश
3: ने हमें जो है संपूर्ण क्रांति जैसा संदेश लेकर लोगों को जो है जगाया, लोगों के अंदर आजादी

मोहम्मद रफी की आवाज में ये कैफी आजमी का लिखा गाना था फिल्म हीर रांझा से, संगीत मदन मोहन का था। आज मदन मोहन की याद का दिन है, हम नमन करते हैं उन्हें। जय माला कार्यक्रम का सफर आपने तय किया अपने दोस्त यूनुस खान के संग।

0: आप हैं विविध भारती के संग। इनसे मिलिए।
1: इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पहला भाग।
2: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, फिल्मकार हैं, रेडियो से जुड़े हैं और दूरदर्शन के न्यूज चैनल से बतौर एडीपी अपनी सेवाएं देकर रिटायर्ड हुए हैं। आप हैं सुभाष जैन साहब। तो हम उनसे बातचीत करेंगे आज इन सभी विषयों पर। सुभाष जैन जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में तहे दिल से स्वागत है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं वाकई बहुत खुश हूँ
2: जी।
3: रेडियो पे इतने वर्षों के बाद आज मैं आया हूँ। वो बात दूसरी है कि रेडियो से एज ड्रामा आर्टिस्ट और एज कंपेयर मैं जुड़ा रहा हूँ, वर्षों तक जुड़ा रहा हूँ, लेकिन वर्षों के बाद आज आया हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरे श्रोताओं का भी आज बहुत शुक्रिया कि आज आपसे फिर बात करने का मुझे मौका मिला है।
2: जी, शुक्रिया तो आपका है कि आपने अपना अमूल्य वक्त हमारे लिए निकाला है। और सबसे पहले तो हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि आप कैसे हैं।
3: मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बड़ा मजा आ रहा है देश में। आज इस तरह की घटनाएं सुबह से शाम तक नए नए इवेंट्स सुनने को देखने को मिल रहे हैं। और रेडियो जो है, अब मैं देख रहा हूँ बीच में कुछ पहले थोड़ा सा स्लो हुआ था, आज फिर लोग जो हैं रेडियो की तरफ भाग रहे हैं और रेडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं।
2: जी, तो देखिए ना, आपने आकाशवाणी ने अपना 90 वर्ष का जो सफर है वो कितना खूबसूरती के साथ तय भी कर लिया है।
3: जी।
2: और इस 90 वर्ष के सफर पर हम सभी जश्न भी मना रहे हैं।
3: जी जी जी, जी।
2: तो रेडियो से आप कैसे जुड़े और रेडियो से जो जुड़ाव था वो कैसे हुआ?
3: हुआ क्या कि मैं पहले कॉलेज में थिएटर करता था और थिएटर के साथ साथ रोहतक रेडियो स्टेशन पर जब वो पता चला कि वहां पर भी आर्टिस्टों को वो लेते हैं, उनका ऑडिशन होता है, तो हरेक की मर्जी होती है, हरेक का दिल करता है, क्योंकि हमारे लिए रेडियो उस वक्त पे बहुत बड़ी चीज थी।
2: जी।
3: क्योंकि रेडियो को हम जो है सिर्फ सुनाई हमने जिंदगी भर, क्योंकि मेरे फादर जो है वो बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, तो वो रेडियो की न्यूज डेली सुनते थे, तो हमें एक लगाव था और हम तो फिर हवा महल और ये यार वो बहुत सुनते थे, तो उससे हमें लगा कि हम भी कोशिश करें। और अगर शॉर्टकट बताऊं तो मैंने रेडियो स्टेशन पे ऑडिशन दिया और मैं फिर पहले बी ग्रेड मैंने पास किया, फिर बी हाई मैंने पास किया
2: ड्रामा में जी।
3: और ड्रामे के बाद फिर एज अनाउंसर भी मैंने वहां ऑडिशन पास किया और रेडियो के लिए बहुत प्ले भी मैंने लिखे।
2: तो अच्छा, लिखे भी आपने?
3: हाँ, लिखे भी मैंने
2: और किए भी एक्ट भी किए
3: मैं, क्योंकि आर्टिस्ट था तो मैंने किया। तो रेडियो का मेरा सफर बहुत ही बढ़िया रहा। और मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं कि रेडियो हमारे पूरे देश में बहुत ही, अगर आप जाओगे अंदर, जैसे ही एंट्री लोगे रेडियो स्टेशन में, आपको एक बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। तो ऐसा है हमारा रेडियो,
2: बिल्कुल जड़ों से जुड़ा है, हमारी जड़ों से, देश की जड़ों से जुड़ा है, हमारी संस्कृति से जुड़ा है और आज भी रेडियो ने अपनी संस्कृति को छोड़ा नहीं।
3: जी।
2: सर, आप रेडियो से जुड़े रहे, रेडियो से आपको इतना प्यार था, लेकिन आपने जीवन पर्यंत जो सेवाएं दी वो दूरदर्शन के लिए दी, तो ये कंट्रास्ट किस तरह से हुआ? कैसे रेडियो की दुनिया से दूरदर्शन की दुनिया में आप पहुंचे और वहां जाकर, चूंकि आप ड्रामा के आर्टिस्ट थे लेकिन आपने न्यूज चैनल को चुना और आपने पूरी सेवाएं दी, तो इसके बारे में बताइए हमें।
3: बहुत ही रोचक किस्म की कहानी है। मैं फिल्म की लाइन में चला गया था।
2: अच्छा
3: जी। और फिल्म मैंने बना ली थी, मेरी फिल्म का नाम था छन्नो, जो

0: रीजनल लैंग्वेज में नहीं लेकिन डायलेक्ट में थी, हरियाणवी डायलेक्ट में,
1: हरियाणवी में।
0: तो उसके बाद क्योंकि सब कुछ खुद ही करना पड़ा था, एक तरह से कहा जाए तो मैं थक भी गया था
1: फिल्म बनाते हुए।
0: तो मुझे किसी ने कहा कि आप यूपीएससी में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई करो। तो मुझे एक बार तो लगा कि यार मतलब मैं कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं करो, आसान नहीं है। तो जब उन्होंने कहा आसान नहीं है तो मुझे लगा अरे ये चैलेंज है तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो खैर मैंने अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हो गया ड्रामे में। और जब ड्रामे में सिलेक्शन हुआ तो मेरी पहली पोस्टिंग लखनऊ थी, नवाबों का शहर लखनऊ। तो वहां मेरी डायरेक्टर से बात हुई तो डायरेक्टर ने कहा कि देखिए सुभाष जी, सिलेक्शन आपका ड्रामे में हुआ है एज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव, लेकिन ड्रामे में तो हमारे दूसरे कर रहे हैं, तो आप ऐसे घूमिए कुछ दिन, उसके बाद देखते हैं। तो मैं घूमता घूमता, न्यूज रूम था वहां पर, वहां चला गया। वहां पर जब मैंने देखा तो मेरे लिए हर चीज नई थी, क्योंकि हम ड्रामे में हर चीज बहुत प्लान से और रिहर्सल के साथ करते हैं, लेकिन न्यूज में रिहर्सल का टाइम नहीं होता। तो मैं बड़ा शॉर्टकट आपको बताता हूँ, 2-4 दिन मैंने देखा जाकर पैनल पर, 3-4 हमारे कैमरे होते थे, वीएम अलग होता था, ऑडियो अलग होता था, ग्राफिक्स के अलग इनपुट्स होते थे, तो कुल मिलाकर शॉर्टकट 10-15 के करीब जो है लाइव इनपुट्स यूज होते थे एक बुलेटिन में जो लाइव जाता था।
1: क्या बात है,
0: तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो एक दिन वो जो प्रोड्यूसर करते थे वो आए नहीं, तो हमारे जो संपादक थे उन्होंने कहा कि सुभाष जी आप कीजिए। अरे मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं, मतलब आप बुलेटिन खराब कर लेंगे, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बोला नहीं मैं आपको देख रहा हूँ 3-4-5 दिन से, आप बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेट्स ट्राई। मैंने कहा जिम्मेवारी आपकी होगी, अगर कुछ गलती हुई तो मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। बोले नहीं नहीं मेरी होगी, आप कीजिए। तो खैर उन्होंने मुझे कहा और मैंने जाके किया, और वो बुलेटिन, न्यूज बुलेटिन लखनऊ से वाकई बहुत अच्छा चला गया।
1: जी जी,
0: बस उससे मेरे न्यूज चिपक गया और वो लंबे वक्त तक चला मेरे साथ। तो मैं वैसे बीच बीच में दूरदर्शन के लिए ड्रामे करता रहा और मैंने डांस प्रोग्राम भी किया, वो मुझे स्पेशल असाइनमेंट होती थी। जैसे सोनल मानसिंह जी का मैंने एक डांस का परफॉर्मेंस था उनका,
1: अच्छा,
0: वो मैंने स्टूडियो में किया। और मुझे जो हमारे चेयरमैन थे उन्होंने अप्रिशिएशन लेटर दिया और वो बहुत ही बढ़िया गया। ये मैं करता रहा लेकिन स्पेशल असाइनमेंट की मैंने, मेन में जुड़ा रहा सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शन न्यूज से।
1: जी, तो हम चूंकि बात करने वाले हैं आपकी और भी जो फील्ड से उस पर भी, लेकिन अभी बात चल रही है आपकी दूरदर्शन की, उसके न्यूज चैनल से जुड़े रहने की। सुभाष जी, आजकल टीवी चैनल्स की अगर हम बात करें, प्राइवेट टीवी चैनल्स जितने भी हैं, वो अपने को श्रेष्ठ दिखाने की होड़ में या टीआरपी के चक्कर में किसी भी खबर की सच्चाई जाने बिना बड़ा चढ़ाकर बात कहते हैं और एक अजीब किस्म की सनसनी फैला देते हैं। तो इस तरह के समाचारों की सार्थकता पर सवाल तो उठना ही चाहिए, आप क्या सोचते हैं? और आप जिस चैनल पे काम करके निकले वहां सच्चाई को कितना रखा जाता था या सच्चाई कितनी खरी उतरती थी, इस पर हम जानना चाहते हैं।
0: देखिए अगर मैं आजकल के न्यूज चैनल की बात करूं तो मुझे, मैं पहले बहुत न्यूज देखता था
1: जी।
0: आज मैं न्यूज देखता हूं तो मुझे अंदर से दुख होता
1: जी,
0: है,
1: फेड अप से हो जाते हैं हम।
0: फेड अप के अलावा मुझे लगता है कि यार ये न्यूज नहीं है, क्योंकि न्यूज का, मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट भी रहा हूं, न्यूज में क्या होता है कि जो आपका एंकर होता है उसको अपने व्यूज जो है वो 10% मैक्सिमम 15-20% देने चाहिए, यानी 20% से ज्यादा उनको अपने व्यूज नहीं देने चाहिए, और बाकी जो आपके गेस्ट होते हैं या न्यूज होती है 80% जो है वो आपको वो बताना ही चाहिए, वो दिखाना चाहिए
1: जी।
0: लेकिन प्राइवेट न्यूज चैनल में बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये उल्टा हो गया है। एंकर जो है वो अपने आप को गेस्ट भी समझते हैं, एक्सपर्ट भी समझते हैं, एंकर तो होते ही हैं, तो वो पता चल रहा है 80% यानी कि 80%
1: वो खुद ही बोल देते हैं
0: हर चीज के, और जो गेस्ट होते हैं आपके जिनको आप बुलाते हैं
1: उन्हें बोलने भी नहीं दिया जाता।
0: तो ये अनफॉर्चुनेट है लेकिन है। और जहां तक हमारे दूरदर्शन की बात रही,
1: आपने डीडी न्यूज और नेशनल न्यूज को कवर किया है।
0: जी मैंने डीडी न्यूज में किया और मैं बहुत फक्र के साथ कह सकता हूं कि मैंने

0: दूरदर्शन को छोड़ने से पहले 10 या 15 सालों तक मैं प्राइम मिनिस्टर्स की मोर देन 90% कवरेज मैं करता था.
1: क्या बात है
0: जी.
1: जी.
0: और हमारे चाहे वो नरसिम्हा राव जी हों या मनमोहन सिंह जी हों या अटल बिहारी वाजपेयी जी हों और हमारे जो अभी के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी हों, तो उनकी एक अलग चैलेंज होता है क्योंकि लाइव टेलीकास्ट होता है
1: जी.
0: और आपके पास प्रेशर बहुत होता है
1: जी.
0: क्योंकि इस तरह की बड़ी रिकॉर्डिंग में आप चाहे प्रेसिडेंट की करें या प्राइम मिनिस्टर की, मैंने प्रेसिडेंट्स की बहुत रिकॉर्डिंग की और वीवीआईपीस की, वहां किसी को पता नहीं चलता है बाहर वालों को. वहां प्रेशर ये होता है कि वहां जीरो एरर चाहिए, वहां गलती की कोई किसी तरह की गुंजाइश नहीं होती.
1: जी, बिल्कुल.
0: तो बड़ा मजा आता था लाइव वहां पे. तो अभी सोर्सेज बहुत हो गए थे हमारे पास, इतने ग्राफिक के सोर्सेज होते थे, पता चल रहा है कि फिर हम लाइव ओबी पे जाते थे और उसके बाद हमारे जो कॉरेस्पोंडेंट्स होते थे वो खड़े रहते थे चार चार पांच पांच छह छह जगह
1: लगातार सवाल जवाब करने के लिए.
0: सवाल जवाब करने के लिए. और मैंने जो सबसे बड़ी एक प्रोडक्शन की, मैंने नमस्ते ट्रम्प जो अहमदाबाद से हुआ था, गांधीनगर से जब आए थे वो, तो हमने यूज किए थे तकरीबन मोर देन 100 कैमराज लाइव.
1: क्या बात है.
0: जी
1: जी.
0: तो वो कवरेज जो है वो हमने की और मैं वहां एज ए प्रोड्यूसर भी था और नेचुरली उस टाइम मैं हेड ऑफ द प्रोग्राम था डीडी न्यूज और डीडी इंडिया का. तो उसमें करके एक बड़ा मजा आया. और दूरदर्शन की न्यूज में हम कभी भी ऐसा नहीं करते थे कि जिसके अंदर आपको प्रॉपर न्यूज ना मिले.
1: केवल सनसनी को
0: फैलाना कम से कम उस वक्त पे दूरदर्शन का काम नहीं था. तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि न्यूज लोग बाग सुनना चाहते हैं
1: और इसीलिए सुभाष जी, रेडियो की न्यूज हो या दूरदर्शन की न्यूज हो, आज भी उनकी सत्यता पर आंच नहीं आई है.
0: जी.
1: आज भी उन्हें ऑथेंटिक माना जाता है और लोग रेडियो की न्यूज सुनना या दूरदर्शन की न्यूज देखना पसंद करते हैं.
0: जी.

0: आप सुन रहे थे मीडिया प्रोफेशनल और फिल्मकार सुभाष जैन से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी का और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: इनसे मिलिए।

0: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं आतिश की लिखी झलकी, लो कर लो दर्शन। निर्देशक हर्षवर्धन गवई।
1: अच्छा सीताराम जी, नहीं वो बात सही है आपकी, लेकिन
2: मैं भी वही कह रहा था।
1: हाँ, आप तो सही कह रहे थे, लेकिन ये अरे ये जोगिंदर सिंह जी कैसे अस्त व्यस्त से चले जा रहे हैं?
2: लगते तो वही है। ए, ए, ए, एक मिनट। अरे जोगिंदर सिंह जी, ओ जोगिंदर सिंह जी, सरदार जी,
1: ओ जी,
2: अरे क्या क्या झटका खाया है क्या आपने? कहाँ चले जा रहे हैं घबराए से?
3: ओ क्या बताऊं सीताराम जी, शुक्र करो कि मैं जिंदा हूँ।
1: क्यों, क्या हो गया?
2: क्या हो गया?
3: अरे यार, खबर तो पढ़ी होगी आपने, टीवी पर देखी और सुनी भी होगी। हमारे पड़ोस में जो 6 मंजिला इमारत बनी थी ना, अचानक गिर पड़ी।
1: ओ जी, अरे रे रे, अरे रे रे,
3: हाँ जी।
1: अच्छा फिर तो उससे आपका क्या ताल्लुक?
3: ओ यार, हम लोग जहाँ चाय पीते हैं ना,
1: हाँ, हाँ, हाँ, हाँ,
3: मैं उसी के नीचे खड़ा चाय की दुकान से चाय पी रहा था।
2: हुआ क्या?
3: बस सिर्फ 1 मिनट पहले चाय पीकर वहाँ से बमुश्किल 100 कदम आगे बढ़ा हूँगा कि पीछे से जोर से धड़ाम की आवाज आई। मुड़कर देखा तो बिल्डिंग गिर गई थी।
2: अच्छा अच्छा,
3: हाहाकार मच गई। मलबे के नीचे दबकर 30 लोगों की मौत हो गई। बस 1 मिनट का फर्क है, अगर मैं वहां से ना हटा होता ना, मैं भी ऊपर वाले के पास पहुंच गया होता।
2: ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, बड़ी बुरी खबर है।
3: भला हो वाहेगुरु का, उसने ऐन वक्त पर मुझे बचा लिया।
2: सचमुच जाको राखे साइया सरदार जी, मार सके ना कोई।
3: ओए जिसनू राखे रब तो उसनू चखे कौन।
1: क्या रब ने बचा लिया है? और वो जो 30 बेगुनाह मलबे के नीचे दबकर मर गए, उन्होंने रब का क्या बिगाड़ा था?
2: लेकिन राम गोपाल जी,
1: अरे सच्चाई ये है सीताराम जी कि वो बिल्डिंग अनऑथराइज थी।
2: अच्छा,
1: उसकी कंस्ट्रक्शन में भी घटिया माल का इस्तेमाल किया गया था। सीमेंट की जगह रेत खूब ज्यादा इस्तेमाल की गई थी। जाहिर है कि अथॉरिटीज के साथ मिलकर रिश्वतखोरी की गई, मोटी मोटी रकम ऊपर से नीचे तक बहाई गई और बिल्डिंग बनने दी गई।
3: जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी।
2: क्या बताएं सरदार जी, क्या माहौल हो गया है। इस भ्रष्टाचार ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है पूरे माहौल का।
1: तो फिर रब ने इन भ्रष्टाचारियों को सजा क्यों नहीं दी? हा? वो तो सब देख रहा है ना, सब जानता है ना। और यही नहीं है जो जोगिंदर सिंह जी के घर के बाजू में हुआ है।
2: तो
1: एक और बुरी खबर है।
2: वो क्या है?
1: एक अनऑथराइज रेस्टोरेंट में आग लगने से वहां जन्मदिन मना रही एक लड़की और उसके साथी जलकर मर गए। जानते हो 20-22 साल के 14 बच्चे मारे गए।
2: माय गॉड।
3: हाँ जी, ये सही कह रहे हैं।
2: बड़ी दिल दहलाने वाली खबर है सरदार जी।
1: अरे वहां भी तो बेचारे लोग खामखा ही मारे गए ना। अब क्यों नहीं जला डाला उन सभी गुनाहगारों को तुम्हारे रब ने? क्यों नहीं मार दिया उनको? क्या अजीब मजाक है। जो बेगुनाह हादसों में मारे जाते हैं उनके बारे में बस एक ही राय, अजी साहब उनकी तो मौत आ गई थी, अजी साहब उनकी तो किस्मत में बस इतनी ही जिंदगी लिखी थी। और जो हमारे सरदार जी जैसे बच जाते हैं, उसका सारा का सारा क्रेडिट भगवान को चला जाता है।
2: लेकिन यही तो कहा जाता
1: है। अरे क्या कहा जाता है, आप सीताराम जी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। आप भगवान को क्रेडिट दे देते हैं, कभी रब

0: क्रेडिट दे देते हैं। एक और कमाल की सोच है, कमाल का विश्वास है, जो किया वो रब ने किया, जो दिया वो रब ने दिया। अरे साहब देखिए, हम भी पैदा हुए हैं, अपने माँ बाप की औलाद हैं, हमारी भी औलादें हैं, जिसको देखो वो सारा क्रेडिट रब को दिया जा रहा है। है? सब क्या उसी की मेहरबानी है? बताइए सरदार जी, चुप क्यों हैं? क्या गलत कह रहा हूं मैं?
1: आप तो नास्तिक हो, आप तो ऐसा ही कहेंगे।
0: अरे सीताराम जी, भगवान ईश्वर गॉड रब सब एक विश्वास है जो आस्था बन गया है। गॉड यानी रब ने इंसान को बनाया, बनाया या नहीं बनाया ये तो नहीं जानता मैं, लेकिन ये कभी ना झुठलाने वाला सच है कि ये इंसान है जिसने रब को बनाया। इंसान के बिना रब को जानता ही कौन है, बताइए आप। ये जो जानवर हैं, ये भी तो रब के बनाए हुए हैं ना। ये किसी भी धर्म स्थान के अंदर चले जाते हैं, आराम से लघु शंका से निवृत्त हो जाते हैं, गोबर कर देते हैं। भगवान होता तो ऐसा करते ये कभी?
2: यही तो फर्क है नास्तिक जी, इंसान और जानवर में। जानवर को दिमाग नहीं दिया भगवान ने, इंसान को दिया है सोचने और समझने के लिए।
1: ओए भगवान दास, बहुत देर के बाद आए हो, कितने सी तू?
2: मैं भगवान के साथ क्रिकेट खेल रहा था।
3: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास जी, है कोई दूसरा भगवान भी तेरे नाम जैसा?
2: मेरे नाम जैसा नहीं, सचमुच का भगवान जिसे तुम ईश्वर कहते हो, रब कहते हो, वो मेरा दोस्त है। मेरे साथ क्रिकेट भी खेलता है और शतरंज भी खेलता है।
0: फेंकू चंद है ये हमारा दोस्त जो है ना, ये भगवान दास नहीं, फेंकू चंद है, फेंक रहा है। अरे भला जो दिखता ही नहीं उसकी हकीकत क्या? ढकोसला है सब, रब गॉड। अरे तुम दिख रहे हो, मैं दिख रहा हूं, सीताराम जी दिख रहे हैं, सरदार जी दिख रहे हैं, कहाँ है तेरा रब बता दो, कहाँ, दिखा जरा मुझे, दिखा भाई।
2: वो सर्वव्यापक है ना, तुम्हारे सामने इसी वक्त मौजूद है, मगर तुम जैसे नास्तिक को दिखाई नहीं देगा।
0: चलो मैं मान लेता हूँ मैं नास्तिक हूँ, ये हमारे सरदार जी तो आस्तिक है ना, ये सीताराम जी तो आस्तिक है ना। भैया आपको दिख रहा है? तुमको दिख रहा है?
3: नहीं दिख रहा है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: दो अब जवाब, है कोई जवाब?
2: ये हवा है ना, इसी में हम सब सांस ले रहे हैं, तुम भी, क्या दिखाई देती है किसी को? जिंदगी क्या है? जब तक सांस लेते रहोगे जिंदा रहोगे, सांस बंद जिंदगी खत्म। मैं भगवान का दास हूं इसीलिए वो मेरा दोस्त है, मैं तो जब भी बुलाऊं वो ओब्लाइज करता है, दर्शन देने आ जाता है।
3: क्या बात कर रहे हैं भगवान दास, हमें भी दर्शन करवा दो भाई।
1: ओ हाँ यार, सानू भी करवा दे दर्शन।
2: चलो ठीक है, तो इस संडे को आ जाओ मेरे घर पे, मैं विनती करके बुला लूंगा रब जी को, आप दर्शन कर लीजिए।
3: ठीक है जी, आ जाएंगे। क्यों सरदार जी?
1: बिल्कुल आ जाएंगे जी।
0: भैया मुझे तो बख्श दो।
3: क्या बात कर रहे हो, चलिए आप भी चलिए।
0: नहीं नहीं नहीं,
2: ना ही आओ तो अच्छा है।
0: हाँ
2: भगवान की भी यही इच्छा है,
0: बस आप लोग दर्शन कर लो जी।
2: तो आ जाना आप दोनों, हाँ मेरे घर।
1: अच्छा जी, सत श्री अकाल।
3: राम राम भगवान दास, जरूर आएंगे।
1: ओ जी सत श्री अकाल जी।
3: भाई भगवान दास, राम राम।
2: आइए आइए, आ गए आप, मगर ये क्या साथ में इतनी भीड़ ले आए?
3: अब क्या करें, जिसने भी सुना दौड़ा चला आया, हमें भी दर्शन करवा दो, हमें भी दर्शन करने हैं, साथ ले चलो।
1: चलो भाई,
2: ओके, ऐसा करते हैं, वहाँ दूर एक लाइन में खड़े हो जाओ सब लोग, एक एक करके आना।
3: ठीक है,
2: अंदर कमरे में भगवान जी हाजिर है, कर लो दर्शन।
3: सरदार जी आप एक काम करो, आप लाइन लगवाओ, सबसे पहले मैं दर्शन करूंगा जी, और दूसरी बारी आपकी आ जाएगी, लाइन लगवाओ।
1: ओ अच्छा जी, ओ ठीक है जी, मैं जाता हूँ लाइन लगवाता हूँ, छेती छेती आप भी आ जाना, पहले दर्शन मेरे होंगे।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जाओ लाइन लगवाओ। तो भगवान दास जी अब मैं जाऊँ भीतर दर्शन करने?
2: हाँ हाँ, मगर एक शर्त है।
3: शर्त वर्त यहाँ पर?
2: भगवान सिर्फ उसी को दिखाई देंगे जिसने कभी झूठ ना बोला हो।
3: जी झूठ से मेरा क्या नाता, कोसों तक कोई ताल्लुक नहीं, मैं तो केवल सच ही बोलता हूँ जब भी बोलता हूँ।
2: जिसने पाप ना किया हो।
3: ओहो, मैं तो पुण्य का भागी हूँ, और पुण्य भी ऐसे करता हूँ कि इस हाथ का

0: उस हाथ को पता नहीं चलता।
1: और जिसने किसी को धोखा ना दिया।
0: हम क्यों धोखा धोखा देंगे, और भी कोई शर्तें हैं आपकी?
1: जिसने रिश्वत ना ली हो ना दी हो।
0: रिश्वत से अपना दूर दूर का कोई नाता ही नहीं है।
1: किसी लड़की पर बुरी नजर ना डाली हो।
0: हम क्यों नजर डालेंगे, अब बताइए कितनी शर्तें और बाकी हैं आपकी?
1: और जिसने किसी पराई स्त्री को कभी ताका झांका ना हो।
0: अरे भाई क्यों जागेंगे ताकेंगे किसी पराई स्त्री को, और भी कोई शर्त है? भीतर जाऊं दर्शन करने?
1: जाओ अंदर जाओ, दर्शन कर लो।
0: ठीक है, ये चला।
1: क्यों जी सीताराम जी, मिल लिए भगवान को, हो गए दर्शन रब के?
0: दर्शन? अरे भगवान दास जी, दर्शन की बात करते हो? हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हो गए। विराट प्रभु का स्वरूप, ओ हो, आत्मा प्रसन्न हो गई। क्या साक्षात दर्शन दिए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु।
1: इसी तरह सरदार जी ने भी दर्शन लिए, और जो भी आया था सभी ने यही कहा कि उसे भगवान के साक्षात दर्शन हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्यों हंस रहा हूं। मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ऊपर बैठा भगवान भी हंस रहा है।
2: लो कर लो दर्शन। अभी आप सुन रहे थे आतिश की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे हर्षवर्धन गवई। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अमरकांत दुबे, अशोक सोनावने, राजेंद्र त्रिपाठी और जयंत पात्रिकर। ये थी विविध भारती मुंबई की प्रस्तुति।

0: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, आप वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने माने फिल्मी गीतकार सुधाकर शर्मा साझा कर रहे हैं अपने फिल्मी गीतों से जुड़े कुछ यादगार लम्हे और किस्से।
1: प्यार किया तो डरना क्या की सेकंड लाइन शकील साहब से अच्छी मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा मतलब मेरा एक परेशानी थी कि मैं क्या करूं। हिमेश जी ने एक रास्ता निकाला कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या की एक ट्यून बना ली, कहा कि इस ट्यून को हम निभाएंगे, इसकी सेकंड लाइन नहीं लिखेंगे, बस इसको हुक लाइन रखेंगे। वो गाना करते करते हुक लाइन बनी ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम।
0: जरूर सुनिएगा बॉम्बे टॉकीज में 27 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे चित्रलोक।

बर्फी फिल्म का गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज थी, स्वानंद किरकिरे के बोल प्रीतम की तर्ज थी, रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें प्रसून जोशी के बोल, संगीत ए आर रहमान का।

0: वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रूपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 6,000 रूपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। ICC क्रिकेट T20 महिला विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया और FIFA फुटबॉल विश्व कप में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के UK इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों को मिलने वाले आर्थिक लाभों की संभावनाएं बहुत अधिक हैं। श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: The United Kingdom Free Trade Agreement has...
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: And together becoming a force multiplier.
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन रक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं।
1: Partnership with UK is taking many more dimensions.
2: ब्रिटेन के साथ हमारी साझेदारी कई नए आयाम ले रही है। प्रौद्योगिकी, निवेश, रक्षा और महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारा साझा उद्देश्य है। वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी भारत और ब्रिटेन की साझेदारी मजबूत हो रही है। हमारा प्रयास है कि वैश्विक व्यापार निष्पक्ष और समान अवसरों पर आधारित हो।
0: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन मामले में विशेष जांच दल SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। सूत्रों के अनुसार आरोपियों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को SIT का गठन किया था। SIT मामले की विस्तृत जांच कर रही है। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए 2,500 रूपए शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठ वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रूपए होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रूपए होगी या तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए लागत 6,000 रूपए होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रूपए और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रूपए है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 5,000 रूपए का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठ वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रूपए का शुल्क लिया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डिल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रेक्टर स्केल पर भूकंपों की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई। एक रिपोर्ट।
4: ये भूकंप एक सदी से भी अधिक समय में वेनेजुएला में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप हैं। वेनेजुएला की राजधानी काराकास से लगभग 1700 किलोमीटर दूर ब्राजील के अमेजन क्षेत्र तक के इलाकों में इमारतों को खाली कराया गया है। इन भूकंपों के बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी है। आपातकालीन दल कई स्थानों पर राहत और बचाव अभियान चला रहा है। विश्वभर के नेताओं ने वेनेजुएला के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की और विनाशकारी भूकंप के बाद सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के लिए समर्थन व्यक्त किया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने कहा कि 300 बचावकर्मी और पैरामेडिक्स 50 टन सामग्री के साथ राहत कार्यों में सहायता के लिए रवाना होने को तैयार हैं। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
3: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। सुश्री रोड्रिगेज ने कहा कि भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता कठिन समय में भारत और वेनेजुएला के लोगों के बीच सहयोग की भावना को दर्शाती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं का स्वागत किया। बांग्लादेश में भारत के नवनियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इस फैसले से भारत आने के इच्छुक हजारों बांग्लादेशी यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। साथ ही इससे दोनों पड़ोसी देशों के बीच पर्यटन, व्यापार, पारिवारिक संपर्क और आपसी संबंधों को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत में अमेजोन के 48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड निवेश का स्वागत किया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में अमेजोन के सीईओ एंडी जेसी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस निवेश से युवाओं के लिए नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि भारत में निवेश करने के लिए दुनिया भर में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायला और बाश्यम रामाकृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से भाजपा की ताई तागाक, कर्नाटक से भाजपा के देवोशीष सामंतराय और कांग्रेस के प्रवीण चक्रवर्ती तथा गुजरात से भाजपा के राजेश परमानंद शुक्ल ने भी शपथ ली। झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय सदस्य परिमल नथवानी ने भी राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तेलंगाना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की प्रगति, गुणवत्ता और रखरखाव की समीक्षा की है। इन परियोजनाओं में तेलंगाना के लगभग 4931 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर के 2035 किलोमीटर और लद्दाख के 804 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग शामिल हैं।
5: नई दिल्ली में समीक्षा बैठक के दौरान श्री गडकरी ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने तथा सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत करने, काम समय पर पूरा करने तथा आधुनिक निर्माण तकनीकों और बेहतर

0: तरीकों को अपनाने के निर्देश दिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 से 29 जून तक सेशल्स की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री के सेशल्स की दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले उन्होंने वर्ष 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि तकनीक आधारित युद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल रहे हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की राष्ट्रीय सुरक्षा एआई, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी तथा अंतरिक्ष क्षमताओं के मेल से तय होगी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय में वरिष्ठ अधिकारियों और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि उभरती सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने और देश के रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए भारत को नई तकनीक में आगे रहना होगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि दुनिया में हथियारों के बढ़ते उपयोग, जोखिम लेने की प्रवृत्ति में वृद्धि और सोशल मीडिया युग के अनुकूल राजनीति देखने को मिल रही है। दक्षिण कोरिया में शांति और समृद्धि पर जेजू द्वीप में आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि अपनी विशिष्टताओं को मुखर करने की प्रवृत्ति अधिक है और क्षमताओं का उपयोग भी कम संकोच के साथ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोविड-19, आतंकवाद या चरम जलवायु घटनाओं के प्रभाव जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज उत्तर प्रदेश में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। इस केंद्र के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले और रोग मुक्त पौधों की सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें बागवानी खेती का विस्तार होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। लखनऊ के योजना भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य की कृषि योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई के मुकाबले में कोराकाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 1:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में स्विट्जरलैंड, मोरक्को, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, मेक्सिको और बोस्निया हर्जेगोविना ने अपने अपने मुकाबले जीते। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में बांग्लादेश ने भारत को 137 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने तीसरे ओवर में बिना किसी नुकसान के 23 रन बना लिए हैं। राधा यादव ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए, वहीं श्री चरणी ने 2 विकेट अपने नाम किए। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
2: सेंसेक्स 109 अंक बढ़कर 77,100 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 34 अंकों की तेजी से 24,056 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में आज के उच्चतम स्तर से 700 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज हुई, वहीं निफ्टी में ये गिरावट 200 अंक रही। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 26 पैसे मजबूत होकर 94.40 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई रफ्तार देगा। वेनेजुएला में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 164 हुई, राहत और बचाव कार्य जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त किया और बचाव तथा राहत कार्यों के लिए समर्थन की पेशकश की। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद प्राथमिकी दर्ज। सरकार ने 36 पृष्ठ वाले पासपोर्ट बनवाने या पुनः जारी करने का शुल्क 1 जुलाई से बढ़ाकर 2,500 रुपए किया। तत्काल पासपोर्ट का शुल्क 5,000 रुपए होगा। भारत बांग्लादेशी नागरिकों के लिए 28 जून से पर्यटक वीजा फिर से शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए।

0: कानपुरी का लिखा बप्पी लहरी का सुर बंद किया ये जख्मी फिल्म का गाना था।
1: नसीर तो जाना माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना तुम लोग क्या चाहते हो आखिर, तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए, वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है, हाँ वही करते रहोगे।
0: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: कौन लाया, कौन लाया?
3: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूँ मैं।
3: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
3: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
3: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजों में ये बारिश फिल्म का गाना था। अरमान मलिक के बोल थे, संगीत उत्तम जगदीश का था। कार्यक्रम की आखिरी पेशकश बेताब फिल्म का गाना।

0: इसी के साथ अब आज का आपके लिए कार्यक्रम खत्म होता है।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूँ मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कौन मिलो आन मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत।

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूंगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफी याद हैं, लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि

0: जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
1: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहां, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूं। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
0: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ, एकदम जे सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह यह थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था, जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला, अनपढ़, 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे काफी छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ, तेज

चलाओ, क्योंकि बर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था, तो वो तेज चलाने लगे। आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी, मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नजरों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

0: संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति की।
1: कर चले हम फिदा

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम। जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

0: शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम छाया गीत में। मैं हूं विधि जैन। रूठना मनाना, ये तो प्यार का ही रूप है। शायद वो रूठकर हक जताते हैं और हम मनाकर प्रेम। वो रूठते हैं तो उदास नहीं, प्यारे लगते हैं, और हम मनाते हैं तो बेसहारा लगते हैं। और सहारा देने को वो मान भी जाते हैं और फिर प्रेम अपना कुछ यूं दिखाते हैं।

आंखों की बेचैनी जरा आकर पड़ जाइए। खता मुझसे हुई होगी मगर इतनी सजा कैसी, गिले शिकवे सभी रखिए मगर कुछ तो सुनाइए।

जा रहे हैं, पर मन से नहीं, बस इतरा रहे हैं। बुरा तो लगा था हमारी बातों का उन्हें, पर अब लगता है बस यूं ही वो भाव खा रहे हैं। इसीलिए हमारी कलम ने लिखा कि चलो अब मुस्कुरा दो, ये गुस्सा छोड़ भी दो, मेरी खातिर अपनी जिद का रिश्ता तोड़ भी दो। जानती हूं ये रूठना बस बहाना है तुम्हारा, मुझसे और थोड़ा प्यार जताना है तुम्हारा।

0: छोड़ो,
1: देखा दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मिलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: चलें साथ लेने,
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: किसी के,
1: क्या करना है दीदी,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: अंदर है तो याद करोगे समझे।

0: अंतराल के बाद पुनः स्वागत है कार्यक्रम छाया गीत में। हम बात कर रहे हैं रूठने की और मनाने की। और अगर प्रेयसी रूठ जाए और कारण पता ना हो तो, पर मनाना तो जरूरी होता है ना, और मनाने के लिए थोड़ी सी जरूरत तो की जा सकती है और थोड़ी सी मेहनत भी। तो कहती है कलम की, तेरी खामोशियों में भी सदाएं सुन रहा हूँ मैं, तेरे रुखसार पर ठहरी दुआएं चुन रहा हूँ मैं, जो तेरी आंखें बरसों से कह ना पाई मुझसे, उन्हीं अनकही बातों के अफसाने बुन रहा हूँ मैं।
1: तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं के इन अदाओं

किसी के रूठने से दिल तड़प जाता है, उसको मनाने के लिए भी दिल रह ही जाता है। रूठने मनाने के सिलसिले में कई सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्यार और मुस्कुराता है। कभी कभी रूठे दिल को देखकर तड़पन और मुस्कुराते देखकर मन की खुशी दोनों ही बड़ी खूबसूरत होती है। कहती है कलम कि मैं आपके नाम की खुशबू लिए फिरती हूँ सांसों में, मेरे एहसास की दुनिया में फिर से मुस्कुराइए। न जीत मेरी न आपकी मोहब्बत की हो बस, चलिए अब मान भी जाइए और मुझे गले लगाइए।

ये रूठना इजाजत देता है और करीब आने की, और ये मनाना इजाजत देता है फिर से मुस्कुराने की। ये रूठने मनाने के, शिकवे के, शिकायतों के, इन पर्दों को धीरे धीरे हटाकर ही प्रेम का सुंदर रूप दिखाई देता है। रूठना मनाना इसकी भी एक हद होनी चाहिए।

एक हद के बाद रूठे हुए को मान भी जाना चाहिए। और बस ऐसे ही जो रूठा है वो रूठ तो सकता है, यह उसका अधिकार है, पर मानना ये भी उसके काम में ही आता है। तो रूठिए पर जल्दी मान जाइए। इसीलिए तो कहा है कलम ने, ये जो रूठे हैं लब आपके, मौसम भी उदास है, बहारों की तरह फिर से मेरे आंगन में आइए। मैं अपने हर तर्क को अब प्रेम में बदल दूंगी, आप बस एक बार दिल से मुझे अपनाइए। नजर झुक झुक के कहती है बहुत कुछ आज भी, लेकिन मेरे अल्फाज से पहले मेरी धड़कन को पाइए। जो बीती बात थी उसको हवाओं में बिखरने दें, नए सपनों की चादर फिर मोहब्बत पर बिछाइए।

अब अगर रूठे तो जल्दी मान जाना, अगर शिकवे हो तो जल्दी से मिटा देना, क्योंकि जीवन मुस्कुराने के लिए है और साथ बिताने के लिए। रूठना मनाना एक पल का हो तो अच्छा है, अगर लंबा चले तो बड़ा दुखदाई। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, रूठे को मनाते रहिए, अगर कोई मनाए तो जल्दी से मानते रहिए। छाया गीत कार्यक्रम में आज इतना ही। अब आज्ञा दीजिए विधि जैन को। नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत। हम आकाशवाणी के रांची केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 546.45 मीटर यानी 549 किलो हर्ट्स और FM 100.5 मेगा हर्ट्स पर रात के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में इंडिया ग्लोबल फोरम के यूके इंडिया वीक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
1: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
1: एंड टूगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
0: श्री गोयल 3 दिन की ब्रिटेन यात्रा पर हैं। इस दौरान वे 15 जुलाई से लागू होने वाले भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज कहा कि आत्मनिर्भर देश संकट काल में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने और विकास प्राथमिकताएं पूरी करने में अधिक सक्षम होता है। राष्ट्रपति ने सैन्य इंजीनियरिंग

0: सेवा के 2023 और 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता राष्ट्रों के लिए रणनीतिक आवश्यकता बन गई है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये स्पष्ट हो गया कि स्वदेशी रक्षा क्षमताएं, उन्नत प्रौद्योगिकी और मजबूत घरेलू औद्योगिक आधार किसी राष्ट्र की परिचालन तत्परता और रणनीतिक प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए अति आवश्यक हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि सैन्य इंजीनियरिंग सेवा देश के रक्षा ढांचे की रीढ़ है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आज कहा कि देश में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में 164 लोगों की मौत हो गई है और 971 अन्य घायल हो गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7.2 और 7.5 मापी गई है। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भूकंप के बाद भारत की ओर से व्यक्त की गई एकजुटता की सराहना की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यक्त की गई संवेदनाओं पर आभार जताया। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 10 नवनिर्वाचित और पुनर्निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। शपथ लेने वालों में आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सना सतीश बाबू, विजय चिंटकायाला और बाश्यम राम कृष्ण तथा जनसेना पार्टी के लिंगम नेनी रमेश शामिल हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्षभर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम उस दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने के लिए आयोजित गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। उन्होंने कहा कि ये आयोजन इस बात की याद दिलाता है कि अहंकार और अत्याचार क्षणिक होते हैं और आखिरकार उनका अंत होता ही है। बांग्लादेश में भारत के नव नियुक्त उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने आज ढाका में अपना कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को अपने परिचय पत्र सौंपे। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के बाद श्री त्रिवेदी ने ढाका स्थित भारतीय वीजा आवेदन केंद्र का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीजा केंद्र में बड़ी संख्या में आवेदकों को देखकर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बांग्लादेशी नागरिकों के लिए सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 28 जून से पर्यटक वीजा के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप ई मुकाबले में कुरासाओ का मुकाबला आइवरी कोस्ट से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इक्वाडोर और जर्मनी आमने सामने होंगे। आईसीसी महिला 2020 विश्व कप में मैनचेस्टर के एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में ग्रुप ए के मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement will act as force multiplier to support the global economy. Addressing the India Global Forum IGF UK-India Week in London today, Mr. Goyal said Free Trade Agreement FTA with the United Kingdom is the most comprehensive agreement that India has entered into so far. The minister reached the UK on a three-day visit to review the preparedness of both countries for the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, which will enter into force from 15th of next month. Mr. Goyal added that the agreement will further integrate both countries into global value chains and open new avenues for economic cooperation and growth.
2: partnership with UK is taking many more dimensions. So now we have a very highly strategic partnership, whether it comes to technology, investments, defense, and critical minerals, our shared objective to fight against terrorism, our effort to bring global peace and stability, our joint effort in several multilateral fora to bring good practices which will make it equal for all